सुप्रभात। 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम बैंड तथा प्रसार भारती ऐप पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि तदनुसार 13 मई सन 2026 हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। अपनी इस प्रसारण सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं।

आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए बस जरा सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी के पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। राष्ट्रीय पात्र परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिल वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत

0: साबित करना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है। इस बीच कल तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति में नाटकीय मोड़ आया, जब अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने एसपी वेलुमणि को विधायक दल का नेता चुना है। अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम के इकलौते विधायक एस कामराज को टीवी के सरकार को समर्थन देने की घोषणा के बाद पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान के दौरे पर रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारत भूटान संबंधों को और मजबूत करना है। 51 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। कल राज्य में सबसे गर्म स्थान बाड़मेर रहा, जहां अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि राज्य के पश्चिमी जिलों में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम की यथास्थिति बनी रहेगी। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स की टीम 15वें ओवर में 86 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 6:05 हुए हैं। आप सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम विविध भारती केंद्र मुंबई से।

यदि हो जाए तो चिंता करने की बजाय उसमें सुधार कीजिए। जो कुछ बिगड़ गया हो तो घबराए नहीं, क्योंकि उसका भी उद्धार संभव है। विश्वास बनाए रखें। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार अब यहीं संपन्न होता है। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोखा के अंतर्गत। ₹35 पर यानी अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 187। ₹45 पर और शाम को पुनः ₹45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे श्रृंखला ऐसी लागी लगन, कलाकार गायक अनूप जलोटा। इस श्रृंखला का भाग दूसरा प्रसारित होगा। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00 पर हम ही राही प्यार की।

सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। नौ पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मनहर उदास पर।

7 बजे 7:30 पर हम ही राही प्यार की। सुबह 8:15 पर और पुनः दिन में 2 बजे प्रसारित की जाएगी त्रिवेणी। 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक प्रस्तुत किया जाएगा। नौ बजकर 30 मिनट पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक मनहर उदास पर। 10 बजे सुनिएगा सेल्यूलाइट के सितारे। अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की कांचन प्रकाश संगीत से बातचीत। 11:00 ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 11:00। 12:05 पर यादों की महफिल सजाई जाएगी और सुरीला सफर आप तय करेंगे दोपहर 1:00।

दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे और 3 बजे कार्यक्रम सखी सहेली के अंतर्गत इन विषयों पर बातचीत होगी, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाते हैं, साड़ियां, साड़ियों का संसार जिसके अंतर्गत बात होगी पश्मीना साड़ी की, शब्द हमारे, विचार आपके, इसके अंतर्गत चर्चा की जाएगी आत्मविश्वास की और व्यंजन में भेलपुरी और दाबेली के बारे में बताया जाएगा। पिटारा जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के मेहमान, शाम 4 बजे शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे। छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 5 बजे 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने।

6:35 पर शाम को आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत किया जाएगा शाम 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा राग अनुराग। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 8:00 कार्यक्रम चित्रलोक से पहले 8:00 रात्रि 8:00 आप सुनेंगे हवा महल के अंतर्गत झलकी ना बाबा ना, लेखन संजय श्रीवास्तव का, निर्देशक गोविंद पारिक। और 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9:00 कार्यक्रम आपके लिए। रात्रि 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा पार्श्व गायक बैनी दयाल पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे छाया गीत आलेख एवं स्वर मंदाकिनी जोशी का। रात 10:30 पर सुनिएगा ढलती जाए रात। और 11:00 रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब प्रस्तुत है श्री राम चरित मानस। इसका आप भाग 187 सुनेंगे।

निष्ठुरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमा कर उसकी कुबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वे वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अनूप जलोटा जी। एक बार फिर हम उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत है अनूप जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आज की इस कड़ी में हम चाहते हैं कि जिनसे आपने तालीम ली और जो आपके लिए बहुत प्रिय हैं, आदरणीय हैं, वो हैं आपके पिताजी श्री पुरुषोत्तम दास जलोटा जी। तो आप उनके बारे में बताएं कि उनके जीवन का कौन सा अनमोल दर्शन आपको प्राप्त हुआ।
2: पिताजी बहुत अच्छे शास्त्रीय गायक रहे, उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों के साथ म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस में गाया, बहुत लोगों को संगीत सिखाया जिसमें मैं भी हूँ, और वो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। मुझे याद है कि बचपन में मुझे कमरे में बंद कर देते थे तानपुरा लेके और कहते थे 3 घंटे बाद मैं कमरा खोलूंगा और बाहर से मैं सुन रहा हूँ और सिर्फ सा गाना, रे तक नहीं पहुँचना
1: जी।
2: तो 3 घंटे मैं सिर्फ सा गा रहा हूँ। दूसरे दिन फिर बंद कर देते थे कि आज तो रे गाना है, रे गा रहे हैं। तो इस तरह हुआ ये कि वो जो स्वर है उन्होंने गले में एक सिंहासन बना के अपने को स्थापित कर लिया, तो वो सुर जो है वो अपनी जगह बैठ गया। इस तरह से उन्होंने खुद भी रियाज किया था और मुझे भी रियाज करवाया। साथ ही साथ मुझे कहते थे कि कम से कम आधा घंटा रोज रियाज जो है वो आईने के सामने करो कि तुमको ऐसा लगे कि कहीं तुम्हारा मुंह बन रहा है या हाथ पैर ज्यादा उठा रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए, बहुत प्लेजेंट मुद्रा होनी चाहिए। तो उसका ही कारण है कि मुझे मुद्रा दोष का सामना नहीं करना पड़ा, नहीं तो अक्सर गायन में मुद्रा दोष आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें जो उन्होंने सिखाई उसका मुझे बहुत लाभ हुआ है। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही हमेशा, और न जाने कितने उनके भजन हैं जो मैं गाता हूं और उनको और पॉपुलर करने की कोशिश करता हूं जो उन्होंने किए हैं। तो अधिकतर जो मेरा संगीत है वो मेरे पिताजी का ही है और मैं उसको पॉपुलर कर रहा हूं।
1: आपने कहा कि पहले दिन उन्होंने सा लगाने को कहा, दूसरे दिन रे, तो हमें बताइए कि 7 सुर कितने दिन में पूरे हुए थे और पहली बार उनके सामने आपने जब परफॉर्म किया तो क्या अनुभव था, कैसी यादें हैं?
2: नहीं, वो 7 सुर जब पूरे हो जाते थे फिर से 7 से शुरू करा देते थे।
1: अच्छा,
2: तो ये सिलसिला चलता रहता था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब हाँ सुर जो है इसके टिकने लगे हैं, ठीक होने लगा है, उसके बाद फिर कहते थे कि अब और भी कुछ गाओ साथ साथ, लेकिन शुरू में तो उन्होंने इसी तरह से तालीम दी
1: जी। अगर आपको याद हो तो बंदिश कौन सी सीखी थी पहली?
2: मुझे उन्होंने एक चतुरंग सिखाई थी जी।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब हम जानना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि उनके गायन की शैली क्या थी और किन राग रागिनियों का वो ज्यादातर प्रयोग करते थे।
1: पिताजी तो बहुत विद्वान थे, तो बहुत से रागों को गाते थे। उनका राग बिहाग में लट उलझी सुलझा जा बालम इतना अच्छा सुंदर गाते थे। एक दिन मुझे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी बता रहे थे कि उन्होंने मेरे पिताजी को लट उलझी गाते हुए सुना किसी म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में, और उस दिन से उन्होंने जसराज जी ने राग बिहाग गाना शुरू किया कि इतना सुंदर बिहाग कोई गा सकता है तो मैं भी गाऊंगा। उन्होंने भी गाना शुरू किया। तो पिताजी एक ऐसे गायक थे कि अपने गायन से लोगों को इंस्पायर कर देते थे और लोग गाने लगते थे। तो मैं यही कहूंगा कि बहुत से रागों को उन्होंने प्रस्तुत किया है, जो प्रचलित राग नहीं थे उनको भी प्रचलन में लाए।
0: और अब हम चाहते हैं कि पिता पुत्र के बीच एक रिश्ता होता है और गुरु शिष्य के बीच एक रिश्ता होता है, तो उस रिश्ते के बारे में बताइए।
1: मुझे कई बार मेरा गाना सुन के कहते थे कि थोड़ा और रियाज करो, थोड़ी और मेहनत करो, ये जो नाम हो गया है उस चक्कर में मत फंस जाना। लेकिन मुझे भी थोड़ा ये रिग्रेट है, मुझे अफसोस है कि मैं उनसे कुछ 5 साल और सीखना चाहता था, लेकिन मेरा नाम जरा जल्दी हो गया। और एक बार नाम हो जाए फिर हम फंस जाते हैं अपने कार्यक्रमों में, सारी दुनिया घूमने में। तो एक ही रिग्रेट मेरे अंदर है कि मेरा नाम थोड़ा जल्दी हो गया, 5 साल बाद हो जाता तो मैं शायद और अच्छा गाता और सीख पाता।
0: सर, हम सब तो मंत्रमुग्ध होते हैं आपकी गायकी से और पिताजी पुरुषोत्तम दास जी की गायकी सुनकर। अब हम चाहते हैं कि पुरुषोत्तम दास जलोटा जी की कोई भजन आप हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: हाँ, एक उनका भजन बहुत ही सुंदर है, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भजन बिंदु स्वामी का लिखा हुआ है। मैं चाहूंगा कि पिताजी का गाया हुआ ये भजन पूरा सुनाया जाए।
0: जी।

0: की लगन। आप सुन रहे हैं जानी मानी गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आज आपके साथ पूजा नरानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा नमस्कार। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का पहला गीत, फूल बने अंगारे। इस फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की है, रचना आनंद बख्शी की और धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

भूले बिसरे गीत में ये पहला गीत अभी आपने सुना फूल बने अंगारे फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी की रचना थी धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अगला गीत सुनते हैं। नगमा फिल्म से ये गीत है शमशाद बेगम की आवाज में नाशाद का संगीतबद्ध किया गीत।

0: शमशाद बेगम की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म नगमा से। आइए अब सुनते हैं एक संदेश।
1: कहिए,
2: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
3: शुक्रिया, शुक्रिया।
2: रिकॉर्डिंग के लिए

0: नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
1: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए आपको सुनवाते हैं अगला गीत आह फिल्म से। हसरत जयपुरी की रचना है, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

न्यूज ऑन एयर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 7:15 हुए हैं। हम जानकारी दे दें अपने केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। जी हां, आपसे कुछ ही देर बाद प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचारों को तुरंत बाद ठीक 7:30 पर आप सुन पाएंगे गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। आज सुबह 8:15 आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग आप सुन पाएंगे आज दोपहर 12:30 पर और लोक संगीत का समय होगा आज शाम 5:30। आज सुबह 8:30 सुनिएगा दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा तकनीक से जुड़ी शिक्षा आज की आवश्यकता। अन्य जानकारियों के साथ इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे एक भेंटवार्ता जिसका विषय होगा अनियमित रक्तचाप से बचाव में आयुर्वेद की भूमिका। इस विषय पर जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ

0: ఆయుర్వేదాచార్య డాక్టర్ సుధీర్ కుమార్ సింగ్. ఫిల్మీ గీతం కా ఆనంద్ లీజియేగా ఆజ్ సుబహ 9 బజే కార్యక్రమ ఆప్కే సందేశ్ ఆప్కే గీత్ ఆజ్ సుబహ ఔర్ రాత్రి 9:30 బజే ఆప్ సున్ పాయేంగే సజీవ్ ఫోన్ ఇన్ కార్యక్రమ హలో అయోధ్యా సే బాతే కర్నే కే లియే ఆప్కో డయల్ కర్నా హోగా హమారా ఫోన్ నంబర 73-76-80-40-90 ఆజ్ సుబహ ఔర్ రాత్ 9:30 బజే కార్యక్రమ హలో అయోధ్యా మే. शाम 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्मी गीतों का शाम सुहानी और आज दोपहर 1 बजे फेसबुक श्रोताओं की फरमाइश हम पूरी करेंगे कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में. आज शाम 6:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के. आज रात 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन. 9:15 पर कार्यक्रम महफिल गजल. आज दोपहर 2:30 पर ग्रामीण महिलाओं के कार्यक्रम अंगना में चर्चा होगी स्वयं बने जिम्मेदार नागरिक. साथ ही सुनिएगा फरमाइशी लोक संगीत हमारे सेगमेंट लोक सुमाला में. आज दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे भजन गीत व गजल कार्यक्रम गीतांजलि में. आज शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम युवाणी जिसमें चर्चा होगी मेरी गांव मेरी धरोहर विषय पर. व्यक्ति विशेष में आप जानेंगे आर के नारायण के बारे में और खेल संसार भी आप सुन पाएंगे खेल खबरें इसी कार्यक्रम युवाणी में. कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा आज शाम 6:45. इस कार्यक्रम में चर्चा होगी ऊर्जा संरक्षण के बारे में. साथ ही आप सुन पाएंगे हमारे मेहमान डॉक्टर प्रेमनाथ प्रक्षेत्र अधीक्षक जिला अयोध्या से की गई भेंटवार्ता जिसका विषय होगा जायद की फसलों में सामयिक कृषि कार्य उर्द मूंग लोबिया तथा सूरजमुखी की खेती. यह तो थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज का खास खास कार्यक्रमों की. न्यूज़ ऑन AIR ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ. इस वक्त आपसे रूबरू है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी. कुछ ही पलों में कुछ एक संदेशों के पश्चात ठीक 7:20 पर आप सुन पाएंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से. कृपया प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन की कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा.
1: प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं कचरा इत्यादि उदाहरण. देश को प्रदूषण मुक्त बनाए मन में ये संकल्प बनाए.
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ. यही अद्वितीय तुम हो. जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो. APJ अब्दुल कलाम.
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा. सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान. जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है. अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो. सुभाष चंद्र बोस.
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है. यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती.
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार. नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक. पहले मुख्य समाचार. CBI ने कथित नीट पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला. देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट UG परीक्षा रद्द. अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की. मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश. और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई. आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत. अब समाचार विस्तार से.

0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस प्रकरण में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी। एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: इस बीच एनटीए ने स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एक रिपोर्ट।
2: एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल एआईआर न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से जुड़ने की अपील के साथ ही कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: राज्य सरकार की तैयारियों के संबंध में कल अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने स्वयं और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% तक कटौती करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत अनावश्यक वाहनों को हटाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी जिम्मेदारी निभाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक उपयोग किया जाए और सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाया जाए। साथ ही मंत्री, सांसद और विधायक भी सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। श्री योगी ने कहा कि सरकारी बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का अधिक से अधिक आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाए जिससे अनावश्यक यात्रा और ईंधन की खपत कम हो सके। इसके अलावा उन्होंने वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वे मेट्रो, बस, साइकिलिंग और कार पूलिंग जैसे विकल्प अपनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सभी को सतर्क और जिम्मेदार व्यवहार अपनाने की आवश्यकता है। समाचार अरुण।
0: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कल गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की

0: अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि कौशल विकास संस्थान आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में आज से अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग का शुभारंभ होगा। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में मेजबान यूपी और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों के 275 खिलाड़ी शामिल होंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने पूर्वी जिलों में कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। इस बीच प्रदेश के पश्चिमी जिलों में कल हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी है। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
0: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आगामी दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहाँ से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
0: आगरा जिले के कमलानगर थाना क्षेत्र में कल यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी बच्चों को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। अंतिम समाचार मिलने तक 2 बच्चों का उपचार जारी था। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक के संबंध में दर्ज किया मामला। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। अलग से अधिसूचित की जाएगी नई परीक्षा तिथि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर ईंधन की बचत और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से जुड़ने की पहल की। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में 50% कटौती सहित दिए कई अहम निर्देश। और मौसम विभाग ने कल से मौसम साफ होने की संभावना जताई। आने वाले दिनों में तापमान बढ़ने के संकेत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र है 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में गणेश जी की ये आरती, लेकिन उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: Download Waves OTT app now and watch for free.
1: ये तपती धूप सिर्फ हमें ही नहीं सताती, जरा सोचिए उन बेजुबान पंछियों के बारे में जिनका गला सूख रहा है लेकिन वो पानी मांग नहीं सकते।
2: और वो सड़क पर रहने वाले जानवर जो छांव और एक घूंट पानी की तलाश में मीलों भटकते हैं।
1: इस भीषण गर्मी में इंसानियत का धर्म निभाएं, अपनी छत, बालकनी या घर के बाहर एक मिट्टी के बर्तन में साफ पानी जरूर रखें।
2: पंछियों के लिए पानी के साथ थोड़ा दाना भी रखें और हो सके किसी छायादार जगह पर पानी की व्यवस्था करें।
1: ध्यान रहे, मिट्टी का बर्तन सबसे अच्छा है क्योंकि इसमें पानी ठंडा रहता है, बस रोज पानी बदलना ना भूलें।
2: आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जान बचा सकता है।
1: इस गर्मी प्यास को हराएं, इंसानियत का फर्ज निभाएं।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
4: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
5: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
4: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
5: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
4: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
5: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
4: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
5: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
6: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
7: नहीं अछूता हो जिस...
6: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन

गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। इस वक्त आपके साथ है आपका रेडियो दोस्त विवेक सोनी। कार्यक्रम में आप सुनिए ओम व्यास की आवाज में ये भक्तिमय रचना।

0: परमपिता परमेश्वर की कृपा के बिना इस जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं, इस बात का पता हम सबको है। तो बेहतर है कि उसकी शरण में जाया जाए और उसे प्रार्थना की जाए कि हमारा जीवन निरर्थक न होने पाए। कुछ ऐसा इस जीवन में हम कर जाएं कि सारी दुनिया याद करे। गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हम आपको एक और भक्ति रचना सुनाने जा रहे हैं कैलाश अनुज और पीयूषा माथुर की आवाज में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या

एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे गणेश जी की वंदना। और अब कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये अंतिम भक्ति रचना, आइए सुनते हैं। इस भक्ति रचना को अपने स्वर दिए हैं लखबीर सिंह लखा ने।

रघुवीर सिंह लखा और साथियों के गाए इसी भक्ति गीत के साथ ही गैर फिल्मी भक्ति संगीत का कार्यक्रम अमृत कलश संपन्न होता है। न्यूज़ वन यार ऐप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया समाचारों की कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार का बहुमत परीक्षण आज। राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के सरकार को विधानसभा में आज अपना बहुमत साबित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में अब टीवीके के पास लगभग 150 विधायकों का समर्थन है।
1: मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय विधानसभा में विश्वास मत परीक्षण से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। सहयोगियों के समर्थन के साथ साथ टीवी के सरकार को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK से अलग हुए गुट का समर्थन प्राप्त है। इस बीच तमिलनाडु में AIADMK सरकार को समर्थन देने को लेकर दो गुटों में बंट गई। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडप्पाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ नेता एग्री कृष्णमूर्ति ने चेतावनी दी है कि पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले किसी भी विधायक को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले दूसरे गुट ने SP वेलुमणि को AIADMK विधायक दल का नेता चुना है। चेन्नई से

0: जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
1: वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य सरकार में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया है, जिनमें पूर्व मुख्य सचिव एन मुरुगंदम और वित्त सचिव टी उदय चंद्रन शामिल हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्योतिषी रिकी राधान पंडित को विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त किए जाने पर गठबंधन सहयोगी ने कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल और ज्योतिमणि ने इस नियुक्ति पर सवाल उठाए, जबकि सीपीआईएम के राज्य सचिव पी शुनगमुगम ने कहा है कि कदम सरकार के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के खिलाफ है। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के नेता एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुदुचेरी में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। एन रंगासामी एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 76 वर्षीय एन रंगासामी का मुख्यमंत्री के रूप में यह 5वां कार्यकाल होगा। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा पुदुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराना और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीपी रामलिंगम सहित कई प्रमुख नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले श्री नितिन नवीन ने पार्टी मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के साथ बैठक की। पुदुचेरी से विपिन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा पर कड़ा रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। पुलिस ने सीमा पार तस्करी, अवैध पशु बाजारों, बूचड़खानों और अवैध खनन के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कथित नीट पेपर लीक मामले में शुभम खैरनार को हिरासत में ले लिया है। राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक पुलिस ने कल महाराष्ट्र के नासिक से शुभम को हिरासत में लिया था। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा कल पेपर लीक के आरोपों के बीच रद्द कर दी गई। नीट यूजी के एक उम्मीदवार के अभिभावक ने लातूर एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है और आरोप लगाया है कि एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट आयोजित किया था, जिसमें कथित तौर पर 42 प्रश्न नीट परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से मेल खाते थे। इससे पहले राजस्थान पुलिस के विशेष जांच दल ने संदिग्ध नेटवर्क और धन के लेनदेन की जांच के दौरान 15 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कल जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को भी गिरफ्तार किया। इसी महीने की 7 तारीख को सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को देहरादून से गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन 4 नीट उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया। इस बीच राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर राज्य भर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मितव्ययिता के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया और साप्ताहिक वाहन मुक्त दिवस को प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस

0: यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। मुख्यमंत्री के काफिले में अब केवल 8 वाहन होंगे और कोई भी वाहन रैली आयोजित नहीं की जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कार पूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो और बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इसके अलावा अनुपालन मानदंडों की पूर्ति के अंतर्गत कीमती धातु के प्रयुक्त उत्प्रेरक पर 4.35% आयात शुल्क निर्धारित किया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के चलते लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वार्षिक और चौथी तिमाही के अनुमानों की प्रकाशन तिथि को संशोधित करते हुए प्रत्येक वर्ष मई के अंतिम कार्य दिवस से बदलकर 7 जून कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये संशोधन आंकड़ों की गुणवत्ता को और मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर जाएगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन की ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेइचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया है कि व्यापार इस वार्ता का प्रमुख विषय रहेगा। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसवेनी ने जनवरी में हुए चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद अपने 7वें कार्यकाल की शपथ ली। राष्ट्रपति मुसवेनी पिछले 40 साल से राष्ट्रपति पद पर हैं। श्री मुसवेनी ने कल युगांडा की राजधानी कंपाला के कोलोलो इंडिपेंडेंस ग्राउंड्स में आयोजित समारोह में हजारों लोगों के बीच पद की शपथ ली। श्री मुसवेनी ने 71% से अधिक वोट हासिल किए। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन इस सप्ताह हो सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ सकता है। मौसम विभाग ने बताया कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कल भी इसी क्षेत्र में था और इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 4.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ था। इस बीच राजस्थान के सीमावर्ती जिले भीषण लू की चपेट में हैं। कई स्थानों पर तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम केंद्र ने सीमावर्ती बाड़मेर, जैसलमेर और फलोदी जिलों के लिए आज भीषण गर्मी और लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 पश्चिमी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 6 दक्षिणी पूर्वी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिन के साथ रातें भी तप रही हैं और कई स्थानों पर रात का पारा 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा जा रहा है। गर्मी की इन परिस्थितियों से जनजीवन पर खासा असर हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिन तापमान के यही हालात रहने के आसार हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
1: महाराष्ट्र के सांगली जिले की जाट तहसील में कल एक धार्मिक सभा के दौरान दीवार गिरने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जम्मू कश्मीर में सेना के कल पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में एक आतंकवादी को मार गिराया गया। हमारे संवाददाता के अनुसार सेना को मिली सूचनाओं के बाद शाम करीब 4 बजे नियंत्रण रेखा के अंदर संदिग्ध गतिविधि देखी गई। इस पर सैनिकों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। प्रतियोगिता में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं।

0: 72 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में फोगाट ने कोरिया के सेंगुमिन ली को पराजित किया। वहीं 8 भारतीय लड़कियों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए फाइनल में जगह बनाई और 4 ने कांस्य पदक जीते। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट यूजी 2026 की परीक्षा निरस्त करने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है सीबीआई को पेपर लीक की जांच, एक गिरफ्तार, 20 संदिग्ध हिरासत में। दैनिक भास्कर की खबर है 22 लाख अभ्यर्थियों से खिलवाड़, परीक्षा दोबारा होगी, नई तारीखों की घोषणा जल्द। कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की समेट, नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है पीएम से भी संयुक्त मुलाकात, खाड़ी संकट के बीच दिल्ली पर दुनिया की निगाहें। तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक के 30 विधायकों का टीवीके को समर्थन का ऐलान, विजय आज बहुमत साबित करेंगे, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। अमर उजाला ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है नया भारत और बदलती सियासी समझ, संपादक का कहना है कि हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि देश का मिजाज अब राजनीति में किसी तरह की संकीर्णता को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोलकाता से लेकर चेन्नई और तिरुवनंतपुरम तक नए की उम्मीद और पुराने के प्रति गुस्से के चलते मौजूदा व्यवस्था बहती दिखी। दैनिक जागरण ने पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के शब्द प्रकाशित किए हैं, पेट्रोल उत्पादों की दिक्कत नहीं लेकिन कंपनियों का घाटा चिंताजनक। शेयर मार्केट में निवेशकों के 9 लाख करोड़ स्वाहा, आखिरी घंटे और बढ़ी गिरावट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट टूटने से मचा हाहाकार। लोकसत्य ने कारोबार पन्ने पर यह खबर प्रकाशित की है। जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस बनी लोगों की पहली पसंद, 10 दिनों में करीब 45,000 यात्रियों ने किया सफर, देश बंधु की खबर है। नवभारत टाइम्स ने जनगणना 2027 पर खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है अब क्यूआर कोड से जनगणना कर्मियों की होगी पहचान, फर्जी मैसेजेस को लेकर किया फैसला, मेहनत के बिना जवाब, चैटबॉट खत्म कर रहा रचनात्मकता, राजस्थान पत्रिका ने डिजिटल एडिक्शन शीर्षक से खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार का बहुमत परीक्षण आज। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगासामी आज पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के उपाय शुरू किए। केंद्र ने सोना सहित अन्य कीमती धातुओं के उत्पाद शुल्क में वृद्धि की। मौसम विभाग का अनुमान, समय से पहले दस्तक देगा मानसून। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र 101.9 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 8:15 हुए हैं। अगर आपने अभी अभी अपने रेडियो सेट को ट्यून किया है तो हम बता दें कि इस वक्त हम प्रसारित करने जा रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं शंकर महादेवन की आवाज़ में ये मीठी सी रचना, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
3: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

इसी प्यारे से गीत के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम सुर संगम अब समाप्त होता है। न्यूज़ वन आईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी की अयोध्या केंद्र के साथ।

0: प्रणाम अयोध्या।
1: आपके संदेश
2: संदेश से आते हैं,
1: आपके गीत
2: मैं ये गीत सुनाता हूँ।
1: आपके संदेश आपके गीत कार्यक्रम में अपनी पसंद के फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 9 बजे से। फरमाइश भेजते समय सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए ASAG लिखें, फिर स्पेस देकर फिल्म का नाम, गीत के बोल, प्लेबैक सिंगर्स के नाम, अपने नाम और जिले का नाम लिखकर भेज दें आकाशवाणी अयोध्या के व्हाट्सएप नंबर 8303219911।

अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी, परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन

0: होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
3: कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है आपका रेडी दोस्त विवेक सोनी। आज की बात, तकनीकी शिक्षा आज की आवश्यकता। यह शिक्षा हमें योग्य बनाती है, संस्कारवान गुणी और एक आम इंसान से अलग पहचान दिलाती है, लेकिन यदि शिक्षा के साथ तकनीक मिल जाए तो यकीन मानिए सोने में सुगंध जैसी स्थिति बन जाती है। जी हाँ, आज देश दुनिया का कोई भी क्षेत्र तकनीक से अछूता नहीं है। पुराने ज़माने में जहाँ बुद्धू बॉक्स यानी टेलीविज़न एक बड़े डिब्बे की शक्ल में भारी भरकम और एक स्थान पर स्थिर रहने वाला डिवाइस था, वहीं तकनीक के सहारे आज वही बुद्धू बक्सा स्मार्ट एलईडी टीवी के रूप में आपके रूम की शोभा बढ़ा रहा है। इससे भी आगे बढ़कर अब कैलेंडर टीवी भी प्रचलन में आ चुके हैं। पहले घर में एक मोबाइल फ़ोन होना बड़े शान की बात हुआ करती थी, वहीं आज आपके घर के ही हर सदस्य के हाथ में एक ज़बरदस्त डिवाइस स्मार्टफोन के रूप में आपको तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का महत्व समझा रही है और बता रही है कि अब मोबाइल शान की बात नहीं बल्कि हमारी ज़रूरत है, नेसेसिटी है। आपके घर के छोटे बड़े बच्चे भी उसका उपयोग बखूबी कर रहे हैं, जानते हैं कैसे इसका उपयोग करना है, बहुत आसानी से करते हैं। पुराने दौर में कंप्यूटर भी स्वयं एक डिब्बे के रूप में घर दफ्तर की मेज़ों पर रखा जाता था, लेकिन उसके स्थान पर तकनीक की मदद से आज स्मार्ट लैपटॉप्स कंप्यूटर्स और नई जनरेशन के स्मार्ट डिवाइसेस से हम सभी धीरे धीरे परिचित हो ही रहे हैं। डेयरी उद्योग, प्रिंटिंग, मेडिकल लाइन, न्याय विभाग, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, फोरेंसिक साइंस, आर्किटेक्चर, स्पोर्ट्स, मनोरंजन तथा जीवन का हर क्षेत्र आज तकनीक के कारण फास्ट, एक्यूरेट और स्मार्ट हो चला है। जी, हमारी आवाज़ जो आप सुन रहे हैं अपने रेडियो सेट पर या मोबाइल पर या ऐप के ज़रिए, वो भी तो तकनीक के माध्यम से ही संभव हो रहा है। और आज तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल पड़ा है। इस तकनीकी के युग के साथ ही, तकनीकी बूम के साथ ही, टेक्नोलॉजी को जानने समझने और उसमें आने वाली समस्याओं के निवारण के लिए उनसे डील करने में सक्षम ऐसे विशेषज्ञों, ऐसे लोगों की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है जो इस क्षेत्र में अध्ययनरत हों या अध्ययन कर चुके हों, और उन्हें इस फील्ड में आने वाली ऐसी छोटी बड़ी समस्याओं को हैंडल करने में महारत हासिल हो। आपकी एकेडमिक एजुकेशन आपको डिग्री दिलाने के साथ ही आपकी क्वालिफिकेशन को तो ज़रूर बढ़ाएगी, परंतु तकनीकी शिक्षा आपको इस दुनिया पर राज करने वाला बना सकती है, क्योंकि आज के इस तकनीकी युग में आपके पास लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, और किसी भी छोटी बड़ी समस्या का समाधान जिसके भी पास होता है लोग उसी को अपना आदर्श, रोल मॉडल या हीरो मानते हैं। आपने गूगल के, जी हाँ, CEO सुंदर पिचाई का नाम तो सुना ही होगा। भारतीय मूल के हैं, लेकिन तकनीकी शिक्षा के माध्यम से पूरा वर्ल्ड एक तरह से आज उनके कंट्रोल में है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, थ्रेड्स, यूट्यूब जैसी ना जाने कितने प्लेटफॉर्म्स आज हमें वर्चुअली बिजी रखते हैं, और सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है तकनीकी शिक्षा के माध्यम से।

0: से। हमें ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर अपनी जानकारियां शेयर करना अच्छा लगता है, वहां हम टाइम स्पेंड करते हैं। आपको पता है कि इन प्लेटफॉर्म्स के पास अपनी कोई विशेष जानकारी नहीं होती, लेकिन हमारे आपके जरिए पूरे विश्व पर अपनी मोनोपोली बनाए हुए हैं। आखिर यह सब संभव हुआ तो सिर्फ और सिर्फ तकनीकी शिक्षा के कारण। ऑनलाइन बिजनेस का चलन जबरदस्त रूप से बढ़ चुका है। ऐसे अनेक प्लेटफॉर्म्स हमारी जानकारी में हैं जो अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाते, लेकिन दुनिया भर में उनके जरिए अरबों खरबों का व्यापार चल रहा है। वे दूसरों के प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म से टैग कर सिर्फ डिलीवरी करके सफल हो चुके हैं। जिसने प्रोडक्ट बनाया उसका प्रोडक्ट अच्छी कीमत पर बिक गया, आपको घर बैठे ही डिलीवर हो गया और पैसा उनके पास पहुंच गया। निर्माता खुश, आप खुश और प्लेटफॉर्म बनाने वाला तो खुश है ही। जी हाँ, यही है तकनीकी शिक्षा का कमाल। ये सब सिर्फ उदाहरण हैं और हमारे सामने सब कुछ घटित हो रहा है, हम लोग उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यदि आप स्वयं को आगे और आगे ले जाना चाहते हो तो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन के भरोसे रहना नादानी होगी। समझदारी इस बात में है कि आप जिस भी क्षेत्र में आज काम कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हों, उस एक क्षेत्र में उसकी तकनीक से स्वयं को शिक्षित अवश्य कर लीजिए। यदि आप अभी पढ़ रहे हैं तो ट्रेडिशनल एकेडमिक ज्ञान के साथ ही किसी भी तकनीकी शिक्षा को भी अवश्य अपनाइए, क्योंकि इसके बिना आने वाले समय में आप आउटडेटेड हो जाएंगे। लेकिन यदि आप तकनीक के साथ रहेंगे तो जब तक रहेंगे हमेशा रेलिवेंट रहेंगे। इस तथ्य को हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही हमारे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि आज के समय में टेक्निक इज मनी और टेक्निकल एजुकेशन के अभाव में आपका एकेडमिक ज्ञान भी पीछे ही रह जाता है। जी हाँ, तकनीकी शिक्षा आज की आवश्यकता है, इसे ज़रूर से ज़रूर अपनाइए और आगे बढ़ते जाइए। वैसे आप इस बात से सहमत ही होंगे कि जब हम किसी भी क्षेत्र में असफल होते हैं, फेल होते हैं, तो उसका बैड इफेक्ट हमारे बॉडी पर, हमारे शरीर पर पड़ता ही है। हमारे शरीर की गतिविधियाँ उसकी चाल बदल जाती है। बीपी यानी रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा होने ही लगता है। अनियमित रक्तचाप से बचाव में आयुर्वेद की भूमिका, जी हाँ, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे मेहमान हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह। आपसे बातचीत कर रहे हैं संजय धरद्वेदी। आइए सुनते हैं यह सामयिक भेंटवार्ता।
1: श्रोताओं, जैसे ही गर्मी प्रारंभ होती है एक चीज मन को खटकने लगती है, अनियमित रक्तचाप। चाहे वो जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, दोनों में इससे संभल के रहना होता है। ये अनियमित रक्तचाप क्या है और उससे कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में हमें जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी। सुधीर जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में, आकाशवाणी परिवार की तरफ से और हमारे सुनने वाले श्रोताओं की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम चाहते हैं कि आप थोड़ी सी चर्चा पहले रक्तचाप के बारे में करें।
2: सभी श्रोतागण को सुधीर कुमार सिंह जी का नमस्कार। जैसा कि आपने कहा, रक्तचाप गर्मी के में ज्यादातर लो ब्लड प्रेशर की ही शिकायत होती है।
1: सर,
2: हाई ब्लड प्रेशर के चांसेस में कम होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर ज्यादातर सर्दियों में या जो लोग बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको देखा जाता है।
1: यानी ये चीज हमको समझना चाहिए कि जब बहुत गर्मी हो तो ज्यादातर लोग लो ब्लड प्रेशर के शिकार
2: संभावना ज्यादातर
1: रहती है, और जब बहुत ठंड हो तो हाई ब्लड प्रेशर की संभावना
2: ज्यादा रहता
1: जी।
2: है, एक सामान्यतः ये नियम है।
1: सर, जब हम दो तरह के ब्लड प्रेशर आ गए हमारे सामने
2: जी,
1: दोनों ब्लड प्रेशर के बारे में बताएं कि कैसे लोग इसके शिकार होते हैं और दोनों में घातक कौन है।
2: जैसा कि लो ब्लड प्रेशर ज्यादातर यंग लड़कों में, लड़कियों में, महिलाओं में ज्यादा देखा जाता है,
1: मतलब युवा वर्ग के अंदर ही ज्यादा आता है।
2: हाई भी देखा जाता है, लेकिन गर्मी के मौसम में संभावना ज्यादा रहती है कम होने की, क्योंकि वो खाली पेट निकलते हैं, गर्मी की वजह से पानी कम पीते हैं, तो उससे ज्यादातर बीपी लो ही होने की संभावना रहती है, हाई होने की संभावना कम
1: रहती है। यानी युवा वर्ग में जो लोग खाली पेट निकलते, एक शर्त आपने बताई कि अगर खाली पेट है तो लो ब्लड प्रेशर होने की संभावना है। ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर खा पी के निकले हो और धूप में निकल गए तो लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं?
2: बिल्कुल, अगर खाने के में नमक या पानी में नमक की मात्रा कम हो सकती है, ज्यादा देर धूप में रहने से पानी का लॉस होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होने की संभावना ज्यादा रहती है।
1: सर, इसका कोई सिम्टम प्रकट होता है, कैसे जान पाएंगे हम?
2: बिल्कुल, इसमें चक्कर आना, शरीर में भारीपन होना, कपी आना, सिर में भारीपन होना, ये सामान्यतः लक्षण होने लगते हैं। चलने फिरने में कुछ हाफा जैसा भी आने लगता है।
1: डॉक्टर सुधीर जी, हमारे बहुत सारे श्रोता आपको सुन रहे हैं, ऐसे में जबकि राह चलते अचानक किसी को लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और वो बैठ जाएगा सड़क के किनारे, आसपास के लोग उसकी मदद किस तरह से कर सकते हैं?

0: या मरीज अगर अपने लिए कोई मदद कर सकता है तो कैसे कर सकता है?
1: कुछ नहीं, उसके लिए कहीं ठंडी जगह पे पहला चीज अपना जाके आराम करे, सर को ढक ले। अगर कहीं आसपास में नींबू पानी का या नमक का कोई भी व्यवस्था हो, ओआरएस घोल टाइप का, तो वो बना के तुरंत पी ले। अगर किसी कारणवश मरीज बेहोश हो गया हो तो उसके कपड़े खुले कर दें, थोड़ा सा ढीले कर दें, हवा का थोड़ा प्रबंध कर दें और पैर को थोड़ा सा ऊंचा कर दें कि जिससे ब्लड का फ्लो पैरों की अपेक्षा हृदय के पास जाने लगे, तो उससे बेहोशी उसके तुरंत दूर होने की संभावना होती है।
0: फिर उसके बाद डॉक्टर के पास, सर ये तो परिस्थिति जन्य हुआ, क्या ऐसा भी होता है कि रेगुलर किसी को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती
1: है? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। कुछ अन्य बीमारियां जैसे थायराइड, हार्ट की पहले से कोई बीमारी, गुर्दे की संबंधित या धमनियों संबंधित कोई बीमारी, अगर उसको लंबे समय से चली आ रही है तो उसको ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है
0: जी।
1: इसके लिए वो अपना नियमित चेकअप कराते रहे जिससे पहले ये कन्फर्म हो कि उनका रेगुलर में बीपी कितना बना रहता है। सामान्यतः लोगों का बीपी 120 और नीचे वाला डायस्टोलिक 80 तक होना चाहिए
0: जी।
1: इसको हम लोग नॉर्मल मानते हैं। कभी कदार ये इसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, कुछ किसी किसी का कभी बीपी 150-90 तक भी हो जाता है।
0: हाँ।
1: तो उसको तुरंत दवाई लेने की अपेक्षा कुछ परहेज वगैरह करके, प्राणायाम योग करके उसको धीरे धीरे कम किया जा सकता है।
0: ये कितना खतरनाक हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए?
1: अत्यधिक बीपी उसकी आंखों को, उसके दिल को, गुर्दे को, यहाँ तक कि ब्रेन स्ट्रोक, पक्षाघात जिससे कहते हैं, उससे भी हो सकता है।
0: जो मतलब हाई ब्लड प्रेशर है,
1: हाई ब्लड प्रेशर।
0: और लो ब्लड प्रेशर में कितना घातक हो सकता है?
1: उसमें यही दिक्कत होती है कि थोड़ा सा पेशेंट कहीं भी अगर मरीज आ जा रहा तो उसको चक्कर आके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। कहीं भी वो किसी भी स्थिति में रोड पे, नदी नाले के किनारे भी कहीं भी वो गिर सकता है जी।
0: जब हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम लोग
1: जी,
0: तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए हमको? क्या किसी भी उम्र के व्यक्ति को कभी भी हो सकता है या एक उम्र की सीमा पार करने के बाद ये स्थिति आती है?
1: पहले तो ऐसा कहा जाता था कि 40 प्लस के ऊपर लोगों को, पुरुषों को ज्यादा होने की संभावना होती है।
0: हाँ।
1: लेकिन आजकल ये देखा गया है कि ये 25 से 20 साल के लोगों में भी ब्लड प्रेशर होने की संभावना होती रहती है। तो पहला काम ये है कि अगर आपको इस तरह के कोई लक्षण आ रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, या तो आप पहला अपना नॉर्मल बीपी चेक कर लीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे बीपी इंस्ट्रूमेंट भी हैं, एक लेके अपना घर में अपना रेगुलर नियमित चेकअप करते रहे, एक चार्ट बना ले जिससे आपका पता चले कि आपका डायस्टोलिक और सिस्टोलिक में कितना डिफरेंस आ रहा है। 10 दिन, हफ्ते दिन, अगर उसमें आपको कुछ ज्यादा वेरिएशन हो रहा है तो किसी चिकित्सक से परामर्श ले लें कि इसमें मेरा बीपी कैसा है, उसी हिसाब से वो आगे दिशा निर्देश करेंगे।
0: ये जो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है
1: जी,
0: इसमें आजकल के जीवन शैली और खान पान का कितना रोल है?
1: इसमें बहुत है, अनियमित निद्रा लेना, प्राणायाम व्यायाम नहीं करना, अपने हिसाब से खाना भोजन करना, अधिक नमक की मात्रा यूज करना, हाई कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों को लेके खाना, निद्रापान करना, तनाव लेना, ये सारे कारण बीपी को बढ़ाते ही हैं।
0: मैंने ये सारी चीजें जो है बीपी को बढ़ा सकती हैं
1: जी।
0: दवाओं के अतिरिक्त इस पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि आप आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, कैसे हम लोग बचे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है या बुजुर्ग लोग हैं वो क्या सावधानी बरतें कि इसके परेशानी में न जाएं?
1: इसके सबसे बढ़िया इससे बचाव के लिए पहला सुबह नियमित व्यायाम करें, आहार समय पर लें और अपना नियमित चेकअप कराते रहें, क्योंकि बीपी का मेन कारण अपने आप नहीं बढ़ता है, उसके साथ में कोई ना कोई और दूसरी शारीरिक समस्याएं जो होती हैं, गुर्दे की समस्या या और कोई बीमारियां, उससे बढ़ने के संबंध, तो उसको पहले उस रूट को, कॉज को देखा जाए कि किस वजह से बीपी बढ़ रहा है, इसका कोई और कारण तो नहीं है
0: जी।
1: क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ बीपी की दवाइयां ही खाते रहते हैं और उसका दूसरा कारण नहीं ढूंढा जाता है कि किस वजह से बढ़ रहा है। कभी कदा अत्यधिक तनाव की वजह से, वर्कलोड की वजह से भी बीपी बढ़ता है, तो आप बीपी की दवाई खाते रहेंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला।
0: मतलब कारणों के तह में जाना जरूरी है और उन कारणों को अगर हम ठीक करेंगे तो बीपी की समस्या को बहुत हद तक जो है वो नियंत्रित किया जा सकता है। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे जो लोग लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं या जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं?
1: लो ब्लड प्रेशर वाले तो अपना दिनचर्या सही से रखें, कहीं भी अगर आना जाना हो तो अपना एक पानी का बोतल, उसमें नमक, चीनी, नींबू का घोल बना के पीते रहें। कुछ औषधियां जैसे अर्जुनारिष्ट वगैरह होता है, सारस्वतारिष्ट, ये सब दवाओं का सेवन भी कर सकते हैं
0: चिकित्सक के सलाह
1: के अनुसार।
0: डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह जी, आप आयुर्वेदाचार्य हैं, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने अनियमित रक्तचाप से बचाव में आयुर्वेद की जो भूमिका है, कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इस संबंध में हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपका शरीर आपकी पहचान है। जी हाँ, ये वो सौगात है, वो गिफ्ट है जो परमपिता परमेश्वर ने आपको सौंपी है और उसको मेंटेन करना, उसकी देखभाल करना आपकी ही जिम्मेदारी है।

0: शरीर में बीपी का हाई या लो होना अपने आप में एक बीमारी है, उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। बस जो बातें बताई गई डॉक्टर सुधीर सिंह जो हमारे मेहमान थे आयुर्वेदाचार्य, और उनसे बात कर रहे थे संजय धर द्विवेदी। आज की बातचीत का विषय था अनियमित रक्तचाप से बचाव में आयुर्वेद की भूमिका। यकीनन आप इन बातों को अपनाएंगे तो आपको लाभ होगा। दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अब एक छोटे से संदेश के बाद हम आपको सुनवाएंगे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में एक प्यारा सा गीत।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज,
2: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त,
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा,
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।

दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या में आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ 101.9 एफएम और न्यूज ऑन एआईआर ऐप के जरिए। और अब चलते चलते बात समाचार पत्रों से। जी हां, डाक विभाग अयोध्या मंडल 17 मई से प्रधान डाकघर में प्रत्येक रविवार को आधार संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह पहल आमजन कि आधार से जुड़ी सेवाएं अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से की गई हैं। डाक अधीक्षक ने बताया कि अब रविवार यानी संडे अवकाश के दिन भी विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत नागरिक आधार नामांकन करा सकेंगे। वे अपने आधार में नाम, पता और मोबाइल नंबर में संशोधन भी करवा सकते हैं। जन्मदिन संशोधन और बायोमेट्रिक अपडेट जैसे महत्वपूर्ण सेवाएँ भी उस दिन प्रदान की जाएंगी। और अब प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए जर्मनी में नर्स के पदों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सेवायोजन विभाग के रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को प्रतिमाह 2500 यूरो यानी लगभग 2,25,000 रुपये वेतन मिलेगा। नर्स के पदों के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम योग्यता वाले 20 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सहायक निदेशक सेवायोजन अयोध्या मंडल ने बताया है कि पुरुष और महिला उम्मीदवार रोजगार संगम .up.gov.in पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं।

और अब अगले समाचार की तरफ चलते हैं। डीएलएड परीक्षा जिले में 14 परीक्षा केंद्रों पर आज शुरू हो रही है। डाइट के प्राचार्य ने बताया है कि सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक की परीक्षाएं चलेंगी। द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा आज के दिन से 15 मई तक और चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 18 से 20 मई तक आयोजित की जाएगी। दोनों सेमेस्टर में 5,670 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। और अब अगले खबर की ओर चलते हैं। दीवानी न्यायालय की ओर से नियुक्त अधिकार मित्रों को क्षेत्र में काम करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश और तरीके सिखाए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया है कि उनको प्रशिक्षित किया गया है। अब वह जमीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता फैलाने का कार्य करेंगे। यह बैठक दीवानी न्यायालय परिसर स्थित बहुमंजिला बिल्डिंग के सभागार में आयोजित की गई थी। सचिव ने नवनियुक्त अधिकार मित्रों को आम जनता के

बीच जाकर काम करने, जानकारी देने और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की विधियां बताई हैं। और अंतिम खबर जनपद अंबेडकर नगर जिले से है। जनपद में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत संचालित गेहूं खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से अंबेडकर नगर जिले की जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के कुल 88 गेहूं क्रय केंद्रों का व्यापक भौतिक सत्यापन कराया गया। यह सत्यापन उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारियों की टीमों द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर किया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित की जानी चाहिए और किसानों को शासन की मंशा के अनुरूप सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश किए किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल तो ये खबरें थी आज के समाचार पत्रों में खास खास। और अब ऐसे दैनिक कार्यक्रम प्रणाम योद्धा से अपने इस दोस्त विवेक सोनी को दीजिए इजाजत।

0: न्यूज वन एआईआर ऐप और 101.9 एफएम पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत।
1: हेलो
2: हेलो सुनो टेलीफोन नंबर
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090।
5: नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
8: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
7: हरी आई सेंटर जनाना हॉस्पिटल रोड रिकाबगंज फैजाबाद।
8: फोन नंबर 91-61-877-347।
9: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
10: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
9: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक, तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या धारा रोड बेगमगंज गढ़ैया अयोध्या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।

व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत में आपका इस दोस्त विवेक सोनी इस्तकबाल करता है, स्वागत करता है। कार्यक्रम में सबसे पहली फरमाइश है फिल्म आरजू की, इस गीत को सुनवाने की, जिसको अपनी आवाज़ दी है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों ने। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और उसे सुरबद्ध किया अनु मलिक ने। ये फरमाइश हम तक पहुंची है ग्राम टोरोवाल, जिला नवाशहर, पंजाब के श्रोताओं की तरफ से। आप सभी हैं गगनदीप चांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत चांदी, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी चांदी। आपकी फरमाइश पर फिल्म आरजू का ये प्यारा सा नगमा हम भेज रहे हैं आप तक।

फिल्म आरजू का ये गीत आप सुन रहे थे कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अब जिस गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है उसको अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और शबीर कुमार।

कुमार ने, गीत लिखा SH बिहारी ने और सुरबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म है प्यार झुकता नहीं। ये गीत हम आपको सुनवाएं उससे पहले फरमाइशकर्ता का नाम रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू भाई। तो लीजिए आप सबकी फरमाइश पर फिल्म प्यार झुकता नहीं का ये प्यारा सा गीत जा रहा है आप तक।

0: कानूनी सहायता टेलीलॉके ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत चल रहा है आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। अगली फरमाइश हम तक पहुंची है बोरखेड़ा पित्रायल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश के श्रोताओं की तरफ से। आप हैं विनोद मूड़त, नेहा जैन, दियंक मयंक मूड़त और चेतन नाटा के साथ इनके परिवारीजन और मित्र। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म मोहब्बतें का ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में। गीत लिखा आनंद बख्शी ने और उसे सुरों से भी सजाया है आनंद बख्शी ने ही। तो लीजिए आपकी फरमाइश पर फिल्म मोहब्बतें का ये प्यारा सा नगमा पहुंच गया

और अब कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत की अंतिम फरमाइश रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया की, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं सदानंद यादव, ग्राम कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आपकी फरमाइश हम तक पहुंची है लता मंगेशकर की आवाज़ में, आनंद बख्शी का लिखा यह गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से सजा संगीत, फिल्म है दो रास्ते, गीत पहुंच रहा है आप तक।

फिल्म दो रास्ते का ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसी गीत के साथ व्हाट्सएप आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का इस कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत से अपने इस दोस्त विवेक सोनी को दीजिए इजाज़त।

0: न्यूज वन या रैप और 101.9 FM पर आप हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। कार्यक्रम की हम शुरुआत करें आपके फोन कॉल से, हम रिसीव करें उससे पहले बता दें कि हमारा फोन नंबर खुला है और फोन नंबर हमारा आप जानते ही हैं 73 76 80 40 90। कार्यक्रम की शुरुआत हो उससे पहले कुछ एक संदेश।
1: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
0: जी हाँ, कार्यक्रम सजीव फोन इन हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस फोन कॉल को रिसीव करने से। जी हाँ, हेलो, प्लीज अपना नाम बताएं।
2: हेलो,
0: हाँ नाम बताइए सर अपना।
2: हाँ सर, जितेंद्र प्रजापति बोल रहे हैं
0: जी।
2: जितेंद्र प्रजापति,
0: जितेंद्र प्रजापति जी कहाँ से बोल रहे हैं
2: जी? जी मैं बछड़ा सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा, हमारी रिक्वेस्ट है कि अपना रेडियो सेट या तो थोड़ा सा कम कर लीजिए और या आप फोन लेकर के वहाँ से हट जाइए रेडियो के पास से, क्योंकि आपकी आवाज में इको आ रहा है। गाना कौन सा सुनेंगे सर?
2: जी गाना सुना दीजिए हमको।
0: क्या हुआ?
2: एक मिनट तक ये बता रहे
0: हम। एक मिनट क्या, हम रुके हुए हैं, बिल्कुल आपके लिए ही प्रोग्राम चल रहा है। तो
2: मैं तुलसी तेरे आंगन की सुना दीजिए।
0: मैं तुलसी तेरे आंगन की, क्या करते हैं जितेंद्र भाई?

0: जी हरिश्चंद प्रजापति जी, हम बात करेंगे आपसे।
1: हाँ जी बिल्कुल, बात कराइए। हाँ हाँ बात कराइए।
2: नमस्ते सर।
1: हाँ नमस्ते जी, कैसे हैं आप?
2: ठीक हूँ, मेरा नाम हरिश्चंद प्रजापति है
1: जी,
2: सुल्तानपुर जिला अयोध्या में है।
1: हाँ हाँ हाँ बहुत अच्छी बात,
2: काम करते हैं
1: जी जी जी।
2: हाँ मूर्ति का बनता है मेरे यहाँ।
1: हाँ हाँ
2: तो काफी दिन से कॉल करते थे, मतलब जब मिला आज अचानक मिल गया आपका नंबर, और बहुत अच्छा।
1: हाँ जी, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। और आप मिट्टी का काम करते हैं तो और भी अच्छी बात है, मिट्टी को ही आप नए नए रंग रूप में कलेवर में ढाल देते हैं, है ना? बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए आपसे बात करना बहुत ही सुखद आश्चर्य है और शुभ संकेत है कि हम लोग एक साथ घुल मिल करके

0: और शुभ संकेत है कि हम लोग एक साथ घुल मिल करके सारी चीजों को करते कराते हैं।
1: कम से कम 40-45 साल से मैं घर एक दूसरे नहा हूँ।
0: हाँ हाँ जी जी और कॉल आपकी आज मिली है। बहुत बड़ी बात है। चलिए आपने बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की का ये प्यारा सा गीत जा रहा है आप तक। एंजॉय कीजिए।

0: जी हाँ, कार्यक्रम सरयू फोन इन। हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं। हेलो, प्लीज़ अपना नाम बताएं।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम बताइए अपना। हेलो
1: हेलो,
0: जी, अपना नाम बताइए, आवाज़ आपकी आ रही हम तक।
1: हमारा नाम जो है, हम निकालने जिला जैसे से बोल रहे हैं।
0: जी, अपना नाम नहीं बताया आपने।
1: रूपा
0: रूपा जी। जी,
1: जी,
0: मुमताज नगर अयोध्या से आपने कॉल किया है। क्या करती हैं रूपा जी?
1: हम घर पे रहते हैं, सिलाई वाले किए हैं,
0: अच्छा
1: कपड़ा
0: अच्छा
1: सिलते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, कपड़ा सिलती हैं। और गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी, नदिया पार फिल्म
0: नदिया के पार फिल्म का। परिवार में और कौन कौन है रूपा जी?
1: जी, हमारी माँ है, भाई है, बहन है।
0: अच्छा, चलिए। तो भाई लोग क्या करते हैं? भाई क्या करते हैं आपके?
1: भाई मतलब यही काम करते हैं।
0: अच्छा, माता जी घर पे ही रहती हैं?
1: माता जी, हाँ माता जी, हाँ सब।
0: गर्मी देखिए बहुत ज़्यादा पड़ने शुरू हो गई है।
1: हाँ
0: तो थोड़ा सा बाहर निकलते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको, है ना? और भाई से भी बताइए कि बाहर निकलें तो कुछ पानी ज़रूर पी के चलें, और अगर हो सके तो फिर अपने पास एक बोतल रखें, बोतल में नमक और चीनी का घोल मिला कर के, या अगर ORS आप ले सकती हैं तो ORS का घोल ज़रूर रखें, और समय समय पर अपने शरीर में पानी की जो कमी को

पूरा करते रहें, पानी पीते रहेंगे तो धीरे धीरे पानी की कमी पूरी हो जाएगी। ज्यादा धूप में न टहलें, हमारी रिक्वेस्ट है ना। ठीक है, तो आपने बातचीत किया, बहुत बहुत शुक्रिया। जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में फिल्म नदिया के पार का ये प्यारा सा गीत पहुंच गया आप तक।

0: पसंद
1: और साथ में अपना नाम, पता
0: और वो गीत जो आप सुनना चाहते हैं।
1: फेसबुक पेज पर कार्यक्रम कुछ तुमने कहा के कमेंट बॉक्स में जाइए, टाइप कीजिए अपनी पसंद का गीत, अपने विचार।
2: तो प्रोग्राम कुछ तुमने कहा सोमवार से शुक्रवार तक सुनिए दिन में 1 बजे से 2 बजे तक, और शनिवार रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच।
3: हो गया इंतजाम।
4: किसका?
3: गुड्डी की फीस का।
4: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले, और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधि लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम।
8: सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। हमारे साथ एक और कॉलर। हाँ जी हेलो अयोध्या, सजीव फोन इन कार्यक्रम में आपका बहुत
9: नमस्कार सर।
8: नमस्कार जी, अपना नाम बताइए प्लीज।
9: गीता राम बोरके डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र। कैसे सर आप?
8: हम बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
9: मैं आज सुरक्षित है सर।
8: अच्छा, वहाँ हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत तगड़े से पड़ रही है, आपके यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है?
9: तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो पूरे बहुत गर्मी से 35-40 आंकड़ा पार ऊपर चला गया सर।
8: अच्छा अच्छा, नहीं हमने जो सुना था कि मुंबई में महाराष्ट्र में जो चूंकि समुद्र है तो थोड़ा सा मौसम खुशगवार रहता है, तो ऐसा गर्मी वहाँ भी बहुत तगड़े से पड़ रही है।
9: जी सर।
8: अच्छा चलिए, प्रोग्राम में गाना कौन सा सुनना चाहते हैं कुछ बताएं?
9: मुझे आपके अविद्ध प्रोग्राम में गाना सुनना, गंगा जमुना सरस्वती सागर मेरा उस पार है, ये गाना सुनना
8: है। जी हम ये प्यारा सा गीत आपको जरूर सुनवाएंगे, पहले अपने बारे में कुछ बताइए, आप क्या करते हैं सर?
9: हम तो करते हैं के साथ साथ आपने प्रोग्राम सुनते जानकारी मिलती सर।
8: जी बिल्कुल ठीक बात है, हमारी आकाशवाणी का उद्देश्य सूचना शिक्षा और मनोरंजन, ठीक है ना? तो हम सूचना भी देते हैं, एजुकेट भी करते हैं, मतलब और उसके बाद में मनोरंजन तो करते ही करते हैं, गाने आपको सुनवाते हैं। देखिए प्रोग्राम में आपका कॉल लगा हुआ है और गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में, गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का साजन मेरा उस पार है, प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप कॉल करने के लिए, गाना सुनिए, एंजॉय कीजिए।

0: सजीव फोनिंग कार्यक्रम हेलो अयोध्या, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। एक और कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार जी, कार्यक्रम हेलो अयोध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए सर।
1: सर मेरा नाम तोहिद अली है, जिला बस्ती तहसील हरैया सरैया तिवारी से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, कैसे हैं
1: सर? बहुत अच्छे
0: हैं। क्या करते हैं?
1: सर इस समय मैं बकरी चराता हूँ।
0: क्या बात है, मतलब आप पशुओं की सेवा बहुत अच्छी करते हैं। हमको ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहते हैं प्रोग्राम में?
1: सर आज हमें गाना सुनवा दीजिए सड़क फिल्म का।
0: सड़क फिल्म का कौन सा गाना सुनवा दें भाई?
1: हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।
0: ऐसा ही हाल हम लोगों का भी है कि आपके बिना हम लोग रह नहीं पाते। आपकी स्वीट सी आवाज सुनाई दे गई, बस देखिए प्रोग्राम में है ना, हमने आपको शामिल कर लिया और गाना भी आपको सुनवाने जा रहे हैं, ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। और कौन कौन है आपके साथ इस समय जो गाना सुनना चाहता?
1: हमारे चाची है, हम हैं।
0: अच्छा, सारे लोग वहीं पर हैं?
1: हाँ, बाकी हमारी बकरियां
0: सब हैं। तो आपकी बकरियां भी एंजॉय कर रही हैं आकाशवाणी के प्रोग्राम, बहुत अच्छी बात है भाई, ये तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ना? चलिए बहुत बढ़िया है। और आप?
1: और सर आप सब कैसे हैं?
0: हाँ हम भी ठीक हैं, बढ़िया हैं। आपसे बातचीत करने में और आनंद आ रहा है ना? तो ये प्यारा सा गीत हम आपको, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में जा रहा है आपके रेडियो सेट तक। एंजॉय कीजिए इस प्यारे से नगमे को। धन्यवाद।
1: ठीक है, नमस्कार।

0: फिल्म सड़क के इसी प्यारे से नगमे के साथ ही सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या से अपने इस दोस्त विवेक सोनी को आप दीजिए इजाजत।
1: हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते।
2: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 एफएम बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: संग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जय दास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
1: जी।
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
1: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी।
1: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
1: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी।
1: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती हैं और आसमान साफ होता है।

0: सकता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
1: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
0: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
1: जी,
0: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
1: तो बिमलेश जी, आपसे ही शुरुआत करें।
0: जी अजीत जी, श्रोताओं, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
1: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
0: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओं कि खाली पेट घर से न निकलें।
1: जी,
0: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
1: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
0: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओं जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते?
1: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
0: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
1: जी,
0: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
0: जी,
1: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
0: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
1: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है गर्मी।
0: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी
5: तुम्हारी बारी, तुम सुना, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौवा लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ पे चलो, पानी
4: चलो,
5: होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है?
5: दीदी,
6: कौन है?
5: दीदी।
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना।

0: पी लिया पानी? प्यास बुझी?
1: हाँ,
2: पर ठंडा पानी था।
1: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
0: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो मैं कौन हूँ?
2: कौन है आप?
0: नहीं समझे?
2: नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: जलते हैं
1: और सारा दिन पानी भी पीते हैं।
0: ऐसा मौसम
1: अब गर्मी
2: अम्मा है।
3: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
1: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
3: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी
1: हाँ, जब होली आती है तो गर्मी भी तो लगनी शुरू हो जाती है।
3: हाँ
2: अम्मा, मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
3: भाई मेरे मौसम में गर्मी ही तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
1: हाँ चलो अम्मा, चलते हैं।
2: चलो।
4: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गई। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
1: अरे ये क्या गिरा?
3: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
4: वहाँ दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
1: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
3: मेरे ही मौसम का एक फल है।
1: दिखाओ ना।
3: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
1: इसका नाम
3: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
1: स्वाद है,
2: पसंद है,
1: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल
3: नहीं समझी?
1: नहीं।
3: अच्छा तो फिर सुनो,

0: ice cream, little ice cream, kulfi wala barfka gola, little chuski, little ice cream.
1: बच्चो, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना? कुल्फी भी खाते हो ना? अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
2: अरे कोई खाने को दे तब ना।
1: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
3: लाओ अम्मा,
2: लाओ अम्मा,
1: लो।
2: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
1: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
5: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
6: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
7: विजय श्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
6: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया, और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
8: Right behind you was the sound of Bofors guns directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
9: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
7: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो है। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम।

0: मई महीने में इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
1: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की दो सर्दियां देख ली हैं।
0: जरा उधर देखो।
1: अब किधर?
0: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
1: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है।
0: हाँ।
1: लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूं मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
0: हाँ हाँ, पहनावे से तो कोई कबायली लगता है।
1: हाँ।
0: लेकिन इधर क्यों आ रहा है?
1: हाँ।
0: कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
1: हाँ, आने दो आने दो।
2: ए, कौन हो तुम? रुको रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
3: कौन हो तुम?
4: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
3: क्या सूचना?
4: साहब साहब, दुश्मनों के बारे में।
3: अच्छा, यहीं रुको, चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
4: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
5: हाँ, नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
4: सर हम एक चरवाया हैं।
5: आगे बताओ।
4: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
5: क्या देखा तुमने?
4: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पे जमा हैं।
5: क्या?
4: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ।
5: कितने लोग रहे होंगे?
4: साहब पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
5: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
4: साहब मेरा गांव है घरकोन, ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
6: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
7: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
6: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
7: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
6: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
7: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद

0: कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
1: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यंभावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
0: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
2: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
3: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
2: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
4: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
2: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
3: जी, यस सर।
2: ये मेज के चारों ओर।
3: जी सर। उधर से।
2: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
3: जी सर।
2: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
3: जी सर।
2: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
3: जी सर।
2: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
3: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। इस तरफ से सर, यहां से पहाड़ की दाहिनी ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
2: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
5: यस सर।
2: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे, तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
3: जी जी सर।
2: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
3: सर, सर, सर, सर।
2: कोई शक?
3: नो सर।
2: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
5: यस सर।

0: चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
1: धीमे बोलो धीमे।
0: जी
1: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
2: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे
0: जी,
2: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
2: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर।
2: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
2: ठीक है आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे
0: धीरे
2: धीरे
0: से बाहर आ रहे हैं।

0: में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT से आज की कड़ी। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है, 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को।
6: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम सेल्यूलॉइड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में मेहमान सितारे हैं जाने माने फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है कांचन प्रकाश संगीत ने।
7: और नीचे छोटी छोटी दुकानें थी और वहां गाने बज रहे थे, आपके बरस भेज बंदिनी का गाना जो आज भी मुझे याद है।
3: अच्छा, इसे सुनेंगे हम अभी?
7: जी
3: जरूर सुनेंगे।

और इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय

0: फिर मुझे कहा कि आप ही इस रोल के लिए फिट हैं, बराबर हैं। आप ये स्क्रिप्ट, उस वक्त वो परदेशी थे, उनका ही वो स्क्रिप्ट था। अभी मुझे उस नाटक का नाम याद नहीं आ रहा है। हाँ, मैंने, मुझे याद आया, सत्यम शिवम सुंदरम
1: जी।
0: और मैं स्क्रिप्ट लेकर घर आया, गावाया, याद करने लगा, प्रोफेसर के डायलॉग याद करने लगा। एक महीने के बाद मुहूर्त पे मैं वापस गया तो दावेकर जी मुझे देखकर कहने लगे, आइए आइए बैठिए। लेकिन इस वक्त वो मेरे से बात करने से झिझक रहे थे। लेकिन प्रोड्यूसर ने कहा कि देखो भाई, हमने आपको वो रोल तो दिया था, लेकिन अभी भी एक सीनियर प्रोफेसर कमलाकर सोनटक के, जो औरंगाबाद से, वो जो है उनकी एक्टिंग की स्कूल है, वहां से इस्तीफा देकर आए हैं और वो अब ये रोल करेंगे। अब ये तीसरी बात जब मेरे साथ हादसा हुआ तो मैंने कहा देखो भाई, उसके पहले घर में मेरी हमेशा पिताजी से झगड़े चलते थे, बोलते थे ये नाटक नाटक छोड़ दे, ये अपना लाइफ नहीं है। और मैं कहता था नहीं, मुझे नाटक ही करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ।
1: तो आप करते भी नहीं थे उस समय कुछ
0: और? नहीं कर सकता था। एक दिन मुझे एहसास हुआ कि नाटक के अलावा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इस बार जब फाइनली मुझे पिताजी ने बुलाया, तो पिताजी को मैं मिलने गया, तो पिताजी ने कहा अगर तेरे जीवन में यही ट्रेजेडी लिखी है तो जाओ करो। और मैं आया था, बैग भरकर आया था, रिहर्सल करने आया था, दोबारा मैं नहीं जाना चाहता था। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? बोले क्या करे, उनका नाम बड़ा है, ये है वो है, उनको लेते हैं। मैंने कहा नहीं, इसमें कोई और रोल हो तो मुझे दे दो। और मैं उसमें एक डबल रोल करता था, एक गुंडे का रोल करता था एक, और एक लड़के का रोल करता था। वो दो रोल मैंने, और इस तरह मेरी व्यावसायिक नाटक में पहली बार एंट्री हुई
1: जी।
0: उसके बाद मैंने केंकरी जी के साथ काम किया, और मेरे हाथ में एक नाटक था, मेरे दोस्त ने लिखा हुआ यात्रिक, वो यात्रिक नाटक मैं छबिलदास में करना चाहता था
1: जी।
0: और इसी वजह से मेरी INT इंडियन नेशनल थिएटर में पहचान हुई, और उनकी तरफ से मैंने पहली बार डायरेक्शन की यात्रिक की
1: जी।
0: उसके बाद मैंने छिन्न नाटक किया जिसमें स्मिता पाटिल ने काम किया था, आशा लता ने काम किया था, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया। तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए, हैंडसम नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी, और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य
1: जी।
0: और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है, और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंडसम नाटक देखने आए, और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था, और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, 3 दिन का काम है, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी,
1: अर्ध सत्य का रामा शेट्टी।
0: और मैं नर्वस हो गया, मैंने कहा क्या यार, इतनी बढ़िया एक्टिंग मैंने की इंस्पेक्टर की, और ये कौन से शेट्टी भिट्टी का रोल दे रहे, 2.5-3 सीन का है, हमें पसंद नहीं यार। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे, लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था
1: जी।
0: और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था। मैंने कहा चलो एक एक्सपीरियंस होगा। 2-2.5 दिन काम किया, उसको भूल गया, मेरा नाटक चलता था,
1: भूल भी गया
0: क्योंकि बाद में 6 महीने में मैं भूल गया कि मैंने किसी फिल्म में काम भी किया।
1: क्योंकि आपके अर्ध सत्य के रामा शेट्टी को लोग आज भी याद करते हैं
0: जी, जी।
1: और मैं तो कहूँ कि एक विलन के लिए एक नया चेहरा आपने उस समय दिया, और कुछ विलन की तरफ देखने का लोगों का नजरिया भी उसी भूमिका से बदल गया, और आप

0: जी जी जी मैं सचमुच मैं भूल गया क्योंकि मैं इतना नाटक में व्यस्त था कि मुझे मालूम भी नहीं था और उसके बाद मैं नाटक खत्म हुआ है मैं कुछ काम के लिए गांव गया और उस वक्त मुझे वहां पे फोन आया कि आपका पिक्चर का प्रीमियर है आप आइए आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने पिताजी को कहा कि मेरे प्रीमियर शो है मैंने एक फिल्म में काम किया है तो उन्होंने मेरी तरफ देखा अच्छा अभी फिल्म भी करने लगे वहां भी नाचने लगे कमर हिलाने लगे। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बहुत अच्छी फिल्म है अच्छा रोल है। नहीं नहीं बोले अभी इधर ही रहो उधर जाने की जरूरत नहीं अभी कोई आपकी आपका मतलब नाटक बिटक नहीं है। मैं वहीं रह गया
1: प्रीमियर में नहीं गया
0: प्रीमियर में नहीं जा सका। बात ये हुई कि बड़ा अफसोस लगता था और उदासी छाई हुई थी और उस वक्त मैंने फिर गुरुदत्त की एक फिल्म देखी कागज के फूल और उसमें का वो जो गाना है वो मुझे आज भी बहुत याद आता है।

0: वाकई रामा शेट्टी को लोग नहीं भूल पाए हैं आज भी, और उसके बाद जो है आपकी कई फिल्में आई, जैसे आखिरी रास्ता में जो आपने पॉलिटिशियन चतुर्वेदी का रोल किया, वो भी मुझे वो पूरा सीन ऐसा देख के लगता था कि अभी जाके इस आदमी का गला घूम दूं, ये जयाप्रदा कुछ नहीं कर पा रही है, हम जाके कुछ इसका कर डाले। और मैं समझती हूँ कि यही आपका सक्सेस है, यही एक बहुत बड़ा।
1: उस फिल्म में बहुत मजा हुई थी कि अमिताभ बच्चन जी उसमें थे, जयप्रदा थी, श्रीदेवी थी, और उसके डायरेक्टर थे के भाग्य राजा, जो वहाँ के बहुत बड़े डायरेक्टर और एक्टर भी थे, हीरो भी है।

0: और उनको ना हिंदी आती थी ना इंग्लिश आती थी, तो कैसे मतलब उनसे बातचीत कैसे करें। अमित जी को तो बहुत ही प्रॉब्लम होती थी उस वक्त, और वो जब भी जो भी करना समझाना चाहते थे वो थ्रू एक्टिंग ही समझा सकते थे। तो उनके बाजू में एक हिंदी और तेलुगु जानने वाला आदमी था, मतलब तमिल जानने वाला, और वो उनको बताते थे, फिर ये हिंदी में हमें बताता था और बीच में वो फिर एक्टिंग करते थे। तो वो जो सीन है जो उनके ऊपर मैं रेप के बारे में बात करता हूँ, वो सीन जब मैंने किया तो उन्होंने मुझे एक्टिंग करके बताया कि मुझे इस तरह चाहिए, और मैं वो एक एक्टिंग की लैंग्वेज भी होती है ना, तो वो मैं समझ गया
1: जी।
0: और फिर उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे
1: जी।
0: तो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस था और फिल्म लोगों को बहुत पसंद आई, अच्छा हुआ
1: जी।
0: काफी वैरायटी फिल्में कर रहा हूँ।
1: ये जो विलन बनना और एक साथ कॉमेडियन भी बन जाना, ये आप कैसा कर पाते हैं? कहीं पे मैं हमेशा ये पूछती हूँ कि जैसे आपके प्रोड्यूसर्स या निर्माता जो आपके पास अपना रोल वो भेजते थे, तो वो विलन का रोल रहता था, वो उसमें बदलाव नहीं आया, तो लगातार वही काम करते करते करते करते जब कॉमेडियन का रोल करने को मिल गया, तो उस चीज से निकल के, उस शय से निकल के इस शय में अपने आप को ढालना, वो आपने कैसे कर लिया?
0: नहीं, मैं एक्टर हूँ और जो भी रोल मेरे सामने आता है उसे लगन और निष्ठा से निभाना मेरा काम है, इसलिए तो मेरे हर कैरेक्टर को गालियां मिलती है लेकिन हमें तालियां मिलती है।
1: तो उम्र एक अलग चीज है जो व्यक्ति की होती है, और फिल्म की जो अदा है, जो भूमिका है, जो रोल है, उसकी एक अलग उम्र होती है। मतलब हर उम्र में कलाकार को अपने आप को ढाल लेना पड़ता है। तो कुछ उसके बारे में बताइए ना कि बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा था कि आप तो बहुत बूढ़े थे और आप तो हो जवान बिल्कुल, ऐसी कोई किसी भूमिका के बारे में जिसमें आपको लगता है कि बिल्कुल अलग मैं कुछ ये कर रहा हूँ?
0: हाँ, वैसी एक भूमिका मैंने सड़क में की थी
1: जी,
0: महारानी की, युनक की। वो भूमिका जब मेरे पास आई, उसके निर्देशक थे महेश भट्ट, और बड़े मुझे रोल तो दिया उन्होंने, लेकिन घबराए हुए थे कि इस तरह का युनक का विलन का रोल लोगों को अच्छा लगना,
1: महारानी
0: का रोल बहुत जरूरी है, और अच्छे लगने के साथ साथ उसकी एक दहशत पैदा करना, क्योंकि आज तक फिल्मों में जितने भी युनक के रोल हुए हैं वो कॉमेडी के लिए इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये रोल लोगों के दिल में दहशत पैदा करे ऐसा होना चाहिए
1: जी।
0: और उसके लिए उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था, और रोल सुनकर मैंने कहा मैं ये करता हूँ। बोले आपको जरा भी हिचक नहीं हुई हाँ कहने में? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप ये कर पाएंगे? मैंने कहा जरूर करूंगा। कैसे करेंगे? मैंने कहा वो आप मुझ पर छोड़िए, इसके लिए क्या करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, वो भी मुझ पर छोड़िए। और मुझे सोचने में जरा थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि बहुत साल पहले मैंने एक प्ले किया था, उसमें किंचित गंधर्व का रोल था, वो मैंने किया था कॉलेज में, इसलिए उसके एक्टिंग की मुझे चिंता नहीं थी। मुझे चिंता थी कि इस कैरेक्टर की दहशत कैसे मैं पैदा करूं
1: जी।
0: और जब हमने पहला सीन जिस दिन किया, उस दिन भट्ट साहब बहुत खुश हुए और उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि ये लड़का अच्छा काम करेगा, और उसी का फल मिला मुझे। उस रोल की काफी तारीफ हुई, पिक्चर भी बहुत चली और उसमें काफी अवार्ड्स भी मुझे मिले
1: जी जी।
0: तो ये करते वक्त मुझे बड़ा मजा आया। एक उसमें सीन हम करते थे तो मैंने कहा एक सीन इसका साड़ी में होना बहुत जरूरी है कि वो साड़ी पहनकर बात करता है। तो बोले जरूर करेंगे, आप बोलो कैसे करना है। वो छोड़ देते थे और ये उनका छोड़ना बड़ा अच्छा था,
1: मुझे ऐसा लगता है कि
0: प्रोत्साहित करना था।
1: हाँ, कलाकार के साथ साथ जो आपने निर्देशन का इतना सारा काम किया
0: जी,
1: वो ही आपका इसमें
0: जी
1: हुनर।
0: हाँ, तो उस वक्त मैंने किया, और बाद में लोगों ने पूछा मुझे कि आपने ये रोल करते वक्त क्या स्टडी किया, कहाँ किसको देखा, क्या देखा क्या नहीं देखा। तब मुझे याद आया कि मैंने वो प्ले किया था, वो एक्टिंग मेरे पास थी, और एक जमाने में मैं जब गया था मेरे दोस्त के साथ किसी काम के लिए, तो

0: एक फोटो लगी हुई थी साड़ी में किसी औरत की, और उन्होंने कहा नहीं ये औरत नहीं ये मर्द है। लेकिन कभी कभी वो साड़ी पहनकर ऐसे बैठते हैं और उनको शौक है साड़ी पहनकर फोटो निकालने की। तो वो मैंने फोटो देखी थी, वो मेरे दिमाग में थी। वो जो यादगार है, वो यादगारें हमें काम आती है
1: जी।
0: वो बहुत बढ़िया होती है
1: जी।
0: जब आदमी एक्टिंग करता है तो यादें सामने आ जाती है कि भाई देखो ये है ये है ये है
1: जी।
0: वही तो हमारी मतलब जिसको हम कहेंगे कि जीवन का अनुभव जिसको लोग कहते हैं, मैं तो यादगारें कहता हूँ, वही बहुत संपन्न करती है हमें और वही हमसे एक्टिंग करवाती है
1: जी।
0: ऐसे कुछ डायलॉग थे उसमें, डर मत मेरी जान डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, जानती हूं क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूं और आधी औरत। देख ना ये किस्मत का खेल तो देख, कुछ नहीं मेरे पास है ना, तो वो सिर्फ दिमाग। हाँ कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए औरतों का धंधा करती हूं और मर्दों की सेवा। इस जिस्म के बाजार का महाराजा और नाम महारानी।
1: वाह वाह वाह। लेकिन इसके अलावा आप और क्या क्या, मतलब आपकी हॉबीज क्या हैं? आप क्या करना और पसंद करते हैं, या खाली समय में और क्या करते हैं?
0: खाली समय में मैं किताबें पढ़ता हूँ, फोटोग्राफी करता हूँ, दोस्तों से बातचीत करता हूँ, पुराने शिल्प मुझे बहुत पसंद है। मैं मंदिर में जाता हूँ किसी पुराने, तो जरूर वो मंदिर देखना चाहता हूँ और उसी लिए मंदिर जाता हूँ। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन नेशनल ज्योग्राफी और डिस्कवरी देखता हूँ, कभी कभी बीबीसी भी सुनता हूँ। और आप यकीन नहीं करोगी, मैं ऑल इंडिया रेडियो सुनना बहुत पसंद करता हूँ।
1: वाह वाह वाह। ये तो बहुत ही उम्दा बात कही है आपने। आपने कभी लिखा है जो आप ये कह रहे हैं कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, उनको अपनी भूमिकाओं में ढाल लेता हूँ, तो क्या आपके मन का कभी ये रुझान नहीं हुआ कि कुछ लिखें भी?
0: नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन एक हादसा जरूर हुआ था कि अपने मराठी थिएटर के बहुत बड़े राइटर विवा शिरवाड़कर, जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, आज वो नहीं है, मैं और डॉक्टर लागू एक दो बार डॉक्टर लागू के संग में उनके पास गया था और बातें हो रही थी और सोशल वर्क कमिटमेंट की बातें हो रही थी। तो मैंने कहा ये बातें करने से क्या होगा, अगर करना है तो चलो जीवन के कुछ साल निकालो दे दो उनको, काम करते हैं। तो शिरवाड़कर जी ने मेरी तरफ कहा, देखा और कहा कि देखो कि समाज सेवा का मतलब ये नहीं कि बाहर निकलो और समाज का काम करो, हर आदमी अपना काम सिंसियरली करे तो भी वो एक समाज सेवा है
1: जी।
0: तुम तुम्हारे माध्यम से लोगों की सेवा कर सकते हो। उस वक्त समझ में नहीं आई बात, कुछ साल बाद एक स्क्रिप्ट मिला फिल्म का, वो हेलन केलर के ऊपर था। मैंने वो फिल्म पढ़ी और मैं बड़ा खुश हुआ कि एक आंधी गूंगी बहरी लड़की को कैसे सिखाया 100 साल पहले। तो मैं वो स्क्रिप्ट लेकर गया शिरवाड़कर जी के पास और कहा कि इसके ऊपर मुझे नाटक लिख के दो, मैं ये नाटक करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं इंग्लिश ना फिल्म के ऊपर इस तरह नाटक मैं नहीं लिख सकता, आप किसी और से लिखो। तो मैं गया, फिर वापस बैठा, फिर कुछ सीन तैयार किए, कुछ ढांचा तैयार किया, फिर उनके पास आया। तो उन्होंने कहा ये आपने कुछ किया है लेकिन ये मैं विजुअल नहीं कर सकता हूँ उसको, तो आप ऐसा करो इसके कुछ डायलॉग्स भी लिखो, संवाद लिखो और फिर मेरे पास आओ। फिर मैं गया, फिर कुछ संवाद लिखे, फिर लेकर आया और उनके सामने रखा। हाँ बोले अभी ठीक है तुम ये रख के जाओ। और उसके बाद उन्होंने 10 दिन में उसमें कुछ संवाद लिखे, जहां मैंने संवाद लिखे थे उनको अच्छे लगे थे वो वैसे के वैसे रखे, और इस तरह हम दोनों ने मिलकर एक की मायागार नाम का नाटक लिखा।
1: एक की माया ही हो गई जैसे
0: जी जी।
1: और वो बहुत उसका नाम भी हुआ
0: जी,
1: तो काफी सराहा भी लोगों ने।
0: एक फिल्म है सूरत और सीरत,
1: बहुत पुरानी फिल्म है
0: जी
1: ये।
0: जी बहुत

0: विविध भारती की तरफ दोबारा जरूर आइएगा, आपसे बात करने का एक मौका हमें जरूर दीजिएगा, और सारे श्रोताओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहती हूँ, आगे जाती हूँ, नमस्कार।
1: नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर से कांचन प्रकाश संगीत की बातचीत सुन रहे थे। सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2:00। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम।

0: साजन मिश्रा और साजन मिश्रा की आवाजों में आप सुन रहे थे भक्ति माला से ये भक्ति गीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं रंग तरंग।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी।

प्रवित भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं द बेस्ट ऑफ भूपिंदर। इस एल्बम से भूपिंदर सिंह की आवाज में ये गजल, जिसे लिखा है गुलजार ने और संगीत भूपिंदर का।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और आपको याद दिला दें कि संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला ऐसी लागी लगन। आज सुन सकते हैं उसकी दूसरी कड़ी। कलाकार हैं गायक अनूप जलोटा और इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 6:45 से। वैसे रोजाना ये कार्यक्रम सुबह 6:45 पर भी आप सुन सकते हैं। और इंद्रधनुष के अंतर्गत राग अनुराग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:45 से। और इस वक्त रंग तरंग कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं ये गीत।

द मॉर्निंग सन। इस एल्बम से सुरेश वाडकर की आवाज में आप सुन रहे थे रविंद्र जैन का लिखा और इनका संगीतबद्ध किया ये गीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

महेश्वर का लिखा ये कलाम आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। चंदी रमन रमानी का संगीत था सोजे दिल। इस एल्बम से इस गजल को हमने आपको सुनवाया, ना बाबा ना। ये झलकी आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन संजय श्रीवास्तव का है, निर्देशन गोविंद पारिक का है और नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुन रहे हैं ना हर रोज रात 8:15 से। और इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर।

जयवालिया की आवाज में उन्हीं का लिखा ये गीत आपने सुना, ललित का संगीत और एल्बम आंखों में तेरा ही चेहरा, जिससे हमने ये गीत आपको सुनवाया। कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं लक्की अली की आवाज में। अक्स एल्बम के इस गीत में लक्की अली का ही आवाज है, उन्हीं का संगीत और उन्हीं के बोल।

लकी अली की आवाज में उन्हीं का संगीतबद्ध किया गीत आपने सुना अक्स एल्बम से। इस गीत को लिखा भी उन्होंने ही। और आपको बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम रात 9:30 से आप सुन सकते हैं। आज केंद्रित है पार्श्व गायक बेनी दयाल पर। और कार्यक्रम रंग तरंग में अगला गीत आप सुन सकते हैं या सुनने वाले हैं दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से अल्ताफ राजा की आवाज, अरुण भैरव के बोल, संगीत अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का।

दिल के टुकड़े, माफ कीजिएगा, दिल के टुकड़े हजार हुए। इस एल्बम से आप सुन रहे थे अल्ताफ रजा को, और कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

आहा सुचित्रा। इस एल्बम से आप सुन रहे थे सुचित्रा कृष्णमूर्ति की आवाज में अरुण राज के बोल, बंटी दुग्गल का संगीत इस गीत में आपने सुना। आपको बता दें शाम 4 बजे आज के मेहमान कार्यक्रम में सुनना न भूलिएगा शायर और सेवानिवृत्त केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत, प्रस्तुति जुबैर खान की। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

अपने पराये फिल्म का गीत आप सुन रहे थे केसुदास और साथियों की आवाजें, योगेश के बोल, बप्पी लाहिरी का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब आपको सुनवाते हैं करण सगथिया और श्रेया घोषाल की आवाजें, मीर अली हुसैन और सलीम, मीर अली हुसैन के बोल हैं, सलीम सुलेमान का संगीत। डोर फिल्म से सुनिए ये गीत।

डोर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे करण सगथरिया और श्रेया घोषाल की आवाज से, मीर अली हुसैन के बोल, सलीम सुलेमान का संगीत। इसके साथ ही आज का रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित तमिल कवित्री कड़गम टीवी के सरकार ने विश्वास मत में बहुमत हासिल कर लिया है। 144 विधायकों ने पक्ष में मतदान किया है। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड पांचवीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमसिवियम ने भी समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनके हाल ही यात्राओं के दौरान लागू की गई। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। सरकार ने सोने और अन्य कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है, जो आज से प्रभावी हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सोने और चांदी पर 5% तथा प्लैटिनम पर 5.4% आयात शुल्क लगेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के बीच लोगों से सोने की खरीदारी से बचने की अपील की थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिसो पेरेस मैकेना से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली 2 दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुग्यानो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति दे दी है। सरकार का कहना है कि पंजाब पुलिस, वन रक्षक, अग्निशमन सेवा, जेल, होमगार्ड और अन्य कई विभागों में उनकी सेवाओं को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अडिग संकल्प को प्रदर्शित किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं?

विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज पार्श्व गायक मनहर उदास के जन्मदिन पर उनके ही आवाज से सजे कुछ गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं।

हीरो फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। मनहर उदास के जन्मदिन के मौके पर आज उनकी आवाज से सजे गीत आपको सुनवा रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम में।

0: रामलखन फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मनोहर दास, अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और इस कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पार्श्व गायक मनहर उदास को उनके जन्मदिन के मौके पर। सुन रहे हैं उन्हीं की आवाज में सजे कुछ गीतों को। कार्यक्रम में गीत अब आपको सुनवा रहे हैं खलनायक फिल्म से मनहर उदास के साथ अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मनर उदास, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में खलनायक फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल में आज सुन रहे हैं मनहर उदास की आवाज से सजे गीत। आइए सुनते हैं त्रिदेव फिल्म के इस गीत में मनहर उदास और अलका याग्निक को आनंद बख्शी के बोल हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों को। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
3: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम लोकरंग में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त नेहा। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं ऋतुपूर्णा और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

कार्यक्रम सुन रहे हैं आप लोक रंग, और कार्यक्रम में जो अगला लोकगीत हमने शामिल किया है वो है संगीता मिश्रा, मृदुल चटर्जी और साथियों की आवाज़ में।

कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और अब आप जो अगला लोकगीत सुनने जा रहे हैं उसमें आवाज़ें हैं शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों की।

अभी आपने सुना ये लोकगीत शीतला प्रसाद वर्मा और साथियों की आवाज में। कार्यक्रम चल रहा है लोक रंग, जहां से बरस रहे हैं आपके घर आपके आंगन मीठे मीठे लोकगीत आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। और अब जो अगला लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें प्यारी सी आवाज है विमला कठौरिया की और उनके साथियों की।

अभी आप सुन रहे थे अवधी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा।

0: वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: और भाई साहब क्या हाल है?
4: यार हाल चाल तो हम लेते रहेंगे, लेकिन अभी आपने इस सड़क का हाल बेहाल कर दिया, इस पर थूक कर। और ये क्या, अब आप रैपर भी यहीं फेंक देंगे? बगल में डस्टबिन है।
3: बात तो आपने बिल्कुल सही कही है भाई साहब, आगे से ऐसा नहीं करूंगा।
4: अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की स्वच्छता और सुंदरता बहुत जरूरी है। स्वच्छ भारत के निर्माण और देश की छवि सुधारने का ये सही समय और

0: सुनिए।
1: भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई।

सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।

स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त नेहा। तो ये शुरू करते हैं सिलसिला आपकी कमेंट्स को पढ़ने का, जो कि आपने भेजनी है आकाशवाणी के फेसबुक पेज के पोस्टर पर। पहली कमेंट जो हमारे पास तक आई है वो आई है पांकुर झारखंड से उत्तम कुमार भगत की। मोहम्मद फरमान ने हमें लिख भेजा है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से। और सुरेश जायसवाल की कमेंट आई है जमानिया जिला गाजीपुर से। विष्णु डीलर ने हमें लिख भेजा है दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। और सुदर्शन शाह की कमेंट आई है हमारे पास तक पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से। अरविंद कुमार ने हमें लिख भेजा है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से। और विजय सुरालका की कमेंट हमारे पास तक आई है मोताला जिला अबुल डाला महाराष्ट्र से। मोहम्मद यासीन अंजान ने हमें लिख भेजा है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। और हीरामन शिंदे ने हमें कमेंट भेजी है किशोर नगर अमरावती से। मेरठ कैंट से अगली कमेंट आई है दिग्दर्शन गौड़ की। और संजय ढींगिया ने हमें बागपत उत्तर प्रदेश से कमेंट भेजी है। नाना लामसी ने लिख भेजा है हमें मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से। और फैजल इमाम ने कमेंट भेजी है याद कॉल

रमणी अररिया बिहार से। लाल गिरी गोस्वामी ने हमें कमेंट भेजी है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। और अगली जो कमेंट कार्यक्रम में हमने शामिल की है वो आई है हमारे पास तक नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी। विक्रम मालवीय ने हमें लिख भेजा है रतलाम मध्य प्रदेश से। और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा की अगली कमेंट आई है हमारे पास तक बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। नरेश मल्होत्रा निट्टू ने हमें कमेंट भेजी है ख्याल बाजार पानीपत से। और गजानन येले ने कमेंट भेजी है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से। इन सभी प्यारी प्यारी कमेंट्स के बीच आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अभिमान से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मनहर की। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत है एसडी वर्मन का। तो लीजिए एंजॉय करिए प्यारा सा गीत।

है सतीश अनेजा। राजेश कुमार वर्मा की अगली कमेंट है जो कि राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हमारे पास तक आई है और आफताब अंसारी ने हमें लिख भेजा है शेरवाली स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से। जगमोहन प्रजापति ने हमें कमेंट भेजी है गांव लौटडा जिला बागपत से और पुंजा जी नवांकर ने हमें कमेंट भेजी है नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से। शिव चौहान ने हमें लिख भेजा है बाबा कुटीर रायगढ़ से और नीलू मेघ ने हमें कमेंट भेजी है राजधानी रायपुर से। नारायण लाल साहू की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से और मसरूर हसन ने हमें लिख भेजा है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से। फागुराम यादव की कमेंट आई है संबलपुर कांकेर से और अरुण कुमार मालवीय ने हमें कमेंट भेजी है बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से। उमा सिंह की फरमाइश हमारे पास तक आई उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से और ओम प्रकाश राय ने कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी से हमें लिख भेजा है। दिलशाद हुसैन ने हमें लिख भेजा है मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से और राधेश्याम शर्मा की कमेंट आई है हमारे पास तक गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से। मोहम्मद रफी पवार की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से और रियासत हुसैन सिद्दीकी ने हमें लिख भेजा है जसपुर उत्तराखंड से। सुरेश गगनेजा ने जलालाबाद वेस्ट से हमें कमेंट लिख भेजी है और उत्तरा दिवाकर ने हमें पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से कमेंट भेजी है। सुनील पाठक की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक अनारकली बाजार जगराव से और सोहन लाल साहू ने हमें ग्राम नवा गांव मुरहीपार जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से कमेंट भेजी है। रायपुर छत्तीसगढ़ से हमें लिख भेजा है विनोद वंडलकर ने और प्रवीण श्रीमाली ने हमें कमेंट भेजी है कमर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन मध्य प्रदेश से। रवि कुमार राहुल की कमेंट हमारे पास तक आई है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से और दिलावर खान ने हमें लिख भेजा है रघुवीर नगर से। रजाक मोहम्मद की अगली कमेंट है जो कि हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से हमारे पास तक आई है और उज्जैन बोरखेड़ा से हमें लिख भेजा है विनोद मुनक ने। श्रोताओं आप सभी की इन प्यारी प्यारी कमेंट्स से ही ये कार्यक्रम जो है वो खास बनता है और इन प्यारी प्यारी कमेंट्स के साथ हम शामिल करते हैं कुछ प्यारे मीठे गीत जो कि आप ही की पसंद के होते हैं। तो ऐसा ही एक और प्यारा सा गीत आइए हम आपको सुनाते हैं जिसे हमने लिया है फिल्म गीत से। प्यारी सी आवाजें हैं महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और मधुर सा संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए एंजॉय करिए ये प्यारा सा गीत।

0: कार्यक्रम चल रहा है।
1: कुछ तुमने कहा और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त नेहा। और कार्यक्रम में जो अगली कमेंट हमारे पास आई है वो आई है चंडीगढ़ सिटी से। भेजने वाले हमारे श्रोता

0: तुम। कार्यक्रम चल रहा है आपका पसंदीदा कुछ तुमने कहा और कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल पर कहीं मजा आएगा। वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसान वाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।

0: हाँ, यही तो है हम सबका आकाशवाणी अयोध्या, जहाँ हर शब्द में है अपनापन, हर कार्यक्रम में है अपने संस्कृति की छाप।
1: लोक संस्कृति के गीत, नई पीढ़ी की बात, किसान महिला और बच्चों की वो सारी जरूरी बातें, खबरें और जानकारियाँ जो है आपके लिए जरूरी।
0: तो जुड़िए हर दिन हर पल आपके अपने आकाशवाणी अयोध्या से, क्योंकि यही है हमारी आवाज़, हमारी पहचान।
1: आकाशवाणी अयोध्या।

0: संध्या, अपना रेडियो अपनी धड़कन FM 101.9 या फिर न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप्लीकेशन पर।
1: मन का रेडियो बजने दे जरा।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम कुछ तुमने कहा में, और आपके साथ आपकी दोस्त है नेहा, और है ढेर सारी आपकी वो प्यारी प्यारी कमेंट्स जो आपने भेजी है फेसबुक पेज पर आकाशवाणी के, और उन्हें हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो अगली जो कमेंट है हमारे पास वो है कस्बा उगैठी से लिखने वाले हमारे श्रोता हैं धीरज गुप्ता। कमल शावनी ने हमें नागपुर महाराष्ट्र से कमेंट लिख भेजी है। जगदीश धाकड़ की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है ग्राम हिंदी से, और राजकुमार पटेल ने हमें लिख भेजा है मछाछा से। तुलसीदास चुग मस्कीन ने हमें चक पंचकुला चंडीगढ़ से कमेंट भेजी है, और शुभचंद्र बजाज ने हमें लिख भेजा है कालका से। शंकरलाल जायसवाल की कमेंट आई है जिला नांदेड़ गेताला महाराष्ट्र से, और सुभाष गोदारा ने हमें लिख भेजा है फाजिल का पंजाब से। सैयद यूनुस की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है मराठवाड़ा से, और मोहम्मद कलीम अंसारी ने गंज डुंडवारा से हमें कमेंट भेजी है। चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम शाहू ने हमें लिख भेजा है, और रामचंद मखीजा ने हमें कमेंट भेजी है छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है पुरानी भिलाई से, और बालकृष्ण ने हमें नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से कमेंट भेजी है। बबलेश पवार की अगली कमेंट है जो कि हमारे पास तक आई है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, और मोहम्मद फारूक शेख ने हमें लिख भेजा है गणेशपुर गंजडवारा एटा उत्तर प्रदेश से। लालपुर रुड़की कैंट से राजेश वर्मा की कमेंट आई है, और विनोद बरासा ने हमें खोखरा वाली श्रीगंगानगर से कमेंट भेजी है। लाल बाबू दीवाना ने जेल रोड दिल्ली से हमें कमेंट लिख भेजी है, और बाबू भाई ने हमें जवाहर नगर उदयपुर से फरमाइश भेजी है। हमसे जुड़ने वाले अगले जो श्रोता हैं उन्होंने हमें मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से कमेंट भेजी है, और आपका नाम है इरशाद अहमद, और नंद किशोर घटे हैं अगले श्रोता बीड शहर महाराष्ट्र से आपने हमें कमेंट भेजी है। अगली जो फरमाइश है वो है धर्मेंद्र छीपा की, और आपने हमें जो कमेंट है वो भोपालगढ़ राजस्थान से लिख भेजी है, और लक्ष्मण सिंह राजपूत ने हमें लिख भेजा है छुरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। मोहम्मद सईद अब्बासी ने हमें ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंडी बुलंदशहर से कमेंट भेजी है, और पटेल नगर मौलौत से रमेश कुमार ने हमें कमेंट भेजी है। और ये जो दूर दूर से हमारे पास तक कमेंट आई हैं, आपकी जो कमेंट की खुशबू है, आपकी जो बातें हैं वो वाकई बहुत ही अच्छी हैं और इस प्रोग्राम को ख़ास बनाती हैं, और इन्हीं प्यारी प्यारी कमेंट्स के बीच लीजिए एक और प्यारा सा गीत हमने कार्यक्रम में शामिल किया है जिसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। प्यारी सी आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो लीजिए ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर आप सभी के लिए।
3: जो चिलमन है

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, जो कि आधारित है आपके फेसबुक कमेंट्स पर, और उन कमेंट्स को पढ़ने के लिए मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नेहा। तो अगला जो कमेंट हमने कार्यक्रम में शामिल की है वो आई है हमारे पास तक बेरनी मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं हुकुम करमरकर। ईश्वर मेहर ने हमें लिख भेजा है, गांव भटनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से। और सुरेश चौरसिया की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक फरुखाबाद यूपी से। सोहन जोशी ने हमें लिख भेजा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। और जीवन विश्वकर्मा ने हमें चाईबासा झारखंड से कमेंट भेजी है। राजेंद्र नारंग की अगली कमेंट है जो कि भटिंडा रोड मंडी डबवाली से हमारे पास तक आई है। और अगली जो फरमाइश है वो गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से आई है रमेश कंबोज की। अशोक राठौड़ ने हमें लिख भेजा है छत्रपति संभाजी नगर छावनी से। और आर कुमार की वडिंगखेड़ा पंजाब से हमारे पास तक फरमाइश आई है। के आर साहू की कमेंट है देवरी भाटी पारा से। और आर सी कामड़े ने हमें लिख भेजा है जवाहर नगर दुर्ग से। ज्ञान भूषण शर्मा ने हमें कमेंट भेजी है रावर करनाल से। और दिनेश वर्मा ने हमें लिख भेजा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। बब्बल मल्होत्रा की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक मोहाली पंजाब से। और अंकुश अरोड़ा ने हमें खुर्जा उत्तर प्रदेश से लिख भेजा है। बालकरण वर्मा ने हमें कमेंट भेजी है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। और मोहम्मद यासी

ने नई बस्ती गंज डंडवारा से हमें लिख भेजा है। गांव फरासी जिला हिसार से हमें अगली कमेंट आई है। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं राज कुमार डोंडी और जख्मी कलीम ने हमें लिख भेजा है रेलवे रोड गंज डंडवारा से। राष्ट्रपाल गजभाई ने हमें डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से लिख भेजा है और शंभु दयाल ने हमें कमेंट भेजी है गांव जाखोद से। देवेंद्र कुमार गुप्ता ने हमें कस्बा उघेती बदायूं से लिख भेजा है और सोमदत्त नभा ने हमें जिला पटियाला पंजाब से कमेंट भेजी है। शमशुल कुमार राही ने हमें कमेंट भेजी है गंज जुडवारा से और मीका विर्क ने हमें लिख भेजा है गांधी चौक रोपर पंजाब से। बिल्लू चिंदालिया ने हमें लिख भेजा है लोहारू हरियाणा से और जो अगली फरमाइश हमने कार्यक्रम में शामिल की है वो आई है हमारे पास तक ग्राम लसुगिया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं गोविंद वैष्णव और इन कमेंट्स के बीच एक और प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म दयावान से। आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की। गीत को लिखा है अजीज कैसी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। लीजिए ये प्यारा सा गीत आप सभी कर के रेडियो सेट पर आप सभी के लिए।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से, और आपके साथ आपकी दोस्त है नेहा। कार्यक्रम में अगली जो कमेंट आई है हमारे पास वो ग्राम गुलबालोद तहसील आलोट से कुंवर कृपाल सिंह ने हमें भेजी है। शेख मूसा ने हमें लिख भेजा है सनावत से, और फहीम मंसूरी की कमेंट आई है बांदा यूपी से। मुकेश कश्यप ने जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हमें कमेंट लिख भेजी है, और तेलंगाना से हमें कमेंट आई है एसके अलबख्श की। दीपेश वर्मा ने हमें लिख भेजा है ग्राम पीपल रोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, और ताज अंसारी की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। हरजिंदर छींदा ने गांव नथाना पंजाब से हमें लिख भेजा है, और हल्क जयपाल यादव ने हमें ग्राम लोहेड़ी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कमेंट भेजी है। माधव नामदेव ने जबलपुर मध्य प्रदेश से हमें लिख भेजा है, और श्री कृष्णा भाटी ने हमें धांडी नांदुरा महाराष्ट्र से कमेंट भेजी है। रणधीर गुप्ता की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक ओखाला संगम विहार दिल्ली से, और अशोक सिंह ने धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हमें लिख भेजा है। मुजफ्फरपुर बिहार से राजकुमार की कमेंट आई है, और बी कमल ने हमें लिख भेजा है मजनू कटीला से। प्रवीण सोनी की कमेंट गुजरात गांधीग्राम से हमारे पास तक आई है। चंदौसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से हमें मुकेश गौतम ने लिख भेजा है, और राहुल मनवर ने हमें कमेंट भेजी है साहूनगर यवतमाल से। विनय मोहन ने हमें सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा से कमेंट भेजी है, और संदीप कुमार ने हमें लिख भेजा है चौक गोरैया जालंधर से। राजू मिगलांडी की अगली कमेंट है जो कि दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमारे पास तक आई है, और बोधराज खोरवाल ने उत्तम नगर दिल्ली से हमें लिख भेजा है। रुपेश संघई की हमें कमेंट आई है परभणी महाराष्ट्र से, और रिजवान खान ने हमें लिख भेजा है अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से। ये जो दूर दराज बैठे श्रोता हमें सुनते हैं, हमें अपनी कमेंट्स भेजते हैं और हमारे कार्यक्रम में शामिल होते हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रमों को इतना प्यार देते हैं। और आप सबके लिए ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म हीर रांझा से, आवाज़ है लता मंगेशकर की। तो लीजिए आप सभी के लिए ये प्यारा सा गीत आपके रेडियो सेट पर।

0: और साथियों कार्यक्रम में अभी है बहुत सारी कमेंट्स और कुछ और प्यारे गीत, पर रुकते हैं छोटे से अंतराल के लिए, कहीं मच जाएगा, वापस आते हैं बस कुछ ही पलों में।
1: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
2: नहीं अछूता हो जिस
1: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात,
3: हीट स्ट्रोक, लू यानी तेज गर्मी जानलेवा हो सकती है। घर से निकलते समय सिर ढककर रखें, इसके लिए कपड़े, हैट या छतरी का प्रयोग कर सकते हैं।
4: हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी अवश्य पिए।
3: ORS घर में बने पेय पदार्थों जैसे लस्सी, चावल का माड़, नींबू पानी, छाछ का सेवन कर तरोताजा रहें।
4: स्थानीय मौसम संबंधी जानकारी के लिए रेडियो सुने, टीवी देखें और समाचार पत्र जरूर पढ़ें।
3: पशु पक्षियों को भी छाया में रखें और उन्हें पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी दें।
4: छोटे बच्चों और पालतू जानवरों को कार या अन्य वाहन में अकेले छोड़कर ना जाएं। वाहन जल्दी गर्म होकर खतरनाक तापमान पैदा कर सकता है।
3: दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच तेज धूप में जाने से बचें। गर्मी के मौसम में जंक फूड का सेवन न करें, ताजे फल, सलाद तथा घर का बना खाना ही खाएं।
5: अपने वाहन को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर इधर उधर पार्क ना करें, कृपया सुरक्षित पार्किंग स्थल पर ही गाड़ी को पार्क करें।
6: ट्रैफिक रेड लाइट का उल्लंघन कभी ना करें, आपकी जरा सी लापरवाही के कारण दुर्घटना घट सकती है। दाएं या बाएं मुड़ने से पहले अपने वाहन में लगे इंडिकेटर का इस्तेमाल करें।
5: अपने वाहन में ओवरलोडिंग से बचें और अपने वाहन से हमेशा अच्छी माइलेज पाने के लिए समय समय पर वाहन की मेंटेनेंस करवाते रहें।
6: गलत तरीके से ओवरटेक ना करें और अपनी लेन में ही गाड़ी चलाएं, बार बार हॉर्न का प्रयोग ना करें।
5: दो पहिया गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, ये आपकी सुरक्षा और आपके हित में भी है।
6: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपकी ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुमने कहा, और आपके साथ है आपकी दोस्त नेहा, और है ढेर सारी कमेंट्स आपकी दोस्त के हाथों में। तो अब अगली कमेंट जो हमारे पास आई है वो आई है गांधीनगर गुजरात से, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं सुरेश राठौड़। पुखराज बड़गुजर ने हमें ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से कमेंट भेजी है, और अनिल वर्मा की कमेंट आई है हमारे पास तक सदर बाजार कुरावली से। पीरजादा मिराजुद्दीन ने हमें लिख भेजा है कश्मीर से, और अनवेर अंसारी ने अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हमें कमेंट भेजी है। विनायक बेंडे ने हमें लिख भेजा है आकोट से, और हीरा मणि वर्मा ने दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से कमेंट भेजी है। रश्मि पांड्या की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक राजकोट गुजरात से, और ब्रिजेंद्र के जयजान ने हमें भूला कॉलोनी घरोंडा जिला करनाल हरियाणा से कमेंट भेजी है। वलीउल अंसारी की अगली कमेंट है जो कि पुराना तालाब डुमराव से हमारे पास तक आई है, और दीपक साकिया ने हमें लिख भेजा है अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से। मोहम्मद इंतजार ने भोजपुर सहारनपुर से हमें कमेंट भेजी है, और बिट्टू भाटिया की कमेंट आई है सब्जी मंडी झज्जर से। चंद्रकांत साहू ने हमें लिख भेजा है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, और धीरज भाई ने हमें लिख भेजा है गुजरात पाटन से। अगली कमेंट है गगनदीप थांडी की जो कि आई है हमारे पास तक टुरवाल नवा शहर पंजाब से, और बनवारी जयपाल ने हमें लिख भेजा है राजस्थान से। तुलसी मस्कीन ने गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमें कमेंट भेजी है, और राम कुमार रेवार ने हमें लिख भेजा है शादुल शहर राजस्थान से। दत्तर सिंह की कमेंट आई है गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, और सुखविंदर सिंह जौड़ा ने कृष्णा पार्क दिल्ली से हमें कमेंट भेजी है। रमेश चौहान ने हमें लिख भेजा है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से, और पटवाजी ने के कमेंट हमारे पास तक आई है धरदे ईद सरगांव छत्तीसगढ़ से। अनोखे लाल ने हमें कटरा चांदखां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से कमेंट भेजी है, और रविंद्र दास की कमेंट आई है किशनगंज बिहार से। और कार्यक्रम में ये अगला जो गीत हमने शामिल किया है वो है अभिजीत की आवाज में, फिल्म है बेवफा।

और कार्यक्रम में जो अगली कमेंट आई है वो आई है कस्बा क्लोडिया नवाबगंज जिला बरेली उत्तर प्रदेश से राजेंद्र गंगवार की। अब्दुल सत्तार अब्बासी ने मुगलपुरा बागपत से हमें कमेंट भेजी है और नंद कुमार ठाकुर की कमेंट हमारे पास तक आई है बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। प्रेम सिंह ने हमें लिख भेजा है राजस्थान से और दर्पण कुमार सैनी की कमेंट हमारे पास तक आई है चोरा मिलक रामपुर से। अशोक वर्मा की कमेंट आई है हमारे पास तक जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से और टीबी मल्होत्रा ने सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें कमेंट भेजी है। जनकपुरी सहारनपुर से हमें लिख भेजा है जॉन डिक्रिस्टो ने और सीताराम कागरा ने हमें लिख भेजा है एकता कॉलोनी रोहतक से। राघव बघेल की अगली कमेंट है जो कि आई है हमारे पास तक दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से। सुरेंद्र खुराना ने हमें न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से कमेंट भेजी है। चंद्रकांत साहू की अगली कमेंट है जो कि धमतरी छत्तीसगढ़ से हमारे पास तक आई है। जमशेदपुर से हमें लिख भेजा है चिन्मय मेहतो ने। एसके अलबख्श ने हमें तेलंगाना निजामाबाद से कमेंट भेजी है। तुलसी मस्किन की कमेंट आई है गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से। एम हफीज ने हमें लिख भेजा है पंजाब पाकिस्तान से और बंडू पोपघट ने हमें निवासा खुपटी महाराष्ट्र से कमेंट भेजी है। ज्ञानभूषण शर्मा की कमेंट आई है हमारे पास तक रावर करनाल से और मुकेश कश्यप ने हमें ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से कमेंट भेजी है। सदानंद मंदूरकर ने हमें लिख भेजा है डाबकी रोड अकोला से और अशोक वर्मा की कमेंट आई है हमारे पास तक जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। मोहम्मद हफीज ने हमें लिख भेजा है जिला भकर पंजाब पाकिस्तान से और इन सभी प्यारी सी कमेंट्स के बीच एक और प्यारा सा गीत शान की आवाज में फिल्म फना से।

0: अभी आप सुन रहे थे आपके फेसबुक कमेंट्स पर आधारित कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: मुझे ना लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने।
3: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा?
2: नहीं, मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए। मुझे वो दुकान भी मालूम है, उसने जहाँ से खरीदा था।
3: अच्छा, वेरी स्मार्ट।
4: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
4: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से,
1: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
3: ayodhyaakashvani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
0: कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को नेहा तिवारी का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में जगजीत सिंह की आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज।
1: कैंसर, हृदय, डायलिसिस, हड्डी और ईएनटी का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त।
0: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा।
1: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायबरेली रोड, अयोध्या। कॉल करें 9044-20-70-70।
2: कार्यक्रम का अगला गीत अदनान सामी की स्वर में एल्बम तेरी कसम से।

कार्यक्रम चल रहा है गीतांजलि, और गीतांजलि में जो अगला गीत हम सुनने जा रहे हैं वो है कैलाश खेर की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है एल्बम कैलाशा से। तो लीजिए, एंजॉय करिए ये प्यारा सा गीत।

कैलाश खेर की गाए इसी प्यारे से गीत के साथ कार्यक्रम गीतांजलि यही संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। दोपहर के 2:15 होने को है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। सीबीएसई ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने और चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत साबित कर विश्वास मत हासिल कर लिया है। एडप्पाडी पलनीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। एक रिपोर्ट।
1: लोक निवास में आयोजित एक सादे समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और आज शपथ लेने वाले दो मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले मुख्य सचिव शरद चौहान ने केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को पढ़कर सुनाया जिसमें मुख्यमंत्री और दो मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। समारोह के बाद श्री रंगासामी पुदुचेरी विधानसभा भवन स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय गए और अपना कार्यभार संभाला। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पुदुचेरी को सिंगापुर की तर्ज पर विकसित करने की दिशा में काम करेगी। श्री रंगासामी के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार प्रदेश में एनडीए की सरकार बनी है। अन्य मंत्रियों, विभागों और विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सरकारी सचेतक की नियुक्ति को लेकर एनडीए में विचार विमर्श जारी है। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगा

0: सामी ने आज रिकॉर्ड पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित एक समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। इसके बाद मंत्रिमंडल के 5 अन्य सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। वहीं नौदा सीट से विजयी आम जनता उन्नयन पार्टी के विधायक हुमायूं कबीर ने भी शपथ ली। कबीर ने रजीनगर सीट से भी जीत हासिल की है। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस राय ने सभी विधायकों को शपथ दिलाई। राज्य में फालता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को पुनर्मतदान होना है। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज कर दिए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से की गई 7 अपीलों के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने भी मंत्रियों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने को कहा है। एक रिपोर्ट।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, अन्य अधिकारियों के वाहन बेड़े में 50% की कमी का आदेश दिया है और सरकारी काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने, अनावश्यक सोने की खरीद से बचने और घर से काम करने को बढ़ावा देने की अपील भी की। राज्य सरकार ने मेट्रो सेवाओं और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग पर बल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अगले आदेश तक अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर दी है। श्री यादव ने मंत्री परिषद के सदस्यों से राष्ट्रीय हित में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मंत्री, विधायक, अधिकारी और सरकारी विभाग सरकारी वाहनों का उपयोग सीमित करेंगे, कारपूलिंग अपनाएंगे और मेट्रो तथा बस सेवाओं को प्राथमिकता देंगे। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में पेट्रोल और डीजल की बचत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने जनता से वाहनों का अनावश्यक उपयोग न करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय लिया है और मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को वाहनों के उपयोग में संयम बरतने के निर्देश दिए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट, डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकीय विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। भारत कल से शुरू होने वाली 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। विदेश मंत्री ने आज सुबह चिली के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैककेना से मुलाकात की। एक रिपोर्ट।
3: श्री फ्रांसिस्को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की कल से शुरू होने वाली दो दिवसीय बैठक में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडल प्रमुख भाग लेंगे। श्री फ्रांसिस्को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान

0: करेंगे। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने बाजारों और स्रोतों में विविधता लाने, प्राथमिकता वाली वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सेवा अर्थव्यवस्था को सुगम बनाने के लिए द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के लेख को साझा किया है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में आधुनिक रेलवे स्टेशन और बेहतर रेलवे नेटवर्क से प्रगति के नए द्वार खुल रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परिवर्तन क्षेत्र के लोगों के लिए अनेक अवसर लेकर आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये लेख दर्शाता है कि पंजाब में किस प्रकार बदलाव आ रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में 16वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ किया। देश भर के पेंशन भोगियों ने इसमें हाइब्रिड मोड के माध्यम से भाग लिया। इन अदालतों का उद्देश्य पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर भी निर्णायक समाधान प्रदान करना है, जिसमें पेंशन भोगियों को अदालतों का सहारा लेने की आवश्यकता न पड़े, उनका समय और धन दोनों की बचत हो और उन्हें एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्राप्त हो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने वांछित भगोड़े प्रदीप सिंह को अजरबैजान से सफलतापूर्वक भारत प्रत्यर्पित करा लिया है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के समन्वय से यह कार्य किया। सीबीआई ने बताया कि नई दिल्ली के विशेष प्रकोष्ठ पुलिस स्टेशन में मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज एक मामले में प्रभदीत वांछित था। इस मामले में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए और कई सह आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम ने केवल नीति निर्माण के बजाय अंतर्राज्यीय समन्वय, सुगम सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के सुदृढ़ कार्यान्वयन जैसे प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। वे प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, सरकार और निजी क्षेत्र की साझा जिम्मेदारी विषय पर आयोजित आयोग की बैठक को संबोधित कर रहे थे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित वाइब्रेंट ग्राम प्रोग्राम 2026 के लिए माई भारत प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रीय स्तर की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया है। मंत्रालय ने बताया कि इस महीने की 20 तारीख तक आयोजित होने वाली ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में देश भर के युवा भाग ले सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सोने और चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के दौरान सोने और चांदी की कीमतों में 8% तक की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% बढ़ाकर 15% कर दिया है। घरेलू शेयर बाजार के आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की वृद्धि देखने को मिली। सेंसेक्स 403 अंक बढ़कर 74,962 जबकि निफ्टी 146 अंक की वृद्धि के साथ 23,526 पर था। भारत में इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मॉनसून आ जाएगा। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून आमतौर पर हर साल 1 जून के आसपास केरल में शुरू होता है। विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पंजाब में भी आज बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1998 में आज के दिन भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षणों का स्मरण किया। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा

0: कि इन परमाणु परीक्षणों ने देश के अधिक संकल्प को प्रदर्शित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्री फखरुद्दीन अली अहमद देश के पांचवें राष्ट्रपति थे। उन्होंने 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पदभार संभाला। आईपीएल क्रिकेट में आज रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने कल रात सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हराकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। उधर बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में 21-9 21-12 से सिर्फ 33 मिनट में हरा दिया। छठी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का क्वार्टर फाइनल में मुकाबला डेनमार्क के अमाली शुल से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन किदांबी श्रीकांत ने सिंगापुर के लो केन यू को आसानी से 21-14 21-15 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीनी ताइपे की सू ली योंग से होगा। हालांकि भारत के आयुष शेट्टी जापान के कोदाई नाराउका से हारने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में कोरिया की सेंगमिन ली को 5-0 से हराकर लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंच गए हैं। अन्य चार मुक्केबाजों को कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु में सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवी के सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। श्री एन रंगासामी ने रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए। CBSE ने अखिल भारतीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। सरकार द्वारा आयात शुल्क को लगभग 15% किए जाने के बाद सोने या चांदी की कीमतों में 6% से अधिक की वृद्धि। मौसम विभाग ने कहा इस साल मॉनसून जल्दी आने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित दोपहर समाचार। आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम अंगना।

0: हरियाई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
1: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
0: हरियाई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
1: फोन नंबर 91-61-877-347।
0: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हमसफर, आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर, जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
0: यह है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं,
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
0: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

कार्यक्रम मंगनामा हाजिर है आज आपके सखी में तो आप सभी का हमार प्यार भरा नमस्कार। देखो भाई हमार मन ये देख के तो बहुत खुश हो जाता है कि हमार सखी सहेली समय से अपन रेडियो चलाए के नहीं हमें बैठ जाती और कार्यक्रम का सुनत हीन कुनत हीन। और देखो भाई आज बुधवार है तो हमार बहुत सखी सहेली भैया बहनी फरमाइश भी करे हैं। फरमाइश तो हम शामिल कर मुलाओ से पहले बात करे थे अपन सभी के जिम्मेवारी के। देखो भाई जैसे हम सभी अपन घर के जिम्मेवारी निभाए थे वैसे ही हम सबका अपन देश के प्रति भी कुछ जिम्मेवारी होते जेका हमरे सभी का निभावे के चाहिए। हमार देश तभी आगे बढ़ी तरक्की करी जब हम अपन अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी समझब, कानून के पालन करब, घर ही न घर से बाहर भी साफ सफाई रखब, पूरा ध्यान रखब, ये हमार कर्तव्य होते। बिजली पानी बचाओ, मतदान करब, पर्यावरण बचाओ, सरकारी संपत्ति के जो है रक्षा करब, ऐसा ना हो कि बाहर हम गए तो कोनो सरकारी संपत्ति जो है ओके हम नुकसान करे थे, ये सब ना करे के चाहिए। यही सब देश प्रेम के सच्ची पहचान है और एक जिम्मेदार नागरिक के भी। तो भाई हमें अपन जिम्मेदारी निभावे के चाहिए और यही लिए आज हम ये संकल्प ले थे कि जैसे अपन घर की जिम्मेवारी संभाली थे वैसे ही अपन देश खातिर भी सजग और जिम्मेवार नागरिक हम बनवे। तो भाई चलो अपन जिम्मेवारी निभाओ थे हम आगे बढ़े थे और ले थे पहले लोकगीत के फरमाइश जो उनकी आई है सैया मिले लड़कैया गीत के ताए। छत्तीसगढ़ डोगर गांव से राष्ट्रपाल गजबीये, राधिका बेबी अनिष्का तनवे गजबीये, पद्मा टाकीज नेपानगर से सुदर्शन साह, पल्लवी प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विनी मंगलाबेन, राजेंद्र जी लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, राघव उत्तम, रुक्मणी साहिल, भारती भगेल, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से, दुर्गा राम, अजय कुमार, कुमारी इंद्राणी, माया, जयकिशन, योगेश, वासु, हेमा, राधिका, मुताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रत्नामाला, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी, उदिशा गोस्वामी, पुराना तालाब डुमराव से, वलीउल्ला अंसारी, ग्राम समाहा कलापुर, दर्शनगर अयोध्या से, गायत्री, मीना, अनु और निहारिका, जेल रोड दिल्ली से, लाल बाबू दीवाना, उमा राज, दिव्या भारती, सफीदो सिटी हरियाणा से, नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लाडो, लबली, रजत, लौकुस और समस्त खन्ना परिवार, मारहरा दरवाजा एटा से, नबी हसन अब्बासी, सहनाज अब्बासी, नवीद हसन, अनम, यशप, सुहेल हसन, मुजफ्फरपुर बिहार से, राजू, बिट्टू, अर्चना, कल्पना, लदावली जिला मुरादाबाद से, अजित कसाना, माया देवी, आदिति, उसामा जिला बदायूं से, सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, ग्राम पंचारी पोस्ट महाराजपुर देवरी सागर से, परमलाल दशरथ, मनोज, पूना, आरती, दीपेश, जागृति, मानवी, हर्षिता, विश्वकर्मा परिवार। तो चलो भाई सुना जाए ई गीत का।

तो चलो सखी अगली फरमाइश लेते हैं। बनना है अलबेला लोकगीत की तय जो उनकी आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी भाटपारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल गांव लिंगलखेड़ा, फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण, मुनीस, राहुल, विष्णु मिस्किन, रितिका, बानी, चंद्रकला, गणेश, काशीनाथ, संगीता, रोही, प्रियांशी सोनी, दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर से, आर्यनगर कोहका बिहाली से, उत्तम सिंह, मोरस जंगेल, अनिल, अजीत, आयुष, नंदिनी, बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार, वैशाली, अनिल प्राजक्ता, वैष्णवी, गायत्री, यगेश, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओवराय, गुदनूपुर, जगदीशपुर से जिला बस्ती से जया रावत, अजिता रावत, आशीष, अभय, अकुल रावत और उनके मम्मी पापा, यही के साथ डॉक्टर बनवारी जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोच, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम, ये लिखा थे कि अंगना कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया लगता है, महिलाओं का विशेष कार्यक्रम है जिससे बहुत से रंग बिरंगी लहरों की तरह आपके प्रोग्राम हम दिल से सुनते हैं। लिखा थे कि एमन कार्यक्रम में बहुत बढ़िया खजाना होता है जो हमें सही दिशा की ओर ले जाते हैं। आपके द्वारा दी गई जो जानकारी हमारे जीवन का बहुत कुछ सिखावत है। हम साफ परिवार दोपहरी में आराम से सुनी थे, हमें इंतजार रहा थे जैसे कोई नवेली दुल्हन को ससुराल जाने का चाव होता है, उसी प्रकार आपका आकाशवाणी अयोध्या भी है और अयोध्या आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा हुए पे सबका ये बधाई देते। तो भाई आकाशवाणी परिवार की तरफ से भी आप सभी का आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरा हुए पे बहुत बहुत बधाई है। यही के साथ भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो है इतना बढ़िया तरीके से आप अपन संदेश हमारे लोग का भेजे हैं। तो अंगना कार्यक्रम और आकाशवाणी अयोध्या की बारी से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई चलो इन्हों के फरमाइश है ये गीत सुने के, तो चलो सुना जाए।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: सुनत हुई सखी, सुनत हो कार्यक्रम अंगनामा हो वाला है का खास?
5: अरे हाँ हाँ सखी, बिल्कुल सुनत है। अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
4: हाँ, जहाँ ज्यादा से ज्यादा सखी जुड़ सकत हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ, कही सकत हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
5: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991-11 पे जाके ANGA टाइप करें और अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
6: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
4: देखो सखी, अगली फरमाइश आई है नेहा के धारा रोड से। ये लिखा थी, कार्यक्रम लोक सुरमाला बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति है दीदी लोगों की, सारी जानकारी बेहद लाभप्रद होती है, मीठे मीठे लोकगीत सुनकर अच्छा लगता है। और ये के साथ हरदोई रोड लखनऊ से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना, नवाजिस, दानिश, अमन, कोनो भी गीत में अपन नाम शामिल करे कर लिखा थे। तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह, बेगम राबिया शेख, रहीम मुन्ना, दानिश, आसिफ, ये भी कोनो भी गीत में अपन नाम शामिल करेंगे कहा थे। मीनू शुक्ला लिखा थी कि आपके प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बन्नी के कोमल कोमल गीत सुनावे के फरमाइश करा थी। कुटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, ओसा राय भी कोनो गीत में अपन नाम शामिल करेगा कहा थे। अर्चना द्विवेदी बहनी लिखा थी।

चलो सुखी, आज बात करी थे बेल के गुड़ के बारे में। जाने तो सकी बेल गर्मी के अमृत फल होते, ये पेट की समस्या की ताए रामबाण के काम करत है। कब्ज दस्त होए चाहे पेचिस होए, ये में राहत देते है और शरीर का लू से भी बचाव थे और ठंडक भी पहुंचावत है। एक प्रयोग पका बेल के गुदा के रूप में किन जाते है, एक चाहे शरबत बनावे जूस के रूप में बनावे एक प्रयोग करें, ये सब अपन शरीर के ताए बहुत ही अच्छा होते है। और यही के साथ ही लई थे आज के अगली फरमाइश जो उनकी है, मैया मोरी कर दे नौकरिया संग बिहारे। फरमाइश करत है रणजीत सिंह गोरखपुर से, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी राहुल विनीत सोनम वर्मा। और एक साथ ही राम कुमार रेवाड़ सादुल शहर राजस्थान से, तुलसी मस्किन गोवर्धन बिहारी दिल्ली से, सत्यन चंदसौलिया आदर्श सार्थक अलौकिक जालौन से, फागू राम यादव ज्योति ओजस्वी संबलपुर काकेर से, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, अनिल मोहन उषा मोहन टिल्लू कैथल हरियाणा से, मधु नायक निशा सलमानी नौसाद बेबी आलिया आयान बाबू धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से, बाबा कुटीर रामगढ़ से, शिव कुमार चौहान संक्रांति रितेश राजेश्वरी उत्कर्ष चौहान। तो चलो सुना जाए ये गीत का।

की अगली फरमाइश है, हम तो चली नहरवा की ताए हैं। फरमाइश करते हैं कोरबा छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी, माला, कमल, ईश्वर सिंह, मानू, शानू, बब्बन, मुन्नू, काना और हरप्रिया ठाकुर, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम, दुर्गेश्वरी, इताला महाराष्ट्र से, और जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदय पानपाल, जय हिंद दीक्षा, प्रतीक्षा, बिमलेश, दिव्यांश बघेल और परिवार, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष, मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से फरमान, सलमान, इरफान, इशरा, नरगिस, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से नाना जिलाम से मिनी, तेजस, जय, हर्षिता, मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, सीमा, काजल, मानवी, तन्वी, लच्छे, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा। तो चलो भाई, इनके सबके फरमाइश करी थे, पूरी करी थे गीत के माध्यम से।

0: तो सखी सहेली आज के लोक सुरमाला कार्यक्रम यहीं तक। जोन भी श्रोता हमारी कार्यक्रम में शामिल हैं बहन उनका सभी का अंगना कार्यक्रम और आकाशवाणी अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले कार्यक्रम में फिर निक निक गीत कौनी और जानकारी के साथ मिला जाए। तब तक के लिए मितु का दे अनुमति नमस्कार।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम अंगना, आकाशवाणी का ये अयोध्या केंद्र है 101.9 FM बैंड पर। आइए सुनते हैं केंद्रीकृत विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों को।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी सप्रेम नमस्कार, क्या हालचाल?
1: बस सोनाली बिल्कुल हालचाल एकदम ठीक है। और तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और मुझे लगता है सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ मस्त और खुश होंगे और सब इंतजार भी करें कि आज सोनाली और मंजरी बहुत दिनों बाद मिले हैं सखी सहेली मंच पर और ये इतनी सारी बातें लेकर के आई है तो देखते हैं ये लोग क्या क्या करते हैं है ना। तो इशारे तो समझ ही रहे हैं ना कि सब लोग भी आज कुछ खाने पीने की बात भी होगी, बताया भी जाएगा,
0: मजेदार चटपटी चाट का जिक्र होने वाला है।
1: दो आरजे के साथ में दो धुरंधर कुक भी बैठे हुए हैं है ना। कोई किसमें महारत हासिल रखता है, कोई किसमें महारत हासिल रखता है ना सोनाली।
0: बिल्कुल।
1: आज तुम कुछ कहने वाली थी ना कि मतलब गाने सुनाने से पहले कुछ तुम्हारा था
0: मुझे ना, ये गानों की आवाज तो बाद में आएगी पर ये आपकी जो छन छन छन छन चूड़ी की जो आवाज आ रही है ना वो बार बार आपके हाथों की तरफ आकर्षित कर रही है कि क्या है इतनी सुंदर चूड़ियां हाथ में पहनी हुई है।
1: एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपनी मुझे दे दो, मैं तुम्हें अपनी दे देती हूं है ना।
0: ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम विषय बता
1: देते हैं। देखो व्यंजन की बात आज करने वाले तो उसमें भेलपुरी और दाबेली है ना, जिसमें तुम भेलपुरी मेरे लिए बना के नहीं लाई, बोले दाबेली बाद में खिला दूंगी।
0: ये जो ऐसे आइटम होते हैं ना भेलपुरी और दाबेली, ये ऐसे बनाए और तुरंत खाए, बना के लेकर नहीं आ सकते ना इसको।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने। और शब्द हमारे विचार आपके में हम बात करेंगे आज आत्मविश्वास के ऊपर।
0: जी, जो सबसे जरूरी है हर क्षेत्र में, यानी अगर जिसके पास आत्मविश्वास होगा वो अपनी जो है ना बेहतरीन पेशकश दे सकता
1: और
0: है।
1: इस शब्द पर तो हमारे साथी लिखकर संदेश भेजेंगे और उन्हीं को तो हम पढ़ने वाले हैं ना।
0: और साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम पश्मीना साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय पर बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है। और साथ ही
1: खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं,
0: ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि भाई मंजरी जी आप खाने के लिए जीते हैं सिर्फ जीने के लिए खाते हैं?
1: नहीं भाई, तो मैं तो भाई जीने के लिए खाती हूँ, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं ना कि वो सब एक जैसा ही हो जाता है ना।
0: भाई मंजरी जी मैं तो खाने के लिए जीती हूँ है ना, कि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है, इतने अच्छे अच्छे आइटम से इतने सुंदर से
1: आप मेंटेन है ना,
0: ये वही तो बात है,
1: इसलिए हमें संतुलन रखना है,
0: पौष्टिक खाना खाना है और उसमें अपने स्वाद का भी ध्यान रखना है, वही तो जीवन, उसी में तो जीवन का सही में आनंद है।
1: बिल्कुल आनंद है,
0: संतुलन जरूरी है,
1: संतुलन बहुत जरूरी है। और गीतों का भी तो आनंद है ना, तो क्यों ना पहले गीत सुनाते हैं फिर बातें करते हैं।
0: जी तो सुनते हैं गीत।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: तो सोनाली हम लोग बात करने वाले हैं पश्मीना साड़ी के बारे में है ना।
2: तो कश्मीर चले।
1: बिल्कुल चलते हैं। तो कश्मीरी साड़ियाँ जिन्हें पश्मीना साड़ियाँ भी कहा जाता है कश्मीरी ऊनी कपड़े की एक उत्कृष्ट किस्म है जो चार अलग अलग प्रकार की पहाड़ी पशुओं से प्राप्त ऊन से बनाई जाती है। पेशमनी शब्द फारसी शब्द पश्मीनेह से लिया गया है जिसका फारसी में अर्थ ऊन होता है। पश्मीना कपड़ा आमतौर पर कश्मीर में उत्पादित होता है।
2: और ये कपड़ा बेहद आरामदायक और मुलायम होता है। असली पश्मीना कपड़ा इतना नरम और मुलायम होता है कि आसानी से अंगूठी के आर पार जा सकता है। और कश्मीरी साड़ी आमतौर पर

0: सर्दियों के मौसम में पहनी जाती है क्योंकि ये कपड़ा गर्म और हल्का होता है, जिससे इसे पहनना और ले जाना बहुत आरामदायक होता है।
1: और पश्मीना ऊन और महीन रेशम के मिश्रण से पश्मीना रेशम बनता है। असली पश्मीना साड़ियों में कश्मीरी कढ़ाई की बारीकी कारीगरी होती है, जिसे कशीदा कहा जाता है। कश्मीर में साड़ियां बनाने के लिए कई तरह के कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें सबसे आम है पश्मीना साड़ियां। कश्मीरी रेशम की साड़ियां, क्रेप साड़ियां और जॉर्जेट साड़ियां, यानी कितनी खूबसूरत साड़ियां, जैसे तुमने कहा ना कि अंगूठी से आर पार हो जाती है, तो सोचो कितनी मुलायम होती होंगी,
0: कितनी पतली होती होंगी ना। और कश्मीरी साड़ियों की उत्पत्ति लगभग 200 वर्ष पूर्व की है और आज भी पश्मीना शॉल फैशनेबल जीवन जीने वाले किसी भी व्यक्ति के वार्डरोब में सबसे पसंदीदा वस्तुओं में से एक होती है। और कश्मीरी साड़ियां कश्मीर की धरती पर हाथ से बुनी जाने वाली एक प्रामाणिक शैली की साड़ियां हैं और कश्मीरी साड़ी में हमेशा इसकी विशिष्ट कढ़ाई होती है। सटीक रूप से कहें तो हर कश्मीरी साड़ी मूल रूप से कढ़ाई वाली साड़ी होती है और कश्मीरी साड़ियां खूबसूरत और अनूठी कढ़ाई से सजी होती है, जो कश्मीर की पारंपरिक शैली जैसे की आरी वर्क और टिल्ला कढ़ाई। कश्मीरी साड़ियों में अधिकतर फूलों के डिजाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल, और कश्मीरी साड़ियां अधिकतर हल्के से लेकर गहरे रंग तक कई रंगों में उपलब्ध होती है। इनमें से कुछ सबसे अधिक उपयोग की जाने वाले रंग सफेद, बेज, काला, पीला और नीला है। कश्मीरी या पश्मीनी साड़ियां आमतौर पर सादी साड़ियों के रूप में बुनी जाती हैं, लेकिन इन्हें बॉर्डर और पल्लू वाली पारंपरिक साड़ियों के समान दिखने के लिए भी बुना जा सकता है।
0: अब जैसे प्लेन स्टाइल कश्मीरी साड़ियां चटक रंगों की होती है, जिनमें कोई मोटिफ, कढ़ाई, डिजाइन या प्रिंटिंग नहीं होती। इनमें खास आकर्षण होता है और इनकी सादगी ही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। ये साड़ियां ऑफिस या कार्यस्थल के लिए एकदम सही है। प्लेन कश्मीरी साड़ियां कई रंगों और शेड्स में उपलब्ध हैं, जिनमें नेचुरल बेज से लेकर आइवरी, सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, गुलाबी जैसे अन्य रंग भी शामिल होते हैं।
1: और कानी बुनाई कश्मीर घाटी की एक अनूठी बुनाई शैली है, जिसका उपयोग कपड़े के विभिन्न रंगों में जटिल और बारीक पैटर्न बुनने के लिए किया जाता है। इसमें बहुत बारीकी से काम किया जाता है और काफी समय लगता है, क्योंकि प्रत्येक साड़ी को बुनने में महीनों तक का समय लग सकता है। कानी पश्मीना साड़ियां उत्कृष्ट वस्त्र है और पीढ़ियों तक विरासत के रूप में दी जा सकती हैं। ये भव्य साड़ियां किसी भी औपचारिक अवसर के लिए आदर्श विकल्प हैं, चाहे वो भव्य रात्रि भोज हो, सम्मेलन हो या मनोरंजन पूर्ण समारोह। ये साड़ियां हर जगह शोभा बढ़ाती हैं। तो सोच लो कितना अच्छा लगता होगा जब महिलाएं साड़ियां, ये वाली पश्मीना की साड़ियां पहन के निकलती होंगी, तो चार चांद लग जाते होंगे महफिल में, है ना।
0: सचमुच एक जो कशीदा कढ़ाई है ना, ये एक अनूठी यहाँ की शैली है जो केवल कश्मीर में ही प्रचलित है। साड़ी पर सुंदर और जटिल पैटर्न बनाने के लिए केवल कुछ ही टांकों का उपयोग किया जाता है। कशीदा कढ़ाई की खास बात यह है कि इसे या तो केवल बॉर्डर या पल्लू पर किया जा सकता है या फिर पूरी साड़ी पर भी किया जा सकता है। एक लोकप्रिय शैली है जिसमें बॉर्डर और पल्लू पर कशीदा कढ़ाई के साथ साथ पूरी साड़ी पर छोटे छोटे डिजाइन बने होते हैं। कशीदा कढ़ाई वाली साड़ियां कला और शिल्प की उत्कृष्ट कृतियां हैं।
1: और सोजनी कश्मीर की एक बहुत ही अनूठी कढ़ाई शैली है, जिसमें सैटिन स्टिच का उपयोग करके इस पैटर्न को बनाया जाता है और साड़ी के दोनों तरफ कढ़ाई की जा सकती है, यानी कि पूरी भर जाती है ये कढ़ाई, आगे पीछे दोनों एक जैसी। इसकी खासियत ये है कि दोनों तरफ अलग अलग रंग भी हो सकते हैं और नहीं भी। सोजनी पहले शाल में बहुत प्रचलित थी, लेकिन अब कश्मीरी साड़ियों के डिजाइन में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है।
0: और प्रिंटेड कश्मीरी साड़ियां और पश्मीना सिल्क साड़ियां पारंपरिक प्रिंट में भी उपलब्ध है। इनमें कई प्रकार के प्रिंट मिलते हैं, जैसे साड़ी के पूरे भाग, बॉर्डर, पल्लू पर बूटी पर प्रिंट, फूलों वाले बॉर्डर और पल्लू, ज्यामितीय बॉर्डर और आदि। और ये प्रिंटेड साड़ियां रेशम या सूती साड़ियों की तरह ही बेहद आकर्षक और आरामदायक होती है और इन्हें कैजुअल और ऑफिस दोनों तरह के मौकों पर पहना जा सकता है।
1: और कश्मीरी साड़ियां दोहरी या बहुरंगी बुनाई के पैटर्न में भी मिलती हैं। इनमें धारियों के चेक पैटर्न या सादे केंद्र पर मैचिंग बॉर्डर या पल्लू के डिजाइन होते हैं। ये बहुरंगी साड़ियां 100% पश्मीना और पश्मीना सिल्क दोनों में उपलब्ध है और धागे को कंघी करने की प्रक्रिया से सख्त रेशों को नरम रेशों से अलग किया जाता है। फिर चरखे पर, जिसे स्थानीय भाषा में चरखा कहा जाता है, इसे सावधानी पूर्वक हाथ से काटा जाता है। ऊन व्यापारी ताने और बाने के लिए धागे को अलग करते हैं। रंगीन साड़ियों के लिए इस चरण में रंगर या रंग साज की सहायता से ली जाती है। रंगाई की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऊन के गुच्छों को बॉबिन में बांधा जाता है, फिर उन्हें ताना लगाने के लिए तैयार किया जाता है। इस तरह काफी मेहनत लगती है इन साड़ियों को बनाने के लिए, एक दो महीने का समय लग जाता है, बहुत अच्छी डिजाइन उभर कर आती है। और सोनाली, हमारी एक साथी ने कमेंट भी लिखकर भेजा है, तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ। साड़ियों का संसार पश्मीना ये जम्मू

0: कश्मीर में बनाई जाती है, वहाँ की बहुत ही प्रचलित साड़ी है। अभी कुछ महीने पहले मेरे घर में शादी थी, तब मैंने ये साड़ी बारात कार्यक्रम में पहनी थी। क्या बात है। और इसका सिल्क बहुत ही मुलायम होता है, हाथ से फिसलती है और देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसके सूट और शॉल भी मिलते हैं। एक पश्मीना साड़ी भी होना चाहिए हमारी वार्डरोब में। बिल्कुल, आपकी वार्डरोब में तो हो गई है, अब हम लोग को सोचना पड़ेगा, है ना।
1: अब हम भी खरीदने वाले हैं, हमारी सखी ने खरीद लिया, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी कि हमें भी पश्मीना साड़ी खरीदना है।
0: बिल्कुल।
1: बहरहाल गाना सुनना है, सुनते हैं गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़न से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: तो भाई सोनाली, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारा विषय है कि खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। तो हमारे साथियों ने देखो बहुत सारे
1: भर-भर के कमेंट्स लिखे हैं,
0: भर-भर के लिखे हैं कमेंट्स। और देखो मनुष्य के जीवन में भोजन का जो स्थान है ना, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता नहीं है। शरीर के लिए सब चीजों की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन की है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं होता ना सोनाली, बल्कि जीवन को चलाने वाली वो शक्ति होती है। अन्न के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम रसोई में सोच ही नहीं सकते कि ये चीज हमारे पास होगी या नहीं होगी, हम सब चीजें खरीद लाते हैं। हमारे यही कारण है कि हमारे देश में अन्न को देवता का रूप माना गया है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो अन्न के देवता को, देव को याद करते हैं। और देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि एक सुबह चाय हो गई, फिर सीधा सादा खाना हो गया, फिर दोपहर की शाम की चाय हो गई और रात का खाना सादा, सब सादगी पूर्ण था जीवन। उस समय शरीर स्वस्थ भी रहता था, लेकिन
1: बहुत स्वस्थ रहते थे, और काम कितना करते थे पुराने जमाने के लोग।
0: बहुत लोग घर में चक्की भी चलना है, तो गेहूं भी पछोरना है,
1: पानी भरना है, कुएं से पानी निकालना है, कितना सारे काम,
0: बहुत सारे काम थे। तो उसमें फिटनेस रहती थी बॉडी को। लेकिन आज के समय में जो हमारी जीवन हो गया है, भाग दौड़ की जिंदगी जो गई है, भोजन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है बदलता जा रहा है। उन्हें स्वाद और दिखावा और फैशन दिखता है, जिसमें भोजन को वास्तविक उद्देश्य को पीछे छोड़ देता है। और इसी कारण ये प्रश्न विचारणीय भी बन गया है सोनाली, कि क्या हम जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, मंजरी, भोजन चाहे जीवन जीने के लिए हो या जीवन भोजन के लिए हो, दोनों ही जरूरी है। वो तो हम अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उस भोजन को किस नजरिए से देखते हैं। कुछ लोग रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके शून्य से शिखर तक पहुंच जाते हैं, उनको कह सकते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। और कुछ लोग बहुत स्वादिष्ट भोजन करके भी अपने जीवन में कुछ विशेष नहीं कर पाते, उनको कह सकते हैं कि सिर्फ खाने के लिए जीते हैं। पर ऐसी बात नहीं है, हम पौष्टिक भोजन भी खा के यानी खाने के लिए जी सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें जंक फूड खा के ही जीना है। बहुत सारे पौष्टिक हमारे भोजन में, तो इतने आहार में इतनी पौष्टिकता भरी हुई है।
0: हर सीजन में देखो, हर सीजन की सब्जियां मिलती, हर सीजन के फल मिलते हैं। अगर हम उनको भी खाएंगे ना, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन गुजार सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें बहुत फास्ट फूड पर हम जाए, जंक फूड पर जाए, है ना। और हमारे साथी और लिखते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि आप खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खा रहे हैं, तब यही जवाब रहेगा, जीने के लिए खाना जरूरी होता है। यानी ईट टू लाइव। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है, उसी तरह भोजन हमारे शरीर का ईंधन है, जो हमें पोषक तत्व देकर उम्र के साथ साथ ऊर्जा और बुद्धि भी बढ़ाता है। अगर खाना स्वाद पर केंद्रित होगा या चटकारे भोजन पर ध्यान केंद्रित होगा, तो पेट खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी खाओ जीने के लिए खाओ। एक बात कान से खाने से की भी एक काम की मतलब कह दूं कि विविध भारती के मधुर गीतों का रस स्वादन सेहत के लिए भी बड़ा फायदेमंद होता है। आपने बहुत अच्छी सी बात इसमें शामिल कर दी है।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि कुछ समय पहले तक मैं जो भी मिल जाता था खा लेती थी, कभी यह सोचने का समय नहीं मिला कि जो खा रही हूँ उसमें पोषण है भी नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की बात आई, तब समझ में आया कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन को ऊर्जा देने का आधार है। और उन्होंने कहा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर स्वाद के पीछे स्वास्थ्य को भूल जाते हैं, जबकि सही मायने में हमें एक लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन ही स्वस्थ शरीर और शांत मन और अच्छे जीवन की असली पहचान है। अब एक गीत सुन ले।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: मंजरी
1: थी इस गाने में है ना, जब अच्छा अच्छा खाना सामने हो ना तो हमारी पायल थिरकने लगती है, पायल बजने लगती है।
0: तो देखो मेरे एक साथी लिखते हैं कि मैं सूरत का रहने वाला हूँ और सूरत का खाना और काशी का डैश डैश फेमस है, सो तो मैं खुले पेट से सबको कहता हूँ कि हाँ मैं चटोरा हूँ, खाने के लिए जीता हूँ। स्वर्ग या नरक में ना जाने, खाने को मिले या ना मिले, भगवान को भी लगना चाहिए कि मेरा भेजा बंदा खा पी कर धरती से लौटा है। बहुत इन्होंने हंसने वाले स्माइलीज लगाए हैं। और अगला संदेश क्या है?
1: बहुत सारे हमारे साथी,
0: अच्छा एक साथी और लिखते सुना लिए, हम पढ़ लेते कि पहली बात तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, इसलिए खाने के लिए जीना चाहिए, उससे अच्छी सेहत होती रहती है और जब तक स्वस्थ है तब तक जी भरकर खाना चाहिए, लेकिन योग और वॉक करना चाहिए।
1: और अब लेते हैं एक
0: अंतराल।

0: तो सोनाली क्या कमेंट तुम देख रही थी बड़ी देर से?
1: बहुत सुंदर हमारे साथियों ने हमारे कमेंट्स लिखकर भेजे। एक लिखते हैं कि भाई खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं, जो भी हम खाते हैं हमारा जीवन बन जाता है, इसलिए भोजन कृतज्ञता के भाव के साथ खाना चाहिए। कहते हैं कि भोजन के द्वारा हम किसी के दिल तक पहुंच सकते हैं, मतलब भोजन जीवन है। जीने के लिए खाना जीवन का संतुलन सिखाता है, जबकि खाने के लिए जीना अक्सर स्वाद की आदत बन जाता है। भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं

0: के शरीर को ऊर्जा, मन को संतोष और रिश्तों को मिठास देने वाला माध्यम है। स्वाद जीवन का आनंद है, लेकिन स्वास्थ्य उसकी असली पूंजी है। इसलिए शायद सही बात यही है कि हम ऐसा खाएं जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित बनाए, क्योंकि अच्छा जीवन केवल स्वाद से नहीं, अच्छे स्वास्थ्य और सुकून से भी बनता है।
1: क्या
0: बात है, बहुत सुंदर बात।
1: हमारे साथी लिखते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग खाने के लिए जीते हैं, और जब समझ में आता है कि जीने के लिए समतौल खाना जरूरी, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए जीवन करी जीविता अन्न हे पूर्ण ब्रह्म उदर भरण नोहे जानिजे यज्ञ कर्म। ये बात सही समय पर जान लो। अर्थ है इसका कि शरीर का यज्ञ शुरू रहने की समाधि यानी खाना होता है, ये बात पहचान लो। बहुत सुंदर सी बात आपने लिखकर भेजिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जीने के लिए खाना एक जैविक और तार्किक आवश्यकता है, जबकि खाने के लिए जीना जीवन के रंगों और खुशियों का आनंद लेने का तरीका है। एक स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए अनिवार्य है कि हम जीने के लिए खाएं, लेकिन कभी कभी खाने का आनंद इस तरह से ले मानो हम उसी के लिए जी रहे हैं। सुनाली, किस्सा मुझे याद आ गया कि जिम में हमने देखा कि सीढ़ी पे चढ़ के एक खिड़की थी, तो वहां खिड़की के पास स्पेस था, तो एक लड़की काफी हैवी थी, वो चढ़ी वहां बैठ गई और बैग से निकाल के उसने बर्गर लेके आई थी और अंकल चिप्स थे उसके चिप्स थे और ठंडा कोल्ड ड्रिंक थी, तो बस वो उसके साथ बैठ के खा पी रही थी। तो मैं चढ़ रही थी, मैंने पूछा उसको कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, कहती भूख बहुत लगी, पहले खा लूं फिर जाके कर लूंगी। तो उसका ये कि वो खाने के लिए जी रही थी।
0: देखिए, खाने के लिए जीना जरूरी है, पर अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो वो जी पाएंगे ना अच्छे से। तो ऐसा नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही जी सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब देखिए, जैसे हमने भेलपूरी और दाबेली का ऑप्शन दिया है, तो मैं एक उसमें पौष्टिक भेल की भी रेसिपी बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा जंक फूड खा के ही, उसमें भी हम बहुत उसमें हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, जो शरीर के लिए फायदेमंद है वो भोजन नियमित तरीके से खाना चाहिए, सीजनल सब्जी और फल का सेवन करना चाहिए, डब्बा बंद और गैर मौसमी फल सब्जी और अनाज से बचना चाहिए, अपने रहने के एक लिमिटेड दायरे में उगने वाली फसल का उपयोग अधिक करना चाहिए। यानी हम जहाँ रहते हैं वहाँ उगने वाली जो सब्जियां होती है, वो फल होते हैं ना, उसे हमें प्राथमिकता देना चाहिए। ऐसा होता है कि हम विदेशी फलों को, विदेशी सब्जियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देने लग गए हैं, वो भी अच्छे हैं, पर जो हमारे हैं, जैसे अब हम बचपन में कितने है ना जाम अमरूद खाते थे, बेर खाते थे, गन्ना खाते थे, तो अब वो बच्चे भूलते जा रहे हैं, पर उनमें भी बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं।
1: बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता है कि गन्ने को कैसे मतलब
0: खाया जाता है,
1: चूसा जाता है, क्या किया जाता है, तो उन्हें बताना पड़ता है कि भाई गन्ने को चूसना पड़ता है। उन्हें चने के साग का स्वाद नहीं पता है, उन्हें झरबेरी का स्वाद नहीं पता है,
0: तो उन्हें कैसे मालूम होगा, हमने ही नहीं बताया।
1: हम नहीं बता रहे उनको, हम उन जगह लेके नहीं जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी गलती अपने लोगों की कही जा सकती है। चलो फिर एक संदेश पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं कि शरीर को चलाने के लिए भोजन से जितनी एनर्जी चाहिए उतना भोजन चाहिए ही, कभी कभार भोजन स्वादिष्ट होने के साथ होने के कारण कुछ ही ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट में तकलीफ हो जाती है, इसलिए भोजन को एक लिमिट में ही करना चाहिए। और एक हमारा संदेश है सोनाली, उन्होंने थोड़ा इंग्लिश में लिखा है कि ज्यादातर तो सभी जीने के लिए ही खाते हैं, वैसे भी आजकल तो नाप तौल का खाना होता है, ये मत खाओ वो नुकसान करेगा, इस तरह की बातें लिखी है। और हम अपने साथियों से कहेंगे कि हिंदी में ही संदेश लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है,
0: वैसे पढ़ने में दिक्कत नहीं आती,
1: वो इजिली से आंखों में अटैक कर जाता है, हालांकि मैंने इनका संदेश पढ़ लिया है।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी, खाने के लिए जीना है दृष्टिकोण भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि जीवन के परम आनंद और उत्सव के रूप में देखता है। भोजन के स्वाद, विविधता और उससे मिलने वाली मानसिक संतुष्टि को प्राथमिकता देना, नई संस्कृतियों, व्यंजनों और स्वादों को खोजना एक कला है। ये सामाजिक मेलजोल को बढ़ाता है। अच्छा खाना मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज करता है, जो तनाव कम करने और खुशी देने में मदद करता है। अत्यधिक स्वाद लोलुपता से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, जैसे अपच या वजन बढ़ सकता है।
1: बिल्कुल। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का पहला विषय बहुत ही रोचक है, मेरा मानना है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, क्योंकि सादा और पौष्टिक भोजन ही हमें स्वस्थ, ऊर्जावान रखता है, लेकिन कभी कभी स्वाद के लिए पसंद का खाना खाने में भी एक अलग ही खुशी है। और अक्सर लोग स्वाद के पीछे भागते हैं, लेकिन लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जीने के लिए खाना ही सही मंत्र है। अगर हम खाने पर नियंत्रण रखेंगे तो शरीर हमारा जो है हमेशा साथ देगा। और सुनाली, एक साथी ने हमारे और इंग्लिश में कमेंट लिखकर भेजा है, जब हम खाना खाते हैं तभी तो हम जीते हैं, अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसलिए खाना भी जरूरी है और जीना भी जरूरी है। जब तक है जीना जब तक खाएंगे खाना। तो ये बात आपने अच्छी लिखी है, लेकिन हम चाहेंगे कि अगली बार आपका संदेश हिंदी के शब्दों में आए, है ना। और क्या करें, सुने गीत,
0: सुन लेते हैं गीत।

0: तो सोनाली कौन सा कमेंट तुम पढ़ने वाली हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को जलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना होता है। ठीक वैसे ही जीवन का उद्देश्य केवल खाना नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और खुशियों से जीवन को सुंदर बनाना है, इसलिए हमें भोजन का सम्मान करते हुए संयम और संतुलन के साथ जीवन जीना चाहिए।
0: क्या बात है। और हमारे साथी जो है उन्होंने छोटा सा संदेश लिखा है, खाने पीने क्या शर्मा ना, कम खाओ गम खाओ, सेहत जोरदार शरीर कभी शानदार। और एक साथी लिखते हैं, एक प्रसिद्ध कहावत का अंग्रेजी अनुवाद है, ईट गो लाइव, ईट टू लाइव और लाइव टू ईट होता है, खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। इस विषय पर कॉलेज में इंग्लिश में निबंध आता था। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है।
1: और एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि हिलियर्ड कहते हैं कि जीने के लिए खाना खाने का मतलब है भोजन को शरीर के लिए ईंधन की तरह मानना। अक्सर इसके विपरीत खाने के लिए जीना वाला दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि आनंद का एक बड़ा हिस्सा मुख्य रूप से या पूरी तरह से खाने के अनुभव में ही निहित हो जाता है, जो हिलियर्ड के अनुसार आमतौर पर अस्वास्थ्यकर विकल्पों को जन्म देता है।
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं, जीने के लिए खाना खाते हैं वो भी घर का बना हुआ स्वादिष्ट वेजिटेरियन फूड, प्राकृतिक सब्जियां, फल और फ्रूट्स। बहुत अच्छी सी बात है, आप बिल्कुल संभाल करके अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। और हमारे सभी साथी भी बहुत अच्छी तरह से खाते हैं। लेकिन हमारे एक साथी और लिखते हैं कि सही मायने में भोजन वही है जो शरीर को ताकत दे और मन को संतुलन। जिस प्रकार दीपक को जलने के लिए तेल चाहिए उसी प्रकार शरीर को चलने के लिए भोजन चाहिए, परंतु दीपक का उद्देश्य केवल तेल खत्म करना नहीं बल्कि रोशनी फैलाना है। ठीक वैसे ही जैसे लगता, तुमने ये पढ़ा है क्या?
1: ये पढ़ दिया है।
0: अच्छा, तुम्हें इशारे कर दी थी। चलो अच्छी बात है, उनको थोड़ा अच्छा लगा होगा। तो देख दूसरा कमेंट हम ले लेते हैं सोनाली। खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाते हैं। भाई बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि इससे हर एक का ही स्वास्थ्य प्रभावित हुआ करता है। जो लोग स्वाद के लिए भोजन करते हैं वे ही खाने के लिए जीते हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि वे अपनी जीवा पर लोलुपता पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसलिए विपरीत जो लोग खाने के लिए जीते हैं खाते हैं, वे सुस्वाद भोजन के साथ ही षडश युक्त संतुलन

0: भोजन के लिए सेहतमंद और आनंद में रहते हैं। मैं तुम्हारी आंखों में देखती जा रही थी पढ़ते पढ़ते कि कहीं तुमने इसको भी तो नहीं पढ़ लिया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है श्रोता भाइयों कि लगता है कि हाँ ये नहीं पढ़ा है, तो पता चलता है दूसरा इशारा कर रहा होता है ना।
1: ये टेक्नोलॉजी में ऐसे ना थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है,
0: लेकिन इसमें मजा आता है जिसको लगा मैंने दोबारा पढ़ लिया।
1: और अगर हमने गलती को है ना, अपनी गलती को भी आत्मविश्वास के साथ बोल दिया कि हाँ हमने गलती कर ली, तो कोई वो आत्मविश्वास भी अच्छा लगता है ना। आज ये शब्द हमारा विचार आपके इस विषय में, हमारा विषय है आत्मविश्वास। हमारे साथियों ने भी बहुत भर भर के कमेंट्स लिखे हैं आत्मविश्वास। वो सचमुच मंजरी आत्मविश्वास जो ऐसा शब्द है ना, अगर हम उसे अपना ले, यानी कि अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ जाता है तो कितने भी कठिन से कठिन काम हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। फिर वो कोई कला है, उसके बाद में कोई भी प्रस्तुति है, अगर वो प्रस्तुति में थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो भी चलेगा, पर उसमें अगर आत्मविश्वास होगा तो वो कला दिल को छू जाती है।
0: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं इसी बात पर कि आत्मविश्वास शब्द में ही इसका अर्थ शामिल है। आत्म यानी खुद पर, विश्वास मतलब भरोसा, अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। इसे अगर परिभाषित किया जाए तो जिन्हें हम अपनी क्षमताओं, कौशलों और निर्णय लेने की क्षमता पर अटूट भरोसा हो वो आत्मविश्वासी कहा जा सकता है। जो बिना डर हर चुनौती को सामना कर सकता है, बस एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस बात पर गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन करे तो हम कोई भी जगह जा सकते हैं, कोई भी कठिन कार्य कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बात लिखी आपने।
1: एक हमारी सखी ने लिखा है कि अपनी असफलताओं पर ना डरते हुए अपने काम पर भरोसा, सही मायने यही आत्मविश्वास होता है। अपनी योग्यताओं, क्षमताओं और निर्णयों पर अटूट भरोसा है, ना कि केवल अहंकार। ये अपनी खूबियों और कमियों को स्वीकार करते हुए जीवन की चुनौतियों का सामना करने की सकारात्मक मानसिक स्थिति है। ये डर को दूर कर सत्य और आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का नाम है। मन में विश्वास, हम होंगे कामयाब।
0: और हम एक साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास से विवेक बुद्धि को बल मिलता है। वो मैं पूर्ण आत्मविश्वास से भर कर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे सफलता भी मिलती है। बस कोई काम में आत्मसात से करे, यानी कि आप कोई भी काम करें तो ये मत सोचे कि हमें इस काम से सफलता मिलेगी। पहले तो ईमानदारी से काम करें, आप आत्मविश्वास से भरें और धैर्य के साथ करें, तो आप हमेशा अपने काम को आगे ले जा सकते हैं। और हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि ये हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं और अपने काम में माहिर होते जाते हैं, तो वही भरोसा हमारे व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बनकर छलकता है। आत्मविश्वास ही वो शक्ति है जो हमारे हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मेरा मानना है कि आत्मविश्वास कठिन परिश्रम से आता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ सकता है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि आत्मविश्वास के बारे में मेरा मानना है कि हमारे काम और मेहनत से पैदा होता है। जब हम दिन भर, अच्छा आपने पढ़ चुका है ये भी कमेंट्स आप पढ़ चुके हैं, और हमारे बहुत सारे साथियों ने इस विषय पर और भी कमेंट्स लिखे हैं, तो उससे पहले एक गाना सुनिए, तो सुनवाते हैं गीत।

0: एक हमारे साथी लिखते हैं मंजरी कि व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास सफलता की वो सीढ़ी है जिस पर चलकर व्यक्ति आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। जब स्वयं पर भरोसा होता है तो हर मुश्किल आसान लगती है, लेकिन आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि लूंगा। आत्मविश्वास कभी शोर नहीं करता, वो शांति और धैर्य के साथ अपना काम करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं जो एक दिन में प्राप्त किया जा सकता है, ये हर रोज खुद से छोटे छोटे वादे करके उन्हें निभाने से ही आता है। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार।
1: इतनी सारी बातें करने के बाद तो अब चलते हैं व्यंजन की ओर जिसमें मुझे मिल गई है कच्ची दाबेली की रेसिपी। तो हमारे साथियों ने भेजी तो हम इसको पढ़ते हैं कि पहले मसाला तैयार कर लीजिए। दाबेली मसाला घर पर बनाने के लिए धनिया, जीरा, सौंफ, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता और सूखे नारियल को भूनकर पीसकर तैयार कर लीजिए, मतलब अपने अंदाज से लीजिए सामग्री। सामग्री आगे लिखी इन्होंने कि जो आलू का मसाला, 4-5 उबले और मैश किए हुए आलू, दाबेली का मसाला जो स्पेशली लिया जाता है जो पहले से तैयार किया था वो 2-3 बड़े चम्मच लेना है, जो हमने पहले बताया था वो दाबेली का मसाला था। अब चटनी, इसके लिए आपको इमली की खट्टी मीठी चटनी और लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी। स्टफिंग के लिए बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला वाली मूंगफली, बारीक सेव और अन्य में लिखा है 6-8 पाव मक्खन या घी, हरा धनिया। और इसकी विधि लिखी है कि स्टफिंग तैयार करें, एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें दाबेली मसाला, थोड़ा सा पानी और इमली की चटनी डालकर मिलाएं। अब मैश किए हुए आलू और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाइए। मिश्रण को गीला और मसालेदार रखना है। प्लेटिंग के लिए तैयार आलू के मिश्रण को एक थाली में फैलाएं, ऊपर से बारीक कटा प्याज, अनार के दाने, मसाला, मूंगफली, हरा धनिया और ढेर सारी बारीक सेव डालें। दाबेली असेंबल करें, पाव को बीच में काटें और पूरी तरह से अलग न करें, एक तरफ से तीखी चटनी, दूसरी तरफ से मीठी चटनी लगाएं और भरें। बीच में एक बड़े चम्मच तैयार आलू का मसाला भरें, ऊपर से थोड़ा सा अनार, प्याज और मूंगफली डालें और एक तवे पर मक्खन या घी गर्म करें और दाबेली को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक सेक लें। गर्मा गर्म दाबेली आप खाएं, हमको खिलाएं, सबको खिलाएं।
0: और अभी छुट्टियों का मौसम है तो बच्चों को इस तरह का कुछ चटपटा बना के खिलाते हैं, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं और उन्हें उन्हें उनकी हेल्प भी ले सकते हैं क्योंकि बनाना जो है आसानी होता है। बस तवे में सेकते वक्त हम अपने एक साथ खड़े रहे, वरना बच्चों को साथ में लेके हम उन्हें सिखा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। वैसे एक भेलपूरी जो है एक चटपटा भारतीय नाश्ता और चाट का प्रकार है, इसकी जड़ें गुजराती व्यंजनों में से है लेकिन मुख्य रूप से मुंबई की पहचान है। मुंबई के चौपाटी, गिरगांव, जुहू बीच की भेलपूरी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी सामग्री इन्होंने बताया है कि मुरमुरा, तली हुई सेव, पापड़ी, कटे हुए उबले आलू, प्याज और काटी हुई हरी मिर्च से बनाया जाता है। इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी और तीखी हरी चटनी मिलाई जाती है। इसका स्वाद बेहद चटपटा होता है और कलकत्ता में से झालमुरी और कर्नाटक में मसाला पूरी या चुरमुरी के नाम से जाना जाता है। वैसे एक मैं पौष्टिक भेल की मैं आपको रेसिपी बताने वाली थी, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 2-3 मुट्ठे मखाना लेना है, उसे घी में अच्छी तरह सेक लेना है, उसमें उबला हुआ शकरकंद जो है उसके छिलके निकाल के बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देना, फिर उसमें उबली हुई मूंगफली डालना है और उसमें फिर प्याज, टमाटर और फिर उसमें हरी चटनी, मीठी मीठी चटनी, फिर उसमें बारीक कटी हुई ककड़ी भी डाल सकते हैं, उसमें अनारदाना डाल सकते हैं, उसमें चाट मसाला डाल दीजिए और फिर उसमें रागी की सेव डाल दीजिए।
1: क्या बात,
0: और ये पौष्टिक भेल सर्व कीजिए।
1: हाँ, है ना, खास बात है आपने बताई कि शकरकंद के टुकड़े,
0: हाँ, और आलू के बदले हम

0: शकरकंद का इस्तेमाल कर सकते
1: बहुत
0: हैं
1: अच्छा
0: और बेसन की सेव के बदले हम उसमें रागी की सेव यूज कर सकते या फिर खाकरा जो होता है उसको चूरा करके वो डाल दे। तो यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि हम जंक फूड खा के ही खुश रह सकते, इस तरह हमें पौष्टिक खाने खा के भी हम खुश रह सकते हैं,
1: बिल्कुल रह सकते हैं। और साथ में गीत सुने कि कमेंट्स पढ़ोगे?
0: एक कमेंट पढ़ दीजिए।
1: ठीक है, एक हमारे लिखते हैं कि भारत दावेली कच्ची दावेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है जिसकी उत्पत्ति गुजरात के कच्छ क्षेत्र के मांडवी में हुई थी। ये एक मसालेदार और मीठा नाश्ता है जिसे उबले हुए आलू को एक विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। बहुत सुंदर सी जानकारी दी है। और हमारे साथी लिखते हैं कि देखा तो मिला
0: दाबेली कच्ची दाबेली है डबल रोटी देवनागरी दाबेली भारत का एक लोकप्रिय नाश्ता है, गुजरात के मांडवी से हुई एक मसालेदार मीठा नाश्ता है और ये जो है उबले हुए आलू को विशेष मसाले के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इसमें हम पाव की जगह पर हम रोटी का इस्तेमाल करें ना और पैकेट बना के बना सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता
1: है।
0: और आप गीत सुन ले सुनते हैं।

0: सचमुच नाना करते प्यार कर ही बैठते हैं हम खाने की चीजों से, भले डॉक्टर कितना भी मना कर दे कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है।
1: अरे आजकल तो देखो ना हमारे सोशल मीडिया पे कितनी सारी रेसिपी बताई जाती है, उसी में डूबे रहते हैं कि अच्छा ये भी बना ले वो भी बना ले और सब ले लेकर अपने पास स्टोर करते जाते हैं।
0: और फिर क्या होता है जब हम मॉल में जाते हैं ना तो उस वक्त हमें आ जाता है अच्छा हाँ हमने वो ना नेट पे ये रेसिपी देखी थी उसमें ये डालना है ये पाउडर डालना है ये सब डालना है और लेकर आते हैं
1: शॉपिंग कर लेते हैं फ्रिज पूरा भर लेते हैं चीज
0: कभी कभी बनाते भी नहीं है वो पैकेट वैसा ही पड़े पड़े एक्सपायर हो जाता है।
1: देखो हमारे साथी लिखकर बैठते हैं रेसिपी सुनकर नाना करते दावेली बनाकर खा भी बैठे हैं और एक लिख रहे हैं कि

0: रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, मुझे अच्छी लगी तो मैं क्या करूं। और एक लिखती है, खाने के लिए जीते या जीने के लिए खाते। इस बारे में इंदौरियों से पूछे, हर इंदौरी खाने के लिए जीता है। किसी भी कोने में चले जाइए खाने पर भीड़ लगी होती, क्यों ना हो भाई, यहाँ नाश्ते खाने की इतनी विविधता जो है वाकई में सही बात है।
1: बार बार जाने को जी करता है।
0: और देखो हमारे हर शहर में, हमारे देश में कई सारे शहर है, सबके अलग खान पान है, सबका अलग स्वाद है। तो जब जहाँ कहीं जाते तो वहाँ का स्वाद खाते हैं। आप चाहे इंदौर चले जाइए, चाहे आप लखनऊ चले जाइए, चाहे आप गुजरात आ जाइए, चाहे महाराष्ट्र आ जाइए, राजस्थान चले जाइए, और जिसका नाम हमने नहीं लिया उन सभी शहरों में जाइए, वहाँ का बढ़िया बढ़िया पंजाब वगैरह सब जगह खा के आइए
1: और खाइए, और है ना खूब सारा व्यायाम कीजिए, ताकि है ना ये जो खाना जो हमने खाया है वो पच जाएगा और हम स्वस्थ रहेंगे।
0: तो हमारी बातों की जो हमने गप्पे मारी है उनसे लेते हैं विराम, तो सभी से लेते हैं विदा।
1: और आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंशी वर्मा का नमस्कार।

सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार श्रोताओं, आज के मेहमान आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान। आज सुनिए इस बातचीत का पहला भाग।
1: राजेश रेड्डी एक जाने माने शायर जिनकी गजलों का हर शेर खरा होता है। वो लिखते हैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। राजेश रेड्डी अपने समय और समाज की आवाज भी बन जाते हैं। जुबां खामोश है डर बोलते हैं, अब इस बस्ती में खंजर बोलते हैं। राजेश रेड्डी की शायरी में जिंदगी का फलसफा छलक छलक पड़ता है। वो लिखते हैं, ये जो जिंदगी की किताब है, ये किताब भी क्या किताब है, कहीं एक हसीन सा ख्वाब है, कहीं जानलेवा अजाब है। जिंदगी के डर, जिंदगी की उदासी और जुल्मतों को वो अपनी लेखनी में पिरो देते हैं।

0: घर से निकले थे हौसला करके लौट आए खुदा खुदा करके। जिंदगी की नाकामियां उदासियां और विडंबनाएं भी राजेश रेड्डी की लेखनी में नजर आती हैं। जिंदगी तूने लहू लेके दिया कुछ भी नहीं, तेरे दामन में मेरे वास्ते क्या कुछ भी नहीं। राजेश रेड्डी वो शायर हैं जिन्होंने बड़ी ही मशहूर गजल लिखी जिसे पंकज उधास ने गाया। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है, खिलौना है जो मिट्टी का फना होने से डरता है। कई वर्षों तक राजेश रेड्डी विविध भारती के हेड रहे। उन्होंने विविध भारती को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जाने माने शायर और विविध भारती के हमारे पुराने साथी राजेश रेड्डी विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस और विविध भारती पूरे परिवार को। इस पूरे परिवार से बरसों बाद 13-14 साल बाद एक मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और विविध भारती के श्रोताओं से भी इस बहाने मिलना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस विविध भारती परिवार को।
0: मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी वो जमाना लौट आया जब आप विविध भारती के मुखिया हुआ करते थे और ढेर सारे काम हम लोग मिलकर एक साथ किया करते थे।
1: वो बहुत प्यारा जमाना था और एकदम तुमसे मिलके और विविध भारती में आने के बाद वो जमाना फिर एकदम तरोताजा हो गया और वो ऊर्जा वो उत्साह वो उमंग और श्रोताओं के साथ वो लगाव एकदम आंखों के सामने आ गया। जी खुश हुआ जी।
0: क्या बात है। अच्छा, आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की यात्रा की तरफ अग्रसर है। एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक योगदान रहा है, चेतना का योगदान रहा है आकाशवाणी का। तो 90 बरस की इस यात्रा के बारे में जानकर आपकी क्या कैफियत है और आप क्या कहना चाहते हैं?
1: इस यात्रा का तो कोई भारत में खास तौर से पूरे भारत को सांस्कृतिक रूप से और भाषा के तौर पर जोड़े रखने का इससे अच्छा माध्यम, क्योंकि बाकी जो संचार माध्यम है उनमें भाषा अखबार की बात करें या किताबों की बात करें, टीवी तो खैर बहुत बाद में आया, तो ये आकाशवाणी था जो देश के कोने कोने में, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदान हो गांव हो बसा हुआ शहर हो, सब जगह अगर पहुंचती तो आकाशवाणी की ही थी। और एक से दूसरे से जोड़ने का जो काम आकाशवाणी ने किया उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि कितने अच्छे ढंग से ये काम हुआ और हो रहा है।
0: बिल्कुल, अपने बचपन की तरफ अगर लौटें तो रेडियो को आप किस तरह से अपने बचपन में देखते हैं, किस तरह से प्लेस था रेडियो और कितनी सुनहरी यादें आकाशवाणी से जुड़ी हैं?
1: यूनुस, कमाल की बात यह है कि अब सारा बचपन जो है वो उस जमाने में और आज के जमाने में तो सोशल मीडिया और जाने क्या कुछ हो गया है, हम लोगों का बचपन रेडियो सुन सुनकर ही बढ़ा। उसमें जो कुछ भी संस्कार आए सुनने के भी सीखने के भी बोलने के भी समझने के भी, ये सब संस्कार आकाशवाणी ने दिए और जिसको सुनते सुनते कि ये आवाजें कानों को इतनी अच्छी लगती है, फिर फिल्म म्यूजिक की तो मैं बाद में बात करूंगा
0: जी।
1: जिनको हम सुनते थे चाहे रेडियो ड्रामा हो अनाउंसर हो, अनाउंसर उस वक्त जो है वो पूरे शहर में एक सुपरस्टार हुआ करते थे
0: जी, जी।
1: इनकी आवाज सुना अनाउंसर न्यूज रीडर्स ये सब जो है, तो अगर किसी से कहा जाए कि आप रेडियो में काम करते अच्छा अनाउंसर है आप ये अनाउंसर का वो दर्जा था मतलब और वो पॉपुलरिटी थी, तो मतलब आप स्टेशन डायरेक्टर हो तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं आपको
0: जी।
1: लेकिन अगर अनाउंसर है आप अच्छा, तो ये मतलब बड़ी पहचान हुआ करती थी कि आप रेडियो में अनाउंसर है। फिर रेडियो सिंगर होना
0: जी,
1: रेडियो आर्टिस्ट होना ये बड़ी बात थी। तो हम जब बचपन में सुना करते थे तो जयपुर में मेरा सारा बचपन बीता तो ये सब हुआ और फिर उसी केंद्र को सुनते सुनते युवाणी इंद्र शुरू हुआ था
0: जी जी।
1: तो जयपुर के जो पहले युवाणी वाला बैच था उसमें हमें सौभाग्य मिला कि हम पार्टिसिपेंट के तौर पर एक के रूप में एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में ऑडिशन दिया, क्लियर हुए और फिर उसका हिस्सा बने। तो वही युवाणी कार्यक्रम जिसकी शुरुआत ही हम कलाकार थे पार्टिसिपेंट थे, फिर उसी को हमने एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव उसको प्रोग्राम को संभाला आकाशवाणी ज्वाइन करने के बाद। और फिर जो मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ ये कि आज मैं विविध भारती में बैठ के ये बात बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ कि बचपन में फिल्म म्यूजिक और उस दरबार का फिल्म म्यूजिक तो कहना ही क्या
0: जी।
1: तो जिनको जिस चैनल को सुन सुन के वो संगीत सरिता वो सारे कार्यक्रम और बड़ी बड़ी आवाजें बड़े बड़े संगीतकार फिल्म म्यूजिक, तो जिन जिन को सुन के हम लोग बड़े हुए विविध भारती चैनल को, मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मैं उसी चैनल में आऊंगा
0: जी
1: और न सिर्फ आऊंगा
0: बल्कि हेड करेंगे
1: उसका कार्यक्रम का, मतलब मुझे संचालन करने का मौका मिलेगा, उसको निर्धारित करने का मुझे मौका मिलेगा, प्लान करने का मौका मिलेगा और पूरे चैनल

0: को मैं अपने ढंग से चला पाऊंगा, देख पाऊंगा, तो ये मेरा सौभाग्य था कि जिस चैनल को सुनते सुनते मैं बड़ा हुआ,
1: वाह वाह वाह,
0: उसी चैनल से मैं रिटायर हुआ और अच्छे ढंग से रिटायर हुआ कि मेरी एक अच्छी टीम थी जिसमें यूनुस एक से एक्टेबल मैं क्या नाम लूं, और पूरी अच्छी टीम और उनकी वजह से हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम शुरू कर सके, चला सके और आज भी वो चैनल बहुत पॉपुलर है दुनिया भर का।
1: क्या बात है, मुझे याद आता है आपके साथ काम करने का वो पूरा दौर। कितनी प्यारी आपने बात कही है, युवाणी से आपकी शुरुआत हुई और जयपुर के पहले युवाणी के बैच में आप रहे हैं। न जाने कितने लोगों की यादें ताजा हो गई होंगी, मेरी अपनी खुद की याद इसलिए ताजा हो गई कि मैंने भी अपनी रेडियो की शुरुआत युवाणी से ही की है, तो वो जो जहन में युवाणी की सिग्नेचर ट्यून बजने लगी जिस तरह की वो होती थी। पर क्या ये रेडियो तक का रास्ता आसान था या वो रास्ता बहुत सारे डिबेट्स और कल्चरल एक्टिविटीज से होता हुआ पहुंचा है?
0: हाँ, नेचुरली ये आप एकदम अचानक आकाशवाणी में नहीं जा सकते, आपको एक सांस्कृतिक लिटरेरी बैकग्राउंड तो आप में होना ही पड़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: उसके बगैर आप आकाशवाणी में एंटर नहीं कर सकते, कम से कम आर्टिस्ट के तौर पर या पार्टिसिपेंट के तौर पर। और उस वक्त तो शर्तें और भी ज्यादा, वो आकाशवाणी का एक तरह से जयपुर आकाशवाणी ड्रामे के मामले में नंबर वन था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बड़े दिग्गज,
0: बड़े दिग्गज लोग, नंदलाल शर्मा जी, फिर ओम शिवपुरी, ये सब लोग वहाँ पे,
1: गंगा प्रसाद जी,
0: हाँ हाँ, तो ये सब जो उसका मेयर था वो ऐसा था कि पूछे मत। जब हम आकाशवाणी में एंटर, उससे पहले हम लोग रंगमंच, कवि सम्मेलन, साहित्य, ये सब कर चुके थे
1: जी,
0: और
1: जी,
0: कर रहे थे, है ना। तो उसके साथ ये हम ऑडिशन देने गए, उधर से सेलेक्ट हुए और पार्टिसिपेंट के तौर पर उसमें हिस्सा लिया। तो ये सफर जो है आकाशवाणी का सफर, पहले मेरा अपना रचनात्मक सफर शुरू हुआ और वो फिर आकाशवाणी के जरिए आगे बढ़ा। ये
1: बहुत ही शानदार बात है। जयपुर में जब आप पढ़ रहे थे तो आपने कहा कि रंगमंच और बाकी कल्चरल एक्टिविटीज में आप शामिल थे, तो रंगमंच की अपनी एक्टिविटीज के बारे में बताइए।
0: रंगमंच का यूं था कि मैं थोड़ा अपना पारिवारिक पहले बैकग्राउंड बताऊं कि मैं, हमारे परिवार में संगीत का परिवार रहा है, हमारे पिताजी बाकायदा गायक रहे और आकाशवाणी जयपुर के उस वक्त ए ग्रेड आर्टिस्ट में से वो सुगम संगीत के गीत, गजल, ये सब गाना उनका रहा। और न सिर्फ वो गायक थे बल्कि उन्होंने जयपुर में एक राष्ट्रीय तरुण कलाकार परिषद और श्रुति मंडल, ये दो सांस्कृतिक मतलब कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौशल भार्गव साहब के साथ मिलकर खड़ी की, जिसने साल भर में बड़े बड़े कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट और बड़े बड़े उस्ताद, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े गुरु, तो इन सबको हमने बचपन से उनको आमने सामने बैठ के सुना, उनके आसपास घूमे, कई लोग हमारे घर भी आए, तो वो माहौल जो था बचपन का, वो सांस्कृतिक माहौल हमें बचपन से मिला।
1: हम यहाँ एक पल के लिए रुकना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी आपके बारे में बताएं तो लोग सोचते हैं कि आपका ताल्लुक तो कहीं आंध्रा से होना चाहिए, तो जयपुर से होते हुए लोगों को थोड़ा ताज्जुब होता है इसके बारे में।
0: बिल्कुल सही है, वो नाम से भी बिल्कुल है कि, और ये सही है कि हम लोग मूल रूप से आंध्रा के ही हैं, तेलंगाना के हैं, हमारे पिताजी माताजी सब वहीं के रहे, लेकिन मेरा ननिहाल नागपुर और मेरे पिताजी जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स में डिपार्टमेंट में काम करते थे उनकी पहली पोस्टिंग भी नागपुर में थी, तो मेरा जन्म भी नागपुर में हुआ, लेकिन आंध्रा में हमारा संपर्क लगातार हम लोग नहीं रहे कभी भी, माताजी पिताजी कभी रहे थे, हम लोग बचपन में कभी शादी ब्याह में गए, साल में एक आध बार घूमने गए, तो आंध्रा उससे पहले हमारे पिताजी माताजी वहां से निकल चुके थे नागपुर, और नागपुर के बाद एक पूरा डिपार्टमेंट पिताजी के सेक्शन का वो जयपुर शिफ्ट हुआ, तो पिताजी जयपुर शिफ्ट हुए, तो हम बहुत बचपन में ही, हम बच्चे लोग जो थे वो जयपुर शिफ्ट हो गए उनके साथ, और फिर मेरी सारी परवरिश, पढ़ाई लिखाई सब जयपुर हुई, तो ये है आंध्रा और जयपुर का।
1: बिल्कुल, ये मुझे लगा कि ये जरूर इस बात के बारे में बात कर लेनी चाहिए। तो गुलाबी नगरी एक तरह से आपके बनने का एक बुनियाद का शहर रहा है और आज भी बहुत सशक्त परंपरा रंगमंच और संगीत की जयपुर में रही है, तो आपके जमाने में वो कौन से कलाकार थे जो रंगमंच में बहुत जबरदस्त तरीके से सक्रिय थे? मुझे लगता है कि ओम शिवपुरी वाला दौर था।
0: ओम शिवपुरी उस वक्त एनएसजी जा चुके थे।
1: ओके,
0: हाँ, और हम उस वक्त छोटे थे और हम लोग रंगमंच में एक्टिव हुए हुए थे, देख ही रहे थे, सुन ही रहे थे और एक सीखने का प्रोसेस जारी था
1: जी।
0: तो जो हमारी बचपन की यादें हैं, मतलब शुरुआती दिनों की यादें हैं, उस वक्त ओम शिवपुरी और सुधा शिवपुरी का तुगलक,
1: क्या बात,
0: इब्राहिम अलकाजी का डायरेक्ट किया हुआ, वो क्लासिक प्ले था, क्लासिक प्ले, और इन दोनों का जो रोल था, मतलब ये मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये ओम शिवपुरी, उनको फिल्मों में वो जगह नहीं मिली, उनको वो क्रेडिट नहीं मिला, उनको काम नहीं मिला, जिसके हकदार थे वो दिलीप कुमार थे, वो
1: बिल्कुल
0: रंगमंच के दिलीप कुमार थे, वो क्रेज था उनका, और वो जो अदायगी, उनका प्रेजेंटेशन, उनकी डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ

0: तो बचपन से ये ओम शिवपुरी, सिद्धार्थ शिवपुरी, मोहन महर्षि, ये सब लोग और दिल्ली से प्लेस बराबर आते रहते थे. हम लोग देखते थे अंधायुग
1: जी,
0: ये सब देखे हमने, और एवं इंद्रजीत, ये सब नाटक जो बादल सरकार के सारे. तो रंगमंच की एक अच्छी खासी परंपरा जिसमें जयपुर के लोग तो करते ही थे, दिल्ली से भी बड़े बड़े थिएटर ग्रुप दिल्ली और कलकत्ता के लोग आते थे. थिएटर फेस्टिवल भी होते थे और क्लासिकल म्यूजिक के कंसर्ट्स भी होते थे.
1: बिल्कुल. आज जयरंगम जैसी चीजें चल रही हैं तो कैसा लगता है आपको?
0: बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. मैं गया हूँ उनके एक फेस्टिवल में, और जहाँ से मकरंद देशपांडे वगैरह हर साल जाते हैं वहाँ पे टीम लेकर के और प्ले लेके, तो वो एक तरह से थिएटर का माहौल जो है वो रिवाइव कर रहे हैं और अच्छी ऑडियंस भी आती है वहाँ पे और अच्छा चल रहा है मुझे.
1: जी, और बातें करेंगे आपके बचपन की, हम यहीं इसी वक्त में थोड़ा ठहरना चाहेंगे. मुझे लगता है कि जिस दौर की हम बात करें उस दौर की याद के नाम एक गाना होना चाहिए. हाय रे वो दिन क्यों ना आए.
0: हाँ,
1: अनुराधा.
0: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा
1: ये गाना,
0: मेरा पसंदीदा गाना है.
1: बिल्कुल.

0: हमने ये गाना सुना, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, शैलेंद्र का लिखा, पंडित रविशंकर का स्वरबद्ध किया ये गाना, अनुराधा फिल्म का, ऋषिकेश मुखर्जी की ये फिल्म थी। उस दौर में फिल्म म्यूजिक और फिल्मों से किस तरह का ताल्लुक था, जयपुर में फिल्में देखने की और टॉकीजों की भी एक बड़ी शानदार सी परंपरा रही है।
1: जयपुर में एक से एक थिएटर थे
0: जी,
1: और उस वक्त ये राज मंदिर, कभी नाम सुनाओ,
0: बिल्कुल
1: हाँ, तो राज मंदिर मेरे ख्याल से भारत का अकेला ऐसा थिएटर था जो बिल्कुल राज मंदिर और उसमें राज वाला वो भी था
0: जी,
1: शाही अंदाज उसका, तो वो लोग देखने आते थे। फिल्म तो बाद में, थिएटर पहले देखते
0: हाँ,
1: थे।
0: वो टूरिस्ट मैप पर था
1: वो थिएटर का अपना क्रेज था उसका
0: जी,
1: तो राज मंदिर, जैम, पोलिविक्ट्री, ये सब उस वक्त फिल्में भी मतलब आज कहीं नहीं इतने करोड़ उतने करोड़, मतलब 100 दिन चली, ये बड़ी बात होती है,
0: बिल्कुल
1: है ना, उसने 100 दिन पूरे किए। तो उस वक्त वो जमाना था जब जब हम लोग फिल्में देखते थे, तो ये सब बड़े बड़े थिएटर

0: थे और फिल्मों का तो खैर दौर ही अलग था, हम कभी कभी स्कूल से भी भाग के देखा करते थे ये सब भी होता था
1: जी, ये हुआ है लेकिन स्कूल से भाग के देखना भी हुआ
0: उपकार जैसी फिल्म हमने देखी थी
1: वाह,
0: और कई फिल्में थी और लंबी लंबी लाइनें
1: जी,
0: और आपको टिकट मिल जाए बड़ी बात ना, तो ये वो दौर देखा है हमने, थिएटर में जाकर फिल्म देखना और स्कूल से भाग के भी देखना और टिकट के लिए धक्का मुक्की होना, ये सब दौर देखा है। और फिल्म म्यूजिक का तो ये था कि सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही था, घर में रेडियो चल रहा है, विविध भारती चल रहा है, फिल्मी गाने कहीं लता जी हैं, कहीं आशा जी हैं, कहीं रफी जी हैं, कहीं मुकेश हैं, कहीं मन्ना डे हैं, तो ये सब चलता था। और हमारे क्योंकि संस्कार में म्यूजिक भी था और म्यूजिक ही था
1: जी,
0: मैं अपने घर में नहाने में सबसे ज्यादा टाइम लेता था।
1: अच्छा, क्योंकि गाना चलता था।
0: गाना चलता नहीं था
1: जी,
0: मैं गाता रहता था,
1: खुद गाते थे
0: तो वो घर वाले भी बार बार बोलते, तो मुझे फिल्मी गानों का शौक
1: जी,
0: गुनगुनाने का शौक बचपन से था। फिर वो संस्कार में ऐसा है कि फिर उस पर धुने भी बनाने लगा और बाकायदा परफॉर्म भी करने लगा, वही का अलग दौर। फिल्मी गानों का ये असर फिल्म म्यूजिक का मेरी जिंदगी बहुत पड़ा रहा।
1: क्या बात है, और तब से ही ये गायकी वाला मामला आपका?
0: हाँ, मेरे ख्याल गायकी तो हमारे परिवार में पिताजी बड़े भाई साहब आज भी गायक हैं, वो सिखाते भी हैं, तो संगीत और गायकी का एक वो जो अंग है वो हमारे संस्कार में है। लिखना पढ़ना साहित्य में मैं बाद में आया उस तरह से।
1: जी, रंगमंच वाली आपकी एक्टिविटीज में वो कौन से नाटक याद आते हैं जिनका यहाँ जिक्र हो जाए?
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया
1: जी,
0: वो एक लड़कपन का दौर था हमारा, मतलब बीए का दौर ही था, हम उम्र लोगों ने हमने एक टीम बनाई और मैंने उसका नाम दिया ग्रुप का विकल्प
1: जी,
0: वो अभी भी चल रहा है, वो हमारे जो दोस्त है वो चला रहा है, हरी नारायण उसका नाम है। तो हम चार लोगों ने मिलकर एक विकल्प नाम की संस्था बनाई और उसके साथ मैं लिखता था और डायरेक्ट करता था, और एक आध कभी कभी छोटा मोटा रोल जरूरत पड़ी तो कर लिया। तो उससे हमने एकांकी से शुरुआत की और उस वक्त मैं ज्यादातर राजनीतिक व्यंग और पॉलिटिकल सटायर और ह्यूमर यही मेरा विषय रहा, तो उस पर ज्यादा काम हुआ और उस तरह के नाटक मैंने लिखे भी। नाम से ही समझ जाओगे कि होशियार समाजवाद आ रहा है,
1: बाबा
0: नेता कुर्सी प्रसाद सिंह,
1: क्या बात है।
0: और एक नाटक जिसको बहुत ज्यादा जिसके हमने शोज किए, भूमिका, जिसको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी का ड्रामा कॉम्पिटिशन में बेस्ट ड्रामा का अवार्ड भी मिला। और एक नाटक मराठी, क्योंकि हम जिस कॉलोनी में रहते थे तो वो बहुवर्षीय कॉलोनी थी, मतलब एक छोटा भारत था वो, उसमें गुजराती, मराठी, सिंधी, पंजाबी, सिख, मुस्लिम, सब, मतलब कोई भेदभाव ही नहीं था, मतलब आज इस घर में घुस गए, कल उस घर में घुस गए, सब मिलजुल के खेल रहे हैं, होली हो, ईद हो और गणेशोत्सव हो, तो गणेशोत्सव यहाँ के बाद कई लोगों को पता लगता है गणेशोत्सव क्या है, ये हमने जयपुर में देख चुके हैं,
1: वाह वाह।
0: तो उनकी एक्टिविटीज में शामिल होना, सब कुछ करना, तो मराठी लोगों के साथ उठना बैठना बचपन से रहा, तो मराठी नाटकों का मैंने अनुवाद भी किया,
1: गजब।
0: तो एक नाटक था शाम फड़के का, कॉमेडी, काका की शाचा, जिस पर मराठी में फिल्म भी बनी, तो उसका मैंने कौआ चले हंस की चाल,
1: क्या बात है,
0: इस नाम से किया। और वो जयपुर का पहला नाटक था जो टिकटेड हाउसफुल रहा, रविंद्र मंच पर टिकटेड हाउसफुल, वो पहला नाटक था जो विकल्प ने किया, हमने किया और खूब प्रसन्न किया और उसके बहुत शोज हुए।
1: हम जब असरानी साहब के बारे में सुनते हैं तो वो भी काफी रंगमंच पर सक्रिय थे और जयपुर में थे, जयपुर की एक बड़ी शख्सियत रहे, कभी उनसे आमना सामना हुआ उस दौरान?
0: नहीं, मेरा ये रहा कि वो असरानी साहब से बहुत अरसे बाद एक किसी फंक्शन में यहाँ पे मिलना हुआ।
1: अच्छा,
0: लेकिन उस दौरान में नहीं, वो जयपुर से जा चुके थे
1: उस दौर में जब आप,
0: तो वो तो हमसे काफी से, तो लेकिन उनकी एमआर रोड से पांच बत्ती के पास में ही सब बताते थे कि ये असरानी साहब के भाई की दुकान है
1: जी,
0: वो उनकी एक कपड़ों की दुकान थी,
1: बिल्कुल।
0: फिर हमारे जो पिंचू कपूर, आपने नाम सुना होगा,
1: जी जी बिल्कुल,
0: पिंचू कपूर, ओम शिवपुरी, ये सब ये हमारे सीनियर लोग, मतलब जो निकल चुके थे हमारे जमाने से पहले ही, तो लेकिन इनको सुन सुन के, मतलब ये हमारे लिए वो स्टार थे कि जयपुर के ये लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया, बड़े लोग थे।
1: क्या प्यारी बात है। अच्छा, जब आप आकाशवाणी से जुड़े और युववाणी करने लगे उस समय भी तो जयपुर आकाशवाणी जो है वो एक बहुत ही बुलंद संगठन था और बहुत बड़े बड़े लोग आकाशवाणी से जुड़े थे, किन हस्तियों के सानिध्य में सीखने को मिला आपको?
0: बहुत बड़े नाम थे और बहुत जयपुर, मैंने कहा ना, जब नाटक में तो नंबर 1 हुआ करता था, हवा महल में मैक्सिमम उसके प्लेस हुआ करते थे, और उसके अलावा वहां पे जो आधा आधा घंटे के या एक एक घंटे के नाटक हुआ करते थे वो कमाल थे। मतलब उसमें नंदलाल शर्मा आपके नाम सुना होगा,
1: बिल्कुल,
0: गणपत लाल डांगी,
1: हाँ,
0: इनका हवा महल में
1: आज भी हवा महल में उनके नाटक ब्रॉडकास्ट होते हैं,
0: रंजना चौधरी, तो ये एक से एक नाम थे और एक से एक आर्टिस्ट थे।

0: और जिनके प्लेज लोग बहुत पसंद करते और इंतजार करते थे ये।
1: जी, और आकाशवाणी जयपुर जो है वो जयपुर अजमेर था तब भी।
0: हाँ, क्योंकि अजमेर इंडिपेंडेंट स्टेशन नहीं था
1: जी,
0: वो सिर्फ रिले सेंटर था, तो जयपुर अजमेर ही बोला जाता था उसको। अच्छा। और आज भी शायद वही होगा
1: जी,
0: अजमेर सिर्फ रिले सेंटर है, वहाँ पे कोई रिकॉर्डिंग या उस तरह का इंडिपेंडेंट ब्रॉडकास्ट नहीं होता है, अजमेर को लिंक किया हुआ है यह
1: जी। तो आकाशवाणी में नौकरी का रास्ता किस तरह से खुला?
0: हाँ, मैं उस वक्त एक और पहलू भी था मेरा कि मैं एमए मैंने किया ही किया था
1: जी,
0: और मैं उस वक्त ये राजस्थान पत्रिका
1: बहुत ही मशहूर
0: हिंदुस्तान का, उस वक्त राजस्थान का नंबर वन अखबार था हिंदी का, और उसका एक संडे एडिशन शुरू हुआ था
1: जी,
0: वो राजस्थान में पहली बार हुआ था, पता नहीं दिल्ली और जगह होगा, उसका नाम ही इतवारी पत्रिका था, हर इतवार को आता था, उसका नाम रखा था इतवारी पत्रिका। कर्पूर चंद कुलेश साहब राजस्थान पत्रिका के मालिक भी थे और बड़े पत्रकार थे, तो उन्होंने शुरू किया था, उसमें उन्होंने श्री गोपाल पुरोहित उसके संपादक थे और मैं उनके साथ सहायक संपादक के तौर पर लगा। 3 साल मैंने वहां काम किया और वो हर इतवार उसमें कॉलम भी लिखता था, इंटरव्यू भी करता था, ये सब होता रहा। उसी दौरान ये आकाशवाणी की ये वैकेंसी निकली थी यूपीएससी की, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया और संयोग से सेलेक्ट हुआ, यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, सब हो गया और पहली पोस्टिंग मेरी आई जलंधर।
1: अच्छा,
0: ये 1980 की बात है।
1: क्या बात है,
0: 19 नवंबर, हाँ 1980 में, तो पहली पोस्टिंग मेरी जलंधर हुई, मैंने वहां ज्वाइन किया, 1 साल वहां काम किया।
1: तो वहां तब पता चला था कि ये वो स्टेशन है जहाँ जगजीत सिंह गाया करते थे।
0: जगजीत सिंह, सुदर्शन फाकीर
1: जी,
0: इन लोगों के नाम से वो
1: ऐतिहासिक स्टेशन है जलंधर,
0: और वहाँ पे पंजाबी के बड़े बड़े लोग थे, मतलब
1: बिल्कुल
0: पंजाबी राइटर्स, सोहन सिंह मीशा
1: जी,
0: और मतलब ऐसे नाम जो बाद में साहित्य अकेडमी में अवार्ड जिनको मिला, सुरजीत पात्र, ये सब लोग वहाँ पे मतलब एक्टिव लोग थे, पार्टिसिपेंट के तौर पर आते थे, सुरजीत पात्र लुधियाना से, सब कुछ। तो जलंधर भी उस वक्त पंजाब का जयपुर था एक तरह से,
1: बिल्कुल
0: पंजाब का जयपुर था वो, वहाँ बड़े अच्छे नाटक, बड़े अच्छे आर्टिस्ट और बहुत एक्टिव शहर था
1: जी।
0: तो मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे जो सीनियर थे वो सारे पंजाबी लोग थे, मतलब हिंदी वाला मैं अकेला था वहाँ पे, हिंदी का प्रोग्राम मैं ही संभालता था वहाँ पे, हिंदी का पैक्स था वहाँ पे मैं, लेकिन एक से एक प्रोग्राम, और पंजाबी ऐसी भाषा थी कि जो समझने में उतनी मुश्किल नहीं थी, मतलब
1: जी।
0: तो मेरा अच्छा वक्त गुजरा जी।
1: कितने वक्त तक आप जलंधर में रहे?
0: 1 साल
1: जी। और किन हस्तियों से आपका बहुत करीबी ताल्लुक रहा लिटरेचर की?
0: मैंने बताया ना, सोहन सिंह मिश्रा
1: जी,
0: और फिर उर्दू के भी कई लोग थे वहाँ पे
1: जी,
0: जो सुरजीत पात्र, वो उस जमाने में उनसे मिलना हो गया था, जो बाद में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए, सब मिश्रा साहब को मिला।
1: तब तक आपका लिखना शुरू हो चुका था?
0: हाँ, लिखना तो मेरे जयपुर में शुरू हो चुका था
1: जी,
0: लेकिन मैं उस वक्त मैं गीत लिखता था, शुरुआत मेरी मंच से हुई, गीत लिखता भी था, छपते भी थे सब कुछ, और एक गीतकार के तौर पर मैं राजस्थान में जगह जगह कवि सम्मेलनों में भी जाया करता था। उदयपुर में जब कवि सम्मेलन हुआ तो पहला जो मेरा बड़ा ब्रेक था या पहचान या आत्मविश्वास जिसे मिला, तो नीरज जी का तो बोलबाला था उस वक्त, गीतों के राजकुमार,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उनके नाम से पूरा क्राउड इकट्ठा होता था, हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे,
1: सुबह तो, तक लोग सुनते हाँ, थे और सबसे तो, लास्ट में उन्हें हाँ, पढ़वाया जाता
0: था। और मेरा वो शुरुआती दौर था
1: जी,
0: तो नीरज जी थे वहां पे, वो मुख्य कवि तो थे ही थे, तो मैंने जब वो गीत पढ़ा अपना, तो ये नीरज जी ने आशीर्वाद देने का उनका तरीका था, उन्होंने बहुत प्यार दिया पहचान, और अपने गले की माला मेरे गले में जब मैं पढ़ रहा हूँ तभी आके डाल दी।
1: अरे,
0: तो ये एक आशीर्वाद था जो मुझे
1: मिला। बात है, क्या वो गीत याद है आपको?
0: हाँ, जो वो मेरे काफी पढ़ाई इधर उधर
1: जी,
0: तरन्नुम में सुना
1: जरूर सर, जरूर, बिल्कुल स्वागत।

0: क्या बात है, क्या बात है। जाहिर है कि इस रचना से नीरज जी की प्रशंसा तो मिलनी ही थी और ये आपके लिए बहुत यादगार लम्हा रहा होगा।
1: वो बिल्कुल, और एकदम शुरुआती दौर में इतने बड़े हस्ती का आशीर्वाद मिलना और प्रोत्साहन मिलना, तो वो एकदम यादगार और बहुत आत्मविश्वास देने वाला लम्हा था, एक सफर को आगे बढ़ाने वाला होता।
0: जब आप घर लौटे इस कवि सम्मेलन के बाद, तो क्या पिताजी की कैफियत थी, उन्हें क्या बताया?
1: वो बहुत खुश हुए, लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे पिताजी, मैंने कहा वो गायक थे और संस्था चलाते सब कुछ, लेकिन एक अलग तरह के पिता थे वो, बिल्कुल बहुत कम बोलना, मतलब उनसे हमारा संवाद जो है ना
0: मिनिमम।
1: हमारे नाटक भी देखते थे, आते थे देखते थे, लोग खुश हो रहे तालियां बजा रहे हैं या सब कुछ, या कभी सल्लम ने भी आते थे कभी, तो वो आके देखा और चले आए घर पे। अखबार में भी कॉलम लिखता था, हर संडे आता था, पढ़ते थे सब कुछ था, लेकिन वो खुद अपनी तरफ से कभी, वो दौर था तो हो सकता है कि आज तो अगर हम अपने बच्चों से दोस्त की तरह से बात करते हैं, पिताजी का एक डिस्टेंस हमेशा रखते थे।
0: तो आपके जहन में हमेशा ये सवाल रहता होगा कि अच्छा लगा है कि नहीं, क्या चल रहा है मन में,
1: बस वो उनको सूचना जरूर हो। और हमारे संवाद माँ से होता था
0: जी,
1: उनसे खूब मतलब हंसी मजाक बोलना चलना साहब, नाराजगी या गुस्सा या सब कुछ पिताजी से घर में जो था, लेकिन वो खुश तो होते थे, बहुत खुश होते थे, लेकिन वो डायरेक्ट इस तरह से बोलते नहीं थे।
0: वो दौर भी ऐसा था कि पिताओं से संवाद बहुत कम हुआ करता था। माँ की स्मृतियां हमारे साथ बांटी है कि उनसे क्या कुछ आपने सीखा है, आपकी शख्सियत में उनका क्या योगदान है और आपकी कामयाबी तो उन्हें कितना खुशी दी।
1: बिल्कुल, ये पारिवारिक रूप से अगर देखें तो पिता ने माहौल दिया
0: जी,
1: पिता ने माहौल दिया, मतलब अगर मैं कलाकार बना हूं या कलाकार कला के क्षेत्र में हूं तो वो पिता के संस्कार है, पिता ने जो माहौल दिया बचपन से। अगर आप देखें तो कुमार गंधर, भीमसेन जोशी, रविशंकर, बुद्धदेव मुखर्जी, राजन साजन मिश्र, अमजद अली खान, कोई नाम लीजिए, कोई नाम लीजिए, जिनको हमने बचपन में आगे
0: बैठे सामने देखा,
1: आमने सामने देखा, उनके आसपास घूमे बैठे, गिरिजा देवी, बेगम अख्तर,
0: बाप रे
1: कोई नाम लीजिए, तो वो सब हमने देखा है और उनके साथ उठे बैठे हैं, कई लोग हमारे घर आए है ना, तो ये माहौल पिताजी ने दिया, उसके बगैर हमारे संभव नहीं था कि हम उस दुनिया को देख सकते, इन बड़े लोगों को देख सकते, इन हस्तियों, तो वो उनको सुन सुन के भी संस्कार हुए। संगीत जो है वो इस तरह से भी संस्कार में आता है, एक तो बाकायदा आप गुरु से सीखते हैं और एक सुन के भी सीखते हैं, तो वो हमने उस तरह से सीखा। तो पिताजी ने माहौल दिया, संस्कार दिया, माँ ने जो है वो एक पूरा प्रोटेक्शन कहना चाहिए। मैं बात करूं तो हमारी कॉलोनी में जो मैंने कहा ना, वो एक मिनी भारत था वो
0: जी जी,
1: लेकिन मेरा बचपन बिल्कुल विपरीत था। मैं अपनी कॉलोनी के चंद शैतान बच्चों में से एक था।
0: ये तो नया खुलासा है हमारे लिए,
1: मतलब खेलना कूदना ही तो सही है ही, सभी बच्चे करते सब कुछ, लेकिन छेड़ने की आदत जो है ना, किसी के साथ भी मजाक कर लेना, किसी को तंग करना या मस्ती करना
0: जी,
1: तो कहीं ना कहीं एक या दूसरे दिन में कोई
0: शिकायत आती थी,
1: शिकायत के पास आती कि आज इसने ये क्या, और मेरा बचपन का नाम छोटू था।
0: अच्छा, क्योंकि आप छोटे थे इसलिए।
1: हाँ, मेरे बड़े भाई साहब थे, मैं नंबर दो था
0: जी,
1: तो पहले नाम ऐसे ही रखे जाते घर में,
0: बिल्कुल
1: बड़े भाई साहब शाम और मेरा नाम छोटू
0: जी,
1: तो वो छोटू की शिकायत जो है
0: रोज आ रही है,
1: मतलब हर दूसरे दिन या हर दिन जो है वो, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, ये सब चलता रहता था। तो वो माँ थी
0: प्रोटेक्शन
1: संभालती थी, और कभी कभी वो पिता तक पहुंच जाती थी बात, और पिताजी जिस ढंग से पेश आते थे वो, तो वो मैं
0: उसका जिक्र ना ही करें
1: तो ये एक अच्छा बचपन बीता। और माँ ने जो है वो, क्योंकि पिताजी का यही था कि वो दिन में नौकरी करना, आना, फ्रेश होना, चाय पीना और कपड़े वपड़े बदल के सीधा रविंद्र मंच।
0: अरे तो
1: घर में वो पारिवारिक के पिता नहीं थे वो,
0: हाँ, वो अपनी दुनिया उनकी,
1: वो अपनी दुनिया थी उनके, बस आए सुबह ऑफिस चले गए, शाम को आए और फ्रेश हुए, चाय

0: भाई पी और फिर सीधा रविंद्र बच्चन, तो वहां से लौटे खाना खाए सो गए। हाँ। तो बच्चों से भी उनका उस तरह संवाद नहीं होता था, तो वो माँ थी जिनसे मैंने कहा ना कि वो तो परिवार में पारिवारिक माहौल का जो और पारिवारिक मजबूती जो है, खुलापन भी छूट भी, वो सब माँ से मिली है।
1: क्या बात है। और क्या आपकी रचनाओं में माँ झलकती है?
0: उस तरह से तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं जैसा बचपन हमने गुजरा तो वो एक लोअर मिडिल क्लास का जो मिडिल क्लास मतलब सरकारी कर्मचारी जो है उनकी कॉलोनी थी, तो हम उसी में तो, लेकिन बहुत खुशहाल मतलब मैं अपने आपको अगर आप देखूं तो हो सकता है आर्थिक रूप से हम लोग बहुत लोअर मिडिल क्लास ही कहना चाहिए उस वक्त, लेकिन एक बहुत ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध खुशहाल परिवार थे और मुझे अपने बचपन की बहुत अच्छी यादें हैं, मैं खुशहाल हूँ जी।
1: क्या बात है, इतनी सुंदर बातें हो रही हैं और इतनी जज्बाती बातें, तो मुझे लगता है कि यहाँ आशीर्वाद फिल्म का गाना सुनते हैं। हाँ, एकता बचपन क्योंकि ये जो बचपन के जो दिन है उनके नाम ये गाना।
0: बिल्कुल जी।

0: बचपन की बातें हमने की रेड्डी साहब, और ये वो बातें हैं जो इसलिए जरूरी थी कि वो कौन से तत्व थे जिन्होंने आपको बनाया। लेखन की दुनिया में उस समय में जब आप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, तो आपके आदर्श कौन थे और क्या कोई था जो आपकी रचनाओं को सुधारे या जो आपको मार्गदर्शन दे वहां पर जयपुर में?
1: नहीं, जयपुर में जैसे मैंने कहा कि मैं गीत से शुरू हुआ था, तो मेरे दो बड़े लोग थे जो मेरे काव्य गुरु भी मैं निजी मान सकता था और जो मुझे मार्गदर्शन भी देते थे, आशीर्वाद भी देते थे। एक तो तारा प्रकाश जोशी
0: जी,
1: और एक हरिराम आचार्य। हरिराम आचार्य ने फिल्मों में भी लिखा
0: जी जी, जी।
1: मेहंदी रंग लाई,
0: डांसिंग जी के साथ उनके गाने हैं बहुत सारी फिल्मों।
1: और तारा प्रकाश जोशी जी आईएएस ऑफिसर थे।
0: अच्छा।
1: लेकिन गीत में उनका कोई जवाब नहीं था, मतलब इतने बड़े गीतकार थे वो राजस्थान के। मतलब एक पंक्ति यूनुस में बताऊंगा उनकी, मेरे गुरु तुम्हें देखते से, मेरा वेतन ऐसे रानी, मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी।
0: ओ हो हो हो, क्या अद्भुत है। हा? क्या अद्भुत है,
1: जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: क्या बात है।
1: ऐसी पंक्ति मतलब मैंने नहीं सुनी।
0: क्या बात है, क्या बात,
1: नहीं सुनी। तो ऐसे लोग मेरे आदर्श थे, मेरे गुरु थे, जिनके
0: साथ बैठता था। गजब, ये जीवन में कभी भूलेगा नहीं, इतनी अद्भुत है।
1: मेरा वेतन ऐसे रानी जैसे गर्म तवे पर पानी,
0: तुरंत खत्म। वाह वाह।
1: तो और हरिराम आचार्य जी के तो
0: बिल्कुल मेरी भी मुलाकात रही है।
1: तो ये लोग थे जिनसे सीखा। लेकिन मेरे साथ अच्छी बात रही आप संस्कारों में, जिसने मुझे आगे थोड़ा गंभीर लेखन की तरफ रखा, सिर्फ मंची ही नहीं बनाया, वो ये कि मैं बाकी विधाएं भी पढ़ता था। मेरे निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये सब मतलब फिक्शन भी, उपन्यास भी, आलोचना भी, नामवर सिंह जी भी। मैं हिंदी में तो एमए किया था, तो हिंदी साहित्य से बराबर जुड़ा हो। और फिर बचपन से ही वो हमारे कॉलोनी में, हमारे अखबार परिवार में सिर्फ अखबार था, मतलब किताबें विताबों को वो नहीं था उतना। तो एक कॉलोनी के आगे डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी हुआ करती थी,
0: उसमें
1: सारे अखबार आते थे। मतलब अखबार तो थे ही थे,
0: पत्रिकाएं
1: भी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी। तो ये मैं इन सबको चार्ट जाया करता था वहां जाकर के, घंटों घंटों वही बैठता था।

0: बाकी लोग जो आके चले गए और मैं अपने अभी इसको पढ़ रहा हूँ फिर उसको पढ़ रहा हूँ फिर उसको, मतलब तीन चार टेबल पे मैं मेरे दो तीन घंटे निकल जाते थे
1: जी,
0: तो बचपन से वो पढ़ने का भी शौक था, संगीत का भी शौक था, तो ये सब चीजें जो है संस्कार में। और फिर जैसा होता है कि ये तो मेरे आदर्श थे ही और बड़े थे, बाकी फिर उर्दू शायरी की तरफ यूं हुआ कि गीत करते करते फिर हम उम्र लोगों के साथ उठना बैठना है ना, सुनना सुनाना, और फिर मुशायरे भी वहाँ हुआ करते थे जयपुर में, तो बड़े बड़े मुशायरों को सुनता, तो हम उम्र लोगों की टोली में यंग शायर भी थे जिनके साथ उठते बैठते थे, तो जब मुशायरे सुने और उसमें जो शेर का जो दो मिसरों में दो पंक्तियों में जो
1: सारी बात
0: कह देने का जो जादू वो मुशायरों में देखा, तो फिर वो उस विधा ने मुझे आकर्षित किया, मैं उस तरफ झुका और फिर गजलें कहने लगा। अमरुल लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब।

0: गजलें कहने लगा, अमरूद लोगों को हमारे जो साथ में थे अरशद अब्दुल हबीब, इनाम शरर, मजार साहब, तो ये सब लोग सुनते थे, वो सराहते थे और कि ये अच्छा है, अच्छा है। और फिर मैंने बाकायदा गजल के लिए उर्दू स्क्रिप्ट सीखी, मौलवी साहब आते थे मुझे पढ़ाते थे सिखाते थे, और फिर मैं बाकायदा गीत से गजल में शामिल हो गया। गजल को मैंने अपनाया और शायद गजल ने मुझे भी अपना लिया।
1: क्या प्यारी बात है। तो शुरुआती गजलों में से कोई एक हमें सुनाइए।
0: मेरा सौभाग्य रहा यूनुस की ये जो गजल पंकज दास साहब ने गाई और पूरे दुनिया में पहुंची,
1: जो आपकी पहचान के साथ की हुई है,
0: वो जयपुर की गजल है।
1: वाह,
0: वो शुरुआत
1: कमाल।
0: हाँ,
1: ये मुझे नहीं पता था। और ये मेरे लिए हैरत की बात है कि वो आपकी शुरुआती गजल है।
0: नहीं, यूनुस इसलिए आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए वो, कि गीत से मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी
1: जी।
0: गजल की विधा को मैंने
1: अपने शिफ्ट किया है।
0: हाँ, गजल में शिफ्ट किया और उसको अपना लिया। मैंने कहा ना, हम उम्र लोगों के साथ उठते बैठते सुनते सुनाते उनसे आश्वस्ति मिली। और एक हमारे बुजुर्ग होते थे, कहना चाहिए टोंक में रहते थे वो, तो वो भी आया करते थे और शाम को बैठे और एक दूसरे को सुनना सुनाना। तो उन्होंने जब ये पहली बार सुनी गजल तो वो भी चौंक गए, मतलब क्योंकि ट्रेडिशनल ढंग की गजल नहीं है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना?
1: बिल्कुल।
0: तो बोले ये, और ये जो जिसको कि गजल की जबान में या उर्दू में टेक्निकली रदीफ कहते हैं, है ना, जो गजल के पंक्ति के आखिर में आती है और वो रिपीट होती है हर शेर में, से डरता है। अब ये रदीफ जो है वो अनसुनी सी थी, मतलब
1: और कभी इससे पहले मैंने सुना नहीं है।
0: तो खुद
1: मुश्किल भी है।
0: हाँ,
1: मुश्किल भी है,
0: मुश्किल भी है। तो उसको निभा ले जाना और उसके तो वो भी हैरान हुए कि ये यार तुम ये रदीफ ले आए और उसको तुमने शेर भी कह दिए और अच्छे शेर कह दिए सब कुछ है। और फिर वो शेर उसने तो मुझे मतलब सबसे ज्यादा प्यार दिया, पहचान दी। तो वो गजल मैं अगर कहें तो
1: जरूर सर, अरे स्वागत है बिल्कुल।
0: जो पंकज जी ने गाई उसकी धुन अलग है,
1: आपकी धुन।
0: हाँ, जो मैं सुनाता हूँ और जिसने मुझे शहरों में पहचान दी वो ये गजल।
1: स्वागत है।

0: यूनुस इसकी एक शेर और सुनाता हूँ।
1: जरूर सर।
0: ये बच्चे वाला जो शेर है उससे सबसे ज्यादा प्यार मिला
1: जी।
0: ये शेर भी उतना ही सच्चा है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हर जिंदगी में हर इंसान की कभी न कभी वो पल आता है कि वो ऊपर वाले से पनाह मांगता है।
1: बिल्कुल।
0: बहुत हो गया, अब नहीं रहा, अब नहीं, बहुत हो गया, है ना, ये आता है
1: सबके साथ, सबके साथ।
0: अरे पति खरा पति भी खुदकुशी करते हैं, उनके पास क्या नहीं होता
1: जी।
0: लेकिन वो जिंदगी ऐसे मोड़ पे ले आते हैं कि वो बस बहुत हो गया। लेकिन जब ऐसा पल आता है
1: तो आप कहते हैं अजब ये जिंदगी की,
0: तो फिर हमारे क्या रिएक्शन होते हैं।
1: वाह।
0: और कोरोना में तो हमने देखा ही कि कैसे जान बचाते फिर रहते हम लोग। तो ये शेर है जो सबका सच है।
1: वाह।
0: अमीर हो गरीब सब

0: क्या बात है सर, हम बहुत खुश नसीब है कि विविध भारती के स्टूडियो में आप मौजूद हैं और आपसे ये सुन रहे हैं।
1: मेरी खुशनसीबी, थैंक यू।
0: ये अद्भुत गजल है और हजारों बार तो हमने पंकज जी की आवाज में सुनी होगी, पर जब आपके साथ काम करते थे तब तो हिम्मत नहीं होती थी ये कहने की कि आपसे ये गजल सुननी है। आज ये मौका आया है, बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अनमोल पल है। रेडियो की तरफ वापस लौटते हैं और जलंधर में एक साल बिताने के बाद आप कहाँ गए?
1: उसके बाद मैं अपने होम टाउन जयपुर।
0: जी जी,
1: मेरे साथ ये भी रहा और अभी भी होता है ये कि मैं शुरू से ही होम सिक रहा, मतलब
0: जी जी बिल्कुल,
1: जलंधर मुझे कोई कमी नहीं थी। हाँ। बहुत अच्छा शहर था, बहुत प्यारे लोग थे,
0: अच्छा खान पान था,
1: अच्छा मौसम था
0: जी,
1: सब कुछ अच्छा था, बहुत अच्छा था, केंद्र भी बहुत अच्छा था, लोग भी अच्छे थे, मैं खुश था, सब भी था, लेकिन एक होम सिकनेस होती कि वो मुझे अपने शहर जाना है वापिस, है ना। तो मतलब मैंने रिक्वेस्ट की और सुन ली गई, मान ली गई और मैं वापिस अपने शहर में आ गया जयपुर। मैं वहाँ फिर वापिस शायद 5 साल जयपुर रहा।
0: तो ये बहुत ही अनमोल पल रहे होंगे कि जिस स्टेशन में आप बतौर कैजुअल आया करते थे, युवाणी करते थे, वहाँ आपकी वापसी होती है और अब आप प्रोड्यूसर बनते हैं।
1: और ये भी कमाल थी कि जिस केंद्र में मैं कैजुअल के लिए ऑडिशन देने गया हूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वही मैं एक प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव तौर पर एंटर हो रहा हूँ और ज्वाइनिंग के लिए सब कुछ है। तो क्या टीम थी वो वहाँ पे,
0: बिल्कुल
1: क्रीम, बड़े लोग, अच्छे लोग, तो उनके साथ मिलना जुलना हुआ और वो एक अलग अनुभव था। और मुझे जयपुर मेरा क्रिएटिव जैसा विविध भारती मेरा बाद में हुआ
0: जी जी,
1: इसमें मैंने प्रोडक्शन कम किए लेकिन प्रोग्राम में उनकी परिकल्पना, उनको संवारना या उनको इम्प्लीमेंट करना, ये सब रहा। मेरा क्रिएटिव जो बेस्ट था
0: जी
1: वो जयपुर में था
0: जी जी जी,
1: नाटक लिखना, कंपोज करना,
0: बिल्कुल
1: प्रोड्यूस करना, इंटरव्यूज करना, वो सब जयपुर हुआ। मतलब वो मेरी जो पूरी जलंधर में मुझे आकाशवाणी की जानकारी सब हुई, सब कुछ एक लिमिटेड काम था, हिंदी का कार्यक्रम अधिकारी था, हिंदी का लिमिटेड उसमें सब कुछ था, जयपुर मेरे लिए पूरा खुला मंच था
0: बिल्कुल। और फिर आप उस शहर में पले बड़े थे,
1: पला बड़ा
0: सब
1: था,
0: जानते थे,
1: फिर उसने मुझे, मैंने कहा ना कि मेरे क्रिएटिविटी के सारे पहलू उसमें खुले
0: जी,
1: मेरा लेखक भी खुला, मेरा संगीतकार भी खुला, मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव भी तो तब था ही था, सब नाटक लिखे, निर्देशित किए, संगीतबद्ध किए, अब म्यूजिकल शो पूरा उसमें हुआ, अभी तो नहीं हो रहा उस वक्त जयपुर में, और जयपुर के पूरे आकाशवाणी का एक दौर था कि वो आमंत्रित श्रोताओं के सामने कॉन्सर्ट होते थे
0: जी,
1: तो उसके लिए भी मतलब तैयार करना, उसके लिए प्लेज लिखना, तैयार करना, गाने लिखना, ये सब जयपुर में हुआ।
0: वाह क्या बात है। तो उस दौर में कौन से नाटक आपने रेडियो के लिए बनाए, उनको कुछ याद कीजिए थोड़ा सा।
1: उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, राजेंद्र यादव की कहानी थी टूटना
0: जी जी,
1: उसका मैंने रेडियो नाटक रूपांतर किया।
0: वाह।
1: और उसका प्ले किया और बहुत पसंद किया गया लोगों द्वारा। और ये तो हुआ टूटना, एक ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी थी अंधा सूरज,
0: क्या बात है,
1: उसका किया।
0: वाह।
1: और इसके अलावा गीत गोविंद,
0: अरे गजब,
1: ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात उपलब्धि थी। यूनुस उसके आश्चर्य की बात यह थी कि गीत गोविंद का आपने ड्रामेटिक नाट्य रूपांतर किया, वो नाट्य रूपांतर तो हिंदी में हुआ, मतलब उसका कैरेक्टर जो राधा कृष्ण सखी ये सब कुछ है, गीत गोविंद मूल रूप से संस्कृत में है,
0: बिल्कुल
1: जयदेव जी का
0: जी।
1: हाँ, उसके जो गाने हैं, उसके जो गीत हैं, वो मूल संस्कृत में, मूल संस्कृत में मैंने कंपोज किया, रिकॉर्ड किए, गाए
0: संस्कृत में,
1: संस्कृत में,
0: अरे बाप,
1: तो गाने संस्कृत में है
0: जी,
1: और उनके इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको एक तरह से समझाने के लिए मेरे कैरेक्टराइजेशन किया कि लोग आम लोग समझ कि इस गाने का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कौन कैरेक्टर है, ये राधा का दुख है, ये कृष्ण की पुकार है,
0: हाँ।
1: है ये
0: तो बहुत मुश्किल काम है,
1: हम बहुत मुश्किल, तो वो एक मेरे लिए वो मील का पत्थर जैसा हुआ और लोगों को भी हैरानी हुई कि लोगों ने उसका आनंद भी लिया और समझे भी, मतलब गीत गोविंद को ओरिजिनल, क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि उससे पहले गीत गोविंद रघुनाथ पाणिग्रही उड़ीसा में
0: जी जी
1: वो करते रहे और बहुत मशहूर है, बहुत पॉपुलर है, सब कुछ है, लोग गायक के रूप में वो पॉपुलर है वो वहां पे, लेकिन मैंने उनका सुना है और वो तो

0: कमाल है मतलब वो भी, लेकिन मुझे ये लगा कि उनमें वो लोक तत्व ज्यादा है, मतलब कि बंगाल या उड़िया का उनके कंपोजिशंस में भी, उनके गाने में भी. तो मैंने उसको बाकायदा एक, क्योंकि फिल्म का तो था ही था, तो सुगम संगीत के तौर पर मैंने उसको कंपोज किया और गाने वाले भी बहुत अच्छे थे, तो उस तरह से वो एक लोगों को लगे कि ये गाना है.
1: क्या बात है, ये तो बहुत मुश्किल है.
0: तो वो गाने के तौर पर वो हुआ और लोगों ने सुना और पसंद किया थे.
1: वाह वाह वाह. तो ये पूरा जयपुर का दौर था.
0: अभिज्ञान शाकुंतल
1: जी
0: कालिदास का, तो वो मैंने रेडियो एडॉप्टेशन किया. वो किया, तो ये दो बड़ी थे कहना चाहिए.
1: क्या शानदार बातें हैं, ये तो बहुत मुश्किल वाले काम आपने वहाँ किए. इसके अलावा वहाँ विकल्प भी चलता रहा आपका? हाँ, नाट्य समूह
0: नहीं विकल्प, ये दौर मेरा पहला था, मतलब रेडियो आने से पहले का था.
1: हाँ,
0: विकल्प अपने रंग से चलता रहा, वो बीच बीच हम लोग करते भी रहे, लेकिन वो सक्रियता नहीं रही
1: जी, क्योंकि हाँ, रेडियो में आप पूरी तरह से अपने हाँ, अपने अपने आप को झोंक दिया था.
0: मतलब बीच बीच में हम करते रहे नाटक, लेकिन वो जो 10 साल लगातार जो किया वो रेडियो में आने से पहले किया
1: जी, और बाद में फिर आप पूरी तरह से रेडियो में व्यस्त हो गए.
0: हाँ, उसके बाद भी एक नाटक जो आला अफसर मुद्रा राक्षस का
1: जी जी,
0: जो गोगोल का उन्होंने
1: इंस्पेक्टर जनरल
0: नौटंकी शैली में उन्होंने किया, तो उसका भी मैंने कंपोजिशन भी किया, डायरेक्शन भी किया, और वो भी किया.
1: तो संगीत जो है वो एक तो घर से मिला था, लेकिन ये एक लगातार चलता रहा कि कंपोजिशंस भी करनी है आपको लगातार.
0: हाँ, इसमें करनी है वाला बात नहीं था,
1: जरूरत
0: से होता था
1: जी जी,
0: अंदर से होता था कि ये मैं करूं. मतलब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि,
1: बिल्कुल
0: हाँ, कि कोई और भी कर सकता था, लेकिन अंदर से कहीं होता था कि ये
1: मैं करता
0: हूं. हाँ, इसको जैसे लिखने का जो है वो अंदर से ही होता है.
1: बिल्कुल.
0: आप तो उसी तरह से वो, चाहे वो गीत गोविंद हो, जयपुर में उस वक्त 5 बड़े संगीतकार थे
1: जी,
0: जो स्टाफ में थे, म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर भी एक पोस्ट होती है.
1: बिल्कुल होती है
0: ना, जानते होंगे. और विविध भारती में नहीं है वो, लेकिन मेन सेंटर्स पे बॉम्बे में हो या किसी भी सेंटर में कंपोजर की भी पोस्ट होती है
1: जी जी.
0: उस वक्त 4 मौजूद थे और वो 4 लोग भी परेशान होते थे कि हम हैं और ये आदमी कंपोज कर रहा है. तो उसमें मेरे उस वक्त स्टेशन डायरेक्टर थे गिरीश चतुर्वेदी
1: जी जी,
0: तो उन्होंने मुझे छूट दी
1: कि नहीं नहीं आप करो.
0: हाँ, मतलब वरना ये होता नहीं है ये.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो 4 कंपोजर हैं, स्टाफ में मौजूद हैं,
1: तो आप उनको
0: और उस वक्त आप अपना काम खुद कर रहे हैं
1: जी जी,
0: तो उन्होंने छूट दी और उसकी वजह से वो एज ए कंपोजर भी रेडियो पर, मतलब फिर गाने भी हुए, सब कुछ हुआ.
1: हाँ,
0: एक बार मैं बताऊं कि जो महादेव वर्मा का गीत,
1: हाँ,
0: मैं नीर भरी दुख की बदली,
1: हाँ हाँ,
0: और ये सब, मतलब ये सब हमने किए, मतलब जो एक वो जैसे यहाँ मंथन शुरू हुआ था ना
1: जी,
0: हमने 10 मिनट का प्रोग्राम होता था
1: जी,
0: एक अच्छा गीत या अच्छी कविता,
1: हाँ,
0: किसी के लेके उसको कोई पढ़ता था, पर गीत होता था कोई गाता था.
1: वाह,
0: तो उस तरह का एक प्रोग्राम तो वो मैं करता था, तो उसमें महादेव वर्मा का और भारती जी का, फिर बाद में गालिब की गजलें कंपोज की.
1: क्या बात है.
0: कबीर को कंपोज किया, स्टेज किया, स्टेज शो किया. तो ये सब मेरे संगीतकार के रूप में मेरे
1: ये चीजें चलती रही लगातार. ये बहुत अद्भुत बात है, ये एक अलग पूरा एक पक्ष है. हमारे सुनने वालों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि आप मंच पर तो गाते ही हैं, लेकिन आप अपने निजी जीवन में भी कुछ फिल्मी गीतों से आपका बड़ा लगाव है जो आप गुनगुनाते हैं. तो हमारे लिए कुछ गुनगुनाइए.
0: चलिए मैं गुनगुना देता हूँ. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है.
1: वाह वाह.

बाद जाने माने शायर और विविध भारती के भूतपूर्व केंद्र निदेशक राजेश रेड्डी से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधन, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवाणी।

0: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
1: जिंदगी के सफर में हर मन प्यारा आपका सच्चा हम सफर।
2: FM 101.9 आकाशवाणी अयोध्या।
1: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों में इसकी आवाज गूंज रही है, घर घर जन जन तक।
2: आकाशवाणी अयोध्या FM, जो बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान और दुनिया में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: तो देर किस बात की जनाब, अपने कारोबार का विज्ञापन आज ही बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी अयोध्या, बेगमगंज गढ़िया परिक्रमा मार्ग,
2: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
3: नमस्कार युवा साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम युवावाणी, जहां बात होती है युवाओं की, उनके विचारों की, उनके सपनों की और समाज से जुड़े उन मुद्दों की जो हम सबके जीवन को छूते हैं। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त दिशा पांडे और आज की इस खूबसूरत शाम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम ज्ञान, प्रेरणा, संस्कृति, साहित्य, खेल और जागरूकता का शानदार संगम होने वाला है। गीत संगीत की मधुर धुनों के साथ हम करेंगे कई दिलचस्प विषयों पर बातें। दोस्तों, कार्यक्रम के पहले सेगमेंट चर्चा में आज हम बात करेंगे मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम की। गांव सिर्फ मिट्टी और मकानों का नाम नहीं होता दोस्तों, बल्कि वहां बसती है हमारी जड़ें, हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति और वो अपनापन जो जीवन भर दिल में बसा रहता है। आज जानेंगे कि कैसे हमारे गांव हमारी पहचान और विरासत को संजोए हुए हैं। इसके बाद व्यक्ति विशेष में हम रूबरू होंगे भारत के प्रसिद्ध महान साहित्यकार

आर के नारायण से, जिनकी कहानियां भारत के जीवन के बेहद सरल, संवेदनशील और जीवंत तरीके से दुनिया के सामने रखती हैं। मालगुड़ी जैसे काल्पनिक शहर के जरिए उन्होंने आम इंसान की भावनाओं को खास बना दिया। फिर बढ़ेंगे खेल संसार की ओर, जहां सप्ताह भर के खेल जगत की रोचक खबरें, चर्चाएं और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर होगी बात। क्योंकि खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि अनुशासन, संघर्ष और जुनून की पहचान भी है। और दोस्तों, लगातार बढ़ती गर्मी हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रही है। ऐसे में कामकाजी लोगों के लिए सही जानकारी और बचाव बेहद जरूरी हो जाता है। तो मेरे युवा दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ। ज्ञान की बातें होंगी, प्रेरणा का साथ होगा और गीत संगीत का भी खूब रंग जमेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मिट्टी की जिसके खुशबू में अपनापन है, उस गांव की जहां सुबह पक्षियों की चहचहाट से होती है और शाम चौपाल की बातों से सजती है। दोस्तों, गांव केवल रहने की जगह नहीं होता बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की जीवित पहचान होती है। गांव की गलियां, खेत खलिहान, कुएं, तालाब, मेले, लोकगीत और त्योहार, ये सब हमारी धरोहर हैं, जिन्हें हम सहेज कर रखते हैं। आज भले ही आधुनिकता की दौड़ तेज हो गई हो, लेकिन गांव की सादगी और अपनापन आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है। गांव हमें सिखाता है मिलजुल कर रहना, प्रकृति का सम्मान करना और मेहनत की असली कीमत समझना। दोस्तों, हमारे गांवों में ऐसी कई परंपराएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। जी हाँ, कहीं लोक नृत्य की धुन सुनाई देती है तो कहीं मिट्टी के बर्तनों की कला जीवित है, कहीं बुजुर्गों की कहानियों में इतिहास बसता है तो कहीं खेतों में किसानों का पसीना देश का भविष्य लिखता है। लेकिन दोस्तों, बदलते समय के साथ हमारी कई परंपराएं धीरे धीरे खोती जा रही हैं। पुराने खेल, लोकगीत, हस्तकलाएं और गांव की सामूहिक संस्कृति अब पहले जैसी नहीं रही। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत के बारे में बताएं। अगर गांव आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, हमें गांव की शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा का ध्यान देना चाहिए। गांव की पुरानी परंपराओं को आधुनिक सोच के साथ जोड़कर ही हम एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। मेरा गांव मेरी धरोहर आजादी का अमृत महोत्सव यानी कि AKAM नामक व्यापक पहल का एक हिस्सा है, जो भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाता है। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय की राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के तहत एक अखिल भारतीय पहल के रूप में इसका उद्देश्य अतीत और वर्तमान को जोड़ना है, ताकि भारतीय गांवों की सांस्कृतिक संपदा को आधुनिक युग में संरक्षित और सराहा जा सके। भारत की ग्रामीण विरासत का निर्माण करने वाली अनूठी परंपराओं, रीति रिवाजों, स्मारकों और ऐतिहासिक कथाओं का एक व्यापक रिकॉर्ड बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम पहल ग्रामीण सांस्कृतिक विविधता और समृद्धि को राष्ट्रीय चेतना में एकीकृत करने का प्रयास करती है। ऐसा करके ये ग्रामीणों में गर्व और स्वामित्व की भावना को भी बढ़ावा देने, सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहित करने और भावी पीढ़ियों के लिए ग्रामीण विरासत के संरक्षण को सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखती है। दोस्तों, मिशन के मुख्य उद्देश्यों दस्तावेजीकरण, संरक्षण, जागरूकता और सहभागिता तथा ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। ये खंड इस पहल के माध्यम से खोजे गए ग्रामीण धरोहरों का संकलन है। दोस्तों, इसी कड़ी में आइए सुनते हैं ये प्यारा संगीत फिल्म जहरीला इंसान से। आवाज है किशोर कुमार की और लिरिक्स है मजरूह के, कंपोज किया है RD बर्मन ने।

जी हाँ दोस्तों, हमें तो पूरा विश्वास है कि आप कहीं भी रहते हैं, लेकिन जब बजते हैं शाम के 5 तो आप उड़ के यानी दौड़ के पहुंच जाते हैं रेडियो सेट के पास या फिर अपने फोन के एप्लीकेशन के पास और ऑन कर लेते हैं आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुनने के लिए युववाणी। दोस्तों आप ये गाना सुन रहे थे फिल्म जहरीला इंसान से, आवाज थी किशोर कुमार की और गीत को लिखा था मजरूह ने, संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। अब प्रवेश कर रहे हैं सेगमेंट व्यक्ति विशेष में, जिसमें हम जानने वाले हैं भारत के प्रसिद्ध

0: साहित्यकार आर के नारायण के विषय में। दोस्तों, आर के नारायण का पूरा नाम था रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को भारत के मद्रास यानी कि आज के चेन्नई में हुआ था। वे ऐसे लेखक थे जिन्होंने भारतीय मध्यम वर्गीय जीवन, गांव, कस्बों की भावनाओं और आम इंसान की छोटी छोटी खुशियों और संघर्षों को बेहद सरल और दिल छू लेने वाले अंदाज में लिखा। दोस्तों, आर के नारायण की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी भाषा, सहज भाषा। उनकी कहानियां पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे आसपास की ही बातें हो रही हो। उन्होंने एक काल्पनिक नगर मालगुड़ी की रचना की थी जो बाद में भारतीय साहित्य की पहचान बन गया। मालगुड़ी कोई वास्तविक शहर नहीं था, लेकिन उसमें भारतीय समाज की सच्ची तस्वीर दिखाई देती थी। दोस्तों, उनके प्रसिद्ध रचनाओं में स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, मालगुड़ी डेज और द इंग्लिश टीचर जैसी किताबें शामिल हैं। खास बात तो यह है दोस्तों कि उनकी कहानियों में दिखावे की चमक नहीं बल्कि आम जीवन की सादगी और गहराई दिखाई देती है। दोस्तों, शायद आपने दूरदर्शन पर आने वाला मशहूर धारावाहिक मालगुड़ी डेज देखा ही होगा या फिर उसका नाम तो सुना ही होगा। यह धारावाहिक आर के नारायण की कहानियों पर आधारित था और आज भी लोग उसे बड़े प्रेम से याद करते हैं। उनकी कहानियों के पात्र इतने जीवंत होते थे कि वे सीधे दिल में उतर जाते थे। दोस्तों, आर के नारायण केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी लेखनी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी किताबों का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण और बाद में पद्म विभूषण जैसे सम्मान भी प्राप्त हुए। जी हाँ दोस्तों, उनकी रचना द गाइड के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। दोस्तों, आर के नारायण हमें ये सिखाते हैं कि महान बनने के लिए कठिन शब्दों या फिर बड़े दिखावे की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी बात सच्ची हो और दिल से निकली हो तो वो लोगों के दिल तक जरूर पहुंचती है। उन्होंने भारतीय जीवन की सादगी को दुनिया के सामने इस खूबसूरती से रखा कि लोग भारत की आत्मा को उनकी कहानियों में महसूस करने लगे। दोस्तों, यही वजह है कि आज भी आर के नारायण भारतीय साहित्य के सबसे प्रिय लेखकों में गिने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के व्यक्ति विशेष, महान साहित्यकार आर के नारायण। उम्मीद है उनकी जीवन यात्रा और लेखनी से आपको भी कुछ नया सीखने को मिला होगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, लौटते हैं जल्द ही। तब तक तैयार हो जाइए चाय की चुस्कियों के साथ, क्योंकि अब हमारे खेल प्रेमी दोस्तों के लिए होने वाला है बहुत कुछ खास।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95-59-24-42-04 और 78-00-37-22-22।
0: दोस्तों, हमने कहा था ना कि हमारे खेल प्रेमी युवा दोस्तों के लिए होने वाला है बहुत खास। जी हाँ, खेल संसार। दोस्तों, आईपीएल क्रिकेट में 7 मई 2026 को लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया था। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ था। इसी के साथ 8 मई 2026 को दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था। दोस्तों, अगर बात करें हम फुटबॉल की तो फुटबॉल में भारत ने कल चीन के सजों में खेले गए ग्रुप बी के अंतिम मैच में लेबनान के खिलाफ 4-0 की शानदार जीत के साथ एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में सुपर पहुंचकर इतिहास रच दिया। साहिल जाधव ने शनिवार यानी कि 9 मई को चीन के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2026 के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र के 25 वर्षीय तीरंदाज ने कांस्य पदक के लिए हुए प्ले ऑफ में डेनमार्क के अनुभवी खिलाड़ी सहकोच मार्टिन डैम्सबो को 147 144 से हराकर टूर्नामेंट में भारत का

पहला पदक हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। 204 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 19.2 ओवरों में ही जीत हासिल कर ली। उर्विल पटेल ने तूफानी अर्धशतक बनाते हुए 23 गेंदों में 65 रन बनाए। मिस्र के गीजा में आयोजित विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप में वीर चोटरानी के दूसरे दौर में बाहर होने के साथ ही भारत का सफर समाप्त हो गया। दोस्तों, विश्व नंबर 45 वीर चोटरानी को विश्व नंबर 1 और मौजूदा चैंपियन मुस्तफा असल ने 3-0 से हरा दिया। स्कोर 11-5, 11-2 और 11-4 रहा। बात करें एक बार फिर से आईपीएल क्रिकेट की, तो आईपीएल क्रिकेट में 12 मई को अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से हुआ। दोस्तों, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारतीय शटलरों के लिए राउंड ऑफ 32 के महत्वपूर्ण मैच खेलने की तैयारी है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में भारतीय दल एकल वर्ग में 32 महत्वपूर्ण राउंड के मैच खेलेगा। महिला एकल में उन्नति हुडा का मुकाबला घरेलू खिलाड़ी पूर्ण पावी चोचुवोंग से होगा। वहीं देविका सिंह सिहांग का सामना जापान की नात्सुकी निदेरा से होगा। अब अगर खेल की बात हो तो गाने ना हो तो फिर मजा नहीं आता। तो चलिए सुन लेते हैं फिल्म भूल भुलैया से सोनू निगम की आवाज में गाना। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है अमाल मलिक और प्रीतम ने।

जिस तरह से खेल के शौकीन हमारे दोस्त अपने खेल में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उसी तरीके से हमें पूरा यकीन है कि आप इस गाने में भी मंत्रमुग्ध हो गए होंगे सुनकर, है ना? बताइएगा जरूर हमें। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्यारा संगीत फिल्म भूल भुलैया से। आवाज थी सोनू निगम की और गीत को लिखा था समीर ने और संगीत से सजाया था अमाल मलिक और प्रीतम ने। अब बात करें हीट वेव की, कि हीट वेव के दौरान अत्यधिक गर्मी में कर्मचारी क्या करें। दोस्तों, गर्मी अपने चरम पर है और देश के कई हिस्सों में हीट वेव यानी लू का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन कर्मचारियों को होती है जो लंबे समय तक ऑफिस, फैक्ट्री, निर्माण स्थल, दुकान या फील्ड में काम करते हैं। तो आइए जानते हैं कि अत्यधिक गर्मी में कर्मचारियों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए ताकि वे सुरक्षित व स्वस्थ रह सकें। सबसे पहले, पहली और जरूरी बात, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। बार बार पानी पीते रहें, भले ही प्यास ना लगे फिर भी पानी पिए। नींबू पानी पिए, छाछ पिए, ORS भी पिए और नारियल पानी पिए, जैसी चीजें शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती हैं। ज्यादा चाय, कॉफी या बहुत मीठे पेय पदार्थों से बचना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक भी आपको नहीं पीना चाहिए क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, धूप से बचाव बेहद जरूरी है। अगर काम बाहर करना हो तो सिर को टोपी, गमछे या कपड़े से ढकें। हल्के रंग के ढीले और सूती कपड़े पहनें ताकि शरीर को हवा मिलती रहे। जहां संभव हो धूप में लगातार काम करने के बजाय बीच बीच में छांव या ठंडी जगह पर आराम जरूर करें। और अगर संभव हो तो शाम या सुबह में अपने काम को निपटाएं, धूप में ना निकलें तो वो बेहतर होगा। और अगर धूप में काम कर रहे हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बीच बीच में छांव या फिर ठंडी जगह पर आराम करें और साथ ही साथ पानी जरूर पिएं। और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, बाहर से यानी कि गर्मी से धूप से आते ही तुरंत फ्रिज का पानी यानी कि बहुत ही चिल्ड वाटर बिल्कुल ना पिएं, नॉर्मल पानी पिएं, नहीं तो आपको सर्द गर्म हो सकती है। तीसरी और सबसे अहम बात दोस्तों, काम का समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक गर्मी सबसे अधिक होती है, तो इस दौरान अगर काम न करें तो बेहतर होगा। ऐसे समय में भारी शारीरिक काम से बचना चाहिए। संस्थानों और कंपनियों को भी कर्मचारियों के लिए काम के समय में लचीलापन रखना चाहिए ताकि वे सुरक्षित रह सकें। और आपको भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान होना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा कर्मचारियों को पर्याप्त नींद लेना चाहिए और हल्का व पौष्टिक भोजन करना भी जरूरी है। ज्यादा तला भुना और भारी खाना शरीर को और थका देता है। फल, सलाद और पानी वाली चीजें गर्मी में शरीर को राहत देती हैं। दोस्तों, काम जरूरी है लेकिन स्वास्थ्य उससे भी ज्यादा जरूरी है। थोड़ी सी सावधानी हमें हीट वेव के खतरों से बचा सकती है, इसलिए खुद भी सतर्क रहें और अपने आसपास काम कर रहे लोगों को भी जागरूक करें। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और गर्मी में अपना विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आइए एक नजर डालते हैं कल के युवाणी कार्यक्रम पर कि कल क्या होने वाला है खास। तो दोस्तों, कल होने वाला है बेहद ही खास क्योंकि कल है गुरुवार और कल होगा युवा संवाद, सजीव फोन इन कार्यक्रम। दोस्तों, युवा संवाद का विषय होगा कैसे बचाएं पर्यावरण को, और इसके साथ साथ सुनेंगे हम गीत संग

0: संदीप नंबर रहेगा हमारा 7376804090। तो शाम को ठीक 5 बजे डायल करके जुड़ जाइएगा कार्यक्रम युवाणी के युवा संवाद में। उम्मीद है आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों कार्यक्रम से संबंधित अगर आपके पास कोई शिकायत सुझाव या कोई खास विचार तो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर 8233219911 पर। और इसी के साथ आप अपनी राय आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के युवाणी पोस्ट पर भी कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त दिशा पांडे को इजाजत। फिर मिलेंगे जल्द ही नई जानकारी नई एनर्जी और बहुत सारी बातों के साथ। नमस्कार शुभ संध्या।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है? ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आपकी बात कार्यक्रम में कार्यक्रमों से संबंधित प्रशंसा शिकायत और सुझाव व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर अपने नाम और पते के साथ सेंड कर दें। आपके संदेशों में लिखी प्रतिक्रिया को हम शामिल करेंगे माह के पहले तीसरे और पांचवें सोमवार को रात 9:15 से। और हाँ, कार्यक्रम प्रसारित होने से पहले अपने मैसेज रविवार के दिन शाम तक अवश्य भेज दें। अपने मैसेज में सबसे पहले कैपिटल में बिना स्पेस दिए AKB यानी प्रोग्राम का शॉर्ट नेम जरूर लिखें।

0: अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष केंद्र से बोल रहे हैं। 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए शंकर यादव और साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

घर बैठवले गवन कराई पिया घर बैठवले अपने नौकरिया पे लागल हो अरे अपने नौकरिया पे लागल।

शंकर यादव और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। ये आवाज है शशिकांत मिश्र और उनके साथियों की, आप सुनेंगे इनकी आवाज में लोकगीत।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी। वंदे मातरम एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव है, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें माँ भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें माँ भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतला शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, हमें ऐसा ही भारत बनाना है। वंदे मातरम हमारे इन प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बनेगा, इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना है। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदेमातरम150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदेमातरम150, मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करेंगे।
1: कार्यक्रम लोक संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। जगदीश त्रिपाठी और साथियों की आवाज में सुनिए ये लोकगीत।

0: सुनथ्यू सखी सुनथ्यू कार्यक्रम मंगनामा होए वाला है का खास।
1: अरे हाँ हाँ सखी बिल्कुल सुनथे अब फरमाइशी लोकगीत लोक सुरमाला सुना जाए हर बुधवार।
0: हाँ जहाँ ज्यादा सखी जुड़ सकती हैं अपन संस्कृति और परंपरा के साथ कई सकती हैं फरमाइश हर बुधवार आकाशवाणी अयोध्या के फेसबुक पेज के अंगना पोस्ट पर
1: और व्हाट्सएप नंबर 830-3991 पे जाके ANGA टाइप करें और

0: अपन मनपसंद लोकगीत के फरमाइश करें।
1: लोक सुरमाला आपकी पसंद।
2: हरी आई सेंटर में अब मोतियाबिंद का ऑपरेशन अत्याधुनिक मशीनों द्वारा,
3: बिना सुन बिना दर्द बिना पट्टी तुरंत छुट्टी।
2: हरी आई सेंटर, जनाना हॉस्पिटल रोड, रिकाबगंज, फैजाबाद।
3: फोन नंबर 9186877347।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत। हम आकाशवाणी के अध्यक्ष केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को हैं, कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,461 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4,023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा के लिए 2,900 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8,400 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 5,000 रोजगार सृजित होगा। ये आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल को भी सशक्त करेगी। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए एक क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव CV जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने वांछित नार्को आतंकवादी इकबाल सिंह उर्फ शेरा को गिरफ्तार कर लिया है। लंबे राजनयिक और कानूनी प्रयासों के बाद पुर्तगाल से उसके प्रत्यर्पण में सफलता हासिल की गई है। 2020 से फरार इस आतंकवादी को पाकिस्तान समर्थित नार्को आतंकी मामले में गिरफ्तार किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन

0: in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visits to Gujarat and Assam. Prime Minister Narendra Modi will embark on a six-day visit to the United Arab Emirates, UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy on Friday. Briefing media in New Delhi this evening, Secretary West of the Ministry of External Affairs, Sibi George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will reach UAE on Friday, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation. And with that, we end this news bulletin.
1: आपने टून किया एफएम बैंड पर आकाशवाणी का अध्याय केंद्र 6:10 और 14 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम शाम सुहानी। उसके पहले श्रोताओं, आइए आपको बता दें एक आवश्यक सूचना। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या की सूचना के अनुसार आरिफ खान सनाफ इस्लाम उर्फ भल्लर निवासी पाराराम थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या सूचित करते हैं कि आसिया पुत्री इस्लाम खान 11 अप्रैल सन 2026 से कहीं लापता हैं। लापता आसिया की उम्र लगभग 19 वर्ष, रंग गोरा, कद 5 फीट, आंख और बाल काले और सामान्य हैं। लापता होने के वक्त आसिया ने पिंक कलर का सलवार सूट पहन रखा था। जिस किसी को भी लापता आसिया के बारे में कोई जानकारी मिले, कृपया इस पते पर सूचित करें। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। वक्त है कार्यक्रम शाम सुहानी का।
2: आकाशवाणी अयोध्या से अपने प्रतिष्ठान, प्रोडक्ट, सेवाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें मेल कीजिए ayodhyaakashwani@gmail.com ayodhyaakashwani@gmail.com

कार्यक्रम शाम जवानी सुनने वाले सभी श्रोताओं को विवेकानंद का नमस्कार। जी हाँ, ये आवाज है सोनू और साथ में शान, साथ में शांतनु। फिल्म है थ्री इडियट, गीत सवानंद किरकिरे का और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

अब सुनिए केके और वसुंधरा दास की आवाज। फिल्म है मैं हूं ना, गीत है जावेद अख्तर का, संगीत अनु मलिक का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम सुहानी। एफएम बैंड पर आपने ट्यून किया आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 6:20 होने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सः अवदत् यत् ग्रैष्मिककालस्य कृते कृषकाणां कृते प्रायः 60,000+ 2,00,000 रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। सः अवदत् यत् अस्मिन् ऋतौ 24,000+ 800,000 मैट्रिक टन इत्यतोप्यधिकानि सस्यानि प्राप्तानि भविष्यन्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् एमएसपी मध्ये सर्वाधिकं 22,000+ 600,000 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल वृद्धि सूर्यमुखी बीजानां कृते अनुशंसितम्। तदनन्तरं 57,500+ 500,000 रूप्यकाणि प्रति क्विंटल कर्पासस्य कृते, 500+ रूप्यकाणि प्रति क्विंटल तिलस्य कृते च अनुशंसितम् अस्ति।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824,00,000 मैट्रिक टन LMT।
0: प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भू अंगारस्य तथा लिग्नाइट गैसिफिकेशन परियोजनायाः प्रोत्साहनाय 37,50,000,000,000 रूप्यकाणां वित्तीय व्ययस्य योजना अनुमोदिता। प्रसार माध्यमान् संबोधयन् केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना भारतस्य अंगारस्य लिग्नाइट गैसिफिकेशन इत्यस्य च कार्यक्रमं गतिप्रदानाय प्रमुखं पदाक्षेपमस्ति। श्री वैष्णवः अवदत् यत् योजनायाः अंतर्गतं 3,00,000,00,000 रूप्यकाणां अपेक्षित निवेशः भविष्यति।
1: ओन भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो एलएनजी इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: तमिलनाडु राज्ये श्री जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलगा वेट्रिकजघम दलस्य सर्वकारेण तमिलनाडु विधानसभायां बहुमत परीक्षणं विजितम्। चतुश्चत्वारिंशोत्तरैकशत विधायकाः पक्षे मतदानं कृत्वा सभायां स्पष्टं बहुमतं प्रदर्शितवन्तः। अत्रांतरे 22 विधायकाः विश्वासप्रस्तावस्य विरुद्धं मतदानं कृतवन्तः। कार्याचरणावधौ प्रमुखः विपक्षिदलं डीएमके विधानसभा सदनात् बहिरागच्छत्। सद्यैव समाप्तेः विधानसभा निर्वाचने तस्य दलेन केवलं 88 शतासनानि प्राप्तानि आसन्। तमिलनाडोः राज्यपालेन राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरवर्येण विजयाय सदने बहुमतं साधयितुम् आज्ञापितमासीत्। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दलस्य नेता एन रंगासामी अद्य पुदुचेरी राज्यस्य मुख्यमंत्री रूपेण पंचमं वारं शपथ ग्रहणं कृतवान्। लोकनिवासे आयोजिते समारोहे पुदुचेरी नगरस्य उपराज्यपालः के कैलासनाथन वर्यः पदस्य गोपनीयतायाः च शपथ ग्रहणं कारितवान्। दलस्य मल्लादी कृष्णरावः भाजपेति दलस्य एन नमशिवायं च अस्मिन् समारोहे मंत्री रूपेण शपथं स्वीकृतवन्तः। भारत ऋतु विभागेन अद्य राजस्थान राज्ये उष्णतरंगस्य कृते रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतनायाः सूचना प्रसारिता। गुजरात राज्ये, महाराष्ट्रे, पश्चिम मध्य प्रदेशे च श्वः यावत् उष्णतरंगस्य स्थितिः भवितुम् अर्हति। अपि च अद्य हिमाचल प्रदेशे, उत्तराखण्डे च ओलावृष्ट्या सह वर्षायाः संभावना विद्यते। अद्य दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब इत्येतेषु प्रदेशेषु विद्युत सहित वृष्टिः, तीव्र वायुवेगः च भविष्यति इति भारत ऋतु विभागेन पूर्वानुमानितम्। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा 12 कक्षायाः परीक्षा परिणामाः प्रसारिताः। छात्राः आधिकारिक वेबसाइट डिजिलॉकर इत्यत्र, उमंग ऐप इत्यत्र च स्वानुक्रमान् प्रविश्य परिणामं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अस्मिन् वर्षे केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा 12 कक्षायाः फरवरी मासस्य 17 दिनांकतः अप्रैल मासस्य 10 दिनांक पर्यन्तं लक्षोपलक्ष छात्राणां कृते

0: परीक्षा आयोजिता। अन्ते मुख्य वार्ताः पुनः एकवारम्। पश्चिम एशिया संघर्षेण उद्भूतस्य वैश्विक ऊर्जा संकट कालस्य मध्ये प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिना आवाहनस्य अनन्तरं केन्द्र राज्ययोः ईंधन संरक्षणस्य उपायाः तीव्राः जाताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चतुर्दश खरीफेति ग्रैष्मिक सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं स्वीकृतम्। तमिलनाडु राज्ये सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे टीवी के सर्वकारेण सहज बहुमतेन शक्ति परीक्षणं विजितम् इति वार्ताः।
1: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 6:30 और 7 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित। कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 95 59 24 42 04 और 78 00 37 22 22।

कार्यक्रम गुंजे स्वर गांव के आकाशवाणी के अध्यक्ष केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। राम यज्ञ गुप्ता और साथियों की आवाज में सुनिए ये लोकगीत।

0: राम यज्ञ गुप्ता और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर आकाशवाणी अयोध्या।
2: घर घर जन जन तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
3: जग घूमे थर जैसा न कोई।
1: ये है आपका अपना एफएम रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
2: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
4: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
1: ayodhyaakashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।

रसोई वाले स्थान को ठंडा रखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दें। ध्यान दें, शराब, चाय, कॉफी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक आदि का उपयोग करने से बचें, क्योंकि यह शरीर में निर्जलीकरण पैदा करते हैं। FM बैंड पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र।

अभी हम सुन रहे थे कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अत्यधिक गर्मी वाले समय यानी विशेषकर दोपहर में 12 बजे से 3 बजे के मध्य सूर्य की सीधी रोशनी में जाने से बचें, नंगे पैर बाहर न निकलें, अधिक प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के उपयोग से यथासंभव बचें और बासी भोजन का प्रयोग न करें। बच्चों तथा पालतू जानवरों को खड़ी गाड़ियों यानी पार्किंग कार में न छोड़ें। गहरे रंग के भारी और तंग कपड़े न पहनें। जब बाहर का तापमान अधिक हो तब अत्यधिक शारीरिक परिश्रम भी न करें। अधिक गर्मी वाले समय में खाना बनाने से बचें।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
5: पंचों जय हिंद। पंच भैया, कृषि जगत कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आज हम आपसे कार्यक्रम में चर्चा करबे ऊर्जा संरक्षण के विषय में और आपका एक जानकारी भी सुनोबे जायत की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य, खास करके उड़द, मूंग, लोबिया, सूरजमुखी की खेती से संबंधित जानकारी दी है माँ डॉक्टर प्रेमनाथ जी। और कार्यक्रम में आगे लोकगीत, बाजार भाव, मौसम हुए। तो भैया देखो, ऊर्जा के विषय में तो अपने सब भली भांत जानते ही, ऊर्जा के महत्व तो अपने सब खूब नीक तरह से समझा जाता है। ऊर्जा आज के समझा जाए तो बहुत बड़ी जरूरत है अपने सबके। बिना ऊर्जा के बहुत से काम धीम भी हो जाते हैं और रुक भी जाते हैं। तो पंचो, हम सब ऊर्जा के महत्व का समझत भय या के संरक्षण पर भी ध्यान करी तो ज़्यादा ठीक है। सबका जरूरत पे ऊर्जा मिल सके, एकरे लिए हमें ऊर्जा संरक्षण अपनावे का ही हुए। विज्ञान जगत में खास करके भौतिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए पंच भैया, तो ऊर्जा का ना तो नष्ट की जा सकत है और ना ही एका उत्पन्न की जा सकत है। बस इतने है कि एक रूप से दूसरे रूप में एका बदला जा सकत है और जरूरत के समय एका अपने उपयोग में लवा जा सकत है। तो ये लिए पंच भैया, ऊर्जा संरक्षण के लिए हमें एका बड़ी बुद्धिमानी के साथ प्रयोग करे के जरूरत बा। अनावश्यक रूप से ऊर्जा का ना तो नष्ट की जाए और ना ही भैया कोनो मेर से का नुकसान पहुंचावा जाए, ये का सुरक्षित बनाए रखे के प्रयास करे के जरूरत बा। ऊर्जा के उपयोग कम से कम की जाए, जौने स्रोत से ऊर्जा अपने सबका मिलत या है, उस स्रोत भैया एक तरह से देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से असीमित नहीं नो सीमित है और अगर अपने सभी सही से उपयोग कर बे तो लंबे समय तक एक फायदा पोगे। अब जैसे बिजली है, पेट्रोल है, कोयला है, अगर ये दैनिक जरूरत में आप सबके शामिल हो चुके बाय, घर से लेके कल कारखाना हर जगह एक जरूरत बाय, तो अगर सही ढंग से उपयोग की जाए तो एक अपने सबका फायदा रहे। तो पंच भैया, ऊर्जा संरक्षण के उपाय के तौर पर हम अगर बात करी तो अपने सबके यहाँ तमाम मेर के, चाहे बिजली के उपकरण हैं, चाहे मोटर गाड़ी हैं,

0: यह तमाम और संसाधन हैं जो ने के अपनी सब प्रयोग करी थी और ऊर्जाओं का चलावत है। तो बिजली की बात करें तो बिजली के उपकरण जैसे लाइट है, पंखा है, एसी है, ये का जब अपना बैठा हुए जरूरत हुए तो ऑन रखा जाए, नहीं तो बंद की जाए। और एक चीज ध्यान रखा जाए कि जो अपने सब पहले सामान्य बल्ब 100 वाट के जलावत रहें, वही की जगह पे एलईडी लाइट के प्रयोग या सेफल के कीन जाए, तो यहू से भी ऊर्जा के बचत होते हैं। दिन के समय में भैया अपने घर के जो खिड़की हैं उनके खोल लें जाए, जो प्राकृतिक रोशनी जो बाय वो घर के अंदर आवे और वकरे द्वारा ही प्रकाश अपने घर में मिल सके। तमाम उपकरण टीवी कंप्यूटर जोन भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, इनका भी भैया स्विच बंद रखा जाए, जरूरत हो तो चलावा जाए। और एक चीज खास बात यह है कि ऊर्जा बचाने वाले आजकल तमाम उपकरण भी हैं, यानी 5-स्टार रेटिंग वाले जो कुशल ऊर्जा उपकरण हैं उनका प्रयोग किया जाए तो वह से थोड़ा बहुत ऊर्जा के बचत है। रही बात भैया मोटर गाड़ी के, तो यहू का जरूरत के हिसाब से उपयोग करें, संभव हुए तो सार्वजनिक परिवहन के उपयोग करें। व्यक्तिगत गाड़ी से चले पे भैया तमाम जो खर्च है ईंधन के वो बढ़त है। कम दूरी के लिए हो सके तो साग सब्जी लावे के लिए आप साइकिल के उपयोग कर लिए, और अगर गाड़ी से चलत हैं ट्रैफिक पे लाल बत्ती है या रेलवे फाटक पे लाल बत्ती है तो ऐसी जगह पे अगर पहुंच गए हैं और यातायात रुका है तो हो सके तो इंजन बंद कर दिए चाहिए गाड़ी के। पंचों अगर ऊर्जा संरक्षण के लाभ के बात की तो सबसे बड़ा लाभ तो हम ही माने थे भैया कि अपन जो पर्यावरण है ना ये सुरक्षित रहा था। बिजली और डीजल पेट्रोल के उपयोग का माजोन बाय कमी लावा जाए तो यह से अपने सबके जो पैसा है वह बच जाते भैया। काहे से जो सीमित प्राकृतिक साधन संसाधन हैं, चाहे कोयला है, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, यह का भविष्य के लिए भी अपने सबका सुरक्षित रखे है। काहे से आगे के जो आवे वाली पीढ़ी है उन्हों के लिए अपने सभी कुछ न कुछ ऊर्जा दे के जाए ताकि उनके भी काम चलत रहे। तो पंचो सीधी सी बात है, हम एक चीज यह कहवे कि ऊर्जा का बचत की जाए, यह पर विशेष ध्यान दी जाए, बिना जरूरत अनावश्यक रूप से कोनो भी उपकरण ना चालू रखा जाए। जितने ऊर्जा अपने सब बचे हुए उतने अपन जो भविष्य है वो मजबूत हुए और ऊर्जा सबका मिल सके। तो भैया यह तरह से ऊर्जा संरक्षण के बात रही, और अपने सभी तो खेती किसानी करे वाला किसान पंच होबे करी, तमाम मेर के जोन फसल है समय समय पे अपने सब अपने खेतन में बोवा जात है, उगावा जात है। अब जायद के मौसम है ये शायद, तो जायद से संबंधित जोन फसल है अपने सभी, चाहे वो मूंग है, उड़द है, लोभिया है, सूरजमुखी है, ऐसा तमाम फसल है उनके खेती अपने सब के यहाँ। यह माँ कौन कौन काम ये शायद अपने सबका करेगा है, कौनी बात के ध्यान रखे गए ताकि अपन जो फसल है वो अच्छी पैदावार दे सके, तो जानकारी देख ले डॉक्टर प्रेमनाथ भैया अपने स्टूडियो में आए रहे आकाशवाणी के, और उनसे रामप्रीत निषाद भैया बात कहे हैं जायद की फसलों में समसामयिक कृषि कार्य। तो चलो कैसे का बता रहा है सुना जाए, अपनी खेती किसानी में होकर उपयोग किए जाए।
1: भैया जैसन की आप जाना दो कि यह समय अपने पंचन के खेती गृहस्थी में जायद मौसम के खेती चलता है, जैसन कि उरुद है, मूंग है, लोबिया है, सूरजमुखी है, मक्का है, खीरा है, ककड़ी है, तमाम तरह के खेती जायद में किए हैं। वहाँ तमाम तरह के इसमें जैसे अब धूप हो गया कुछ दिन पहले जो है बरसात हो गई रही तो तमाम खरपतवार भी उगाए हैं। तो कहे के मतलब ये की है कि उर्द मूंग है, लोबिया है, सूर्यमुखी है, खीरा है, ककड़ी है, ये मैं समसामयिक कृषि कार्य काव करे बाटे। आज अपने पंचायती में यही विषय पे जानकारी मिले और जानकारी देता है हमारे पंचायती में आयल हैं डॉक्टर प्रेमनाथ जो उनकी कृषि विशेषज्ञ हैं अयोध्या से। डॉक्टर प्रेमनाथ जी आपका स्वागत है मेरे पंचायती में।
2: धन्यवाद।
1: हम जानना चाहे थे कि जो यह समय कुछ फली आवत बाटे, कुछ फूल आवत बाटे, मौसम का मार बाटे और खेती गृहस्थी में हमें सबके जो है अपन देखभाल करे बाटे, यह समय हमें सब काव कीन जाए।
2: इस समय किसान भाइयों के खेत में फल फूल आ रहे हैं क्योंकि ये फरवरी से लेके 15 मार्च तक बुआई जिन किसान भाइयों ने कर लिया है जैसे उर्द मूंग, लोबिया, सूरजमुखी, तो उनमें देखेंगे कि फल फूल आ रहे हैं। तो इस समय ध्यान देने योग्य बात है कि गर्मी का मौसम है तो सिंचाई सबसे पहला जरूरी काम है।
1: अच्छा,
2: अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो समझिए कि जायद की फसल ना के बराबर होती है।

0: क्योंकि गर्मी के मौसम में यदि आपकी मिट्टी जो है बलुई दोमट मिट्टी है तो उसमें 6 से 8 दिन पे सिंचाई जरूर कर देना चाहिए। अगर भारी मिट्टी है तो 10 से 12 दिन पे सिंचाई कर देनी चाहिए। अच्छा। और सिंचाई गर्मी के मौसम में हमेशा सुबह या शाम को करना चाहिए, जिससे कि पौधों में नमी बराबर मात्रा में पहुंच जाए और जो इवेपोरेशन होता है वाष्पोत्सर्जन की वजह से जो पानी का नुकसान होता वह ना।
1: अच्छा अच्छा, सिंचाई की बात है तो लगे हाथ हम सब ये जाना जाए कि जब पानी लगावा जाते हैं, सब ये अलग अलग फसल है, अलग अलग उन पानी के चाहत है उनके सबके, लेकिन कितना पानी लगावा जाए कम की ज्यादा?
0: नहीं नहीं, हल्की सिंचाई करनी चाहिए और जल निकास की सुविधा भी होनी चाहिए। यदि पानी स्टोर हो जाता है खेत में तो सड़न पैदा हो जाता है जड़ों में, खीरा ककड़ी ये सारे चीजों में सड़न हो जाएगा और पौधा मर जाएगा।
1: अच्छा, बरसात तो कुछ दिन पहले हो ही गया, अब तो धूप खड़ी हो गई बात है, तो यहाँ खरपतवार बहुत तेजी से आवत है।
0: जी जी, खरपतवार किसान भाई पेंडी मिथिलीन का प्रयोग कर लिए हैं, मतलब बुआई के 1-2 दिन के अंदर, तो ऐसी समस्या नहीं आती। यदि आती है तो 20 से 25 दिन पे जो भी खरपतवार उगे हैं उनको निराई गुड़ाई करके निकाल देना चाहिए, यही अच्छा रहता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ, या तो मल्चिंग का प्रयोग कर दें तो भी बहुत ही अच्छे से रोकथाम हो जाती है।
1: बहुत बढ़िया बात आप बताएं कि हम सब मल्चिंग का प्रयोग की जाए। तो बहुत किसान पंचे भाई जब पैरा बिछा देते हैं या पॉलिथीन लगाए देते हैं, व्यवस्था कैसा है, क्या तरह का हम सब सावधान जाए?
0: मल्चिंग की यदि व्यवस्था है तो इसमें देखिए 2-3 फायदे हो जाते हैं। पहला तो अगर पुआल का करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी बढ़ जाता है और मॉइस्चर जो होता है, जो पानी होता है वो जमीन में हमेशा मॉइस्चराइज बना रहता है, जिससे फसलें जल्दी सूखते नहीं और उसमें फल फूल अच्छे होते हैं, अच्छे लगते हैं उसमें।
1: अच्छा, पैरा लगा इसमें?
0: हाँ, नहीं तो अगर फल या फूल जो होते हैं ना, अगर पानी की कमी हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से फल जो होते हैं खीला ककड़ी या अदर जो होते हैं उसमें तीखापन आ जाता और जो हमारे फ्रूट हैं, जो फल हैं, वो छोटे रह जाते हैं। अच्छा। ये तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती पानी की वजह से।
1: डॉक्टर प्रेमनाथ भैया
0: जी,
1: कहीं ऐसा तो नहीं जो पैरवा हम सब लगाए हैं वो पे जो हमारे सबका फल है, कोहड़ा है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, ये तमाम तरह के जब पैरवा पे पड़त है ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं नीचे से सड़े लागे या
0: ऐसा नहीं होता है वो, क्योंकि ऊपर से ये सूखा रहता है, नीचे ये मॉइस्चराइज रहता है, ऊपर का देखेंगे जो लेयर होता है वो सूखा रहता है।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ, वो नीचे का ही जो पुआल रहता है वही सड़ता है,
1: अच्छा,
0: ऊपर का नहीं, ऊपर धूप लगा रहता तो वो सूखा रहता है।
1: अच्छा।
0: नीचे मेंटेन रहती है नमी जमीन में,
1: तो इससे कोनो खतरा नहीं?
0: नहीं, इससे नहीं कोई खतरा
1: होता। अच्छा, यह समय कुछ रोग भी याद लागत है?
0: हाँ, ये समय देखिए ये प्रोटीन की फसलें होती है, दलहनी फसलें जो होती है इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो प्रोटीन सबको जरूरी होता है, चाहे कीड़े हो, चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, तो सब लोग जानते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता मुझे हो।
1: अच्छा,
0: जरूरी है।
1: अच्छा, यानी उरूद और मूंग में प्रोटीन ज्यादा होती है?
0: प्रोटीन ज्यादा होती है, 21% तक होता है, 25% तक मूंग में होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन सबको जरूरत है, इसलिए कीड़े भी जानते हैं कि प्रोटीन ये चीज है, तो उस पर ज्यादा अटैक करते हैं। दलहनी फसल में सबसे ज्यादा कीड़े लगते हैं इसी की वजह से। अगर ऐसी समस्या आ रही, कीड़े लग रहे हैं,
1: हाँ,
0: तो इसमें इमिडा क्लोरफ्रिड का 17.8 SL का छिड़काव कर देंगे, मतलब 1 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव कर देंगे तो ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं।
1: अच्छा, हाँ, अगर दोबारा करे के आवश्यकता पड़ी तो कितना दिन के बाद?
0: वो तो आप जैसे कीड़े मकोड़े की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, यदि ज्यादा है तो इसको 15 दिन पे अवश्य कर देनी चाहिए।
1: अगर दिखाई ना पड़े थे तो हमें सबको दोबारा करे की जरूरत नहीं पड़े,
0: वो कीड़े के ऊपर डिपेंड करता है कितने रहे। इससे जैसे येलो बेन मोज़ेक एक रोग होता है, पीला रोग हो जाता है, फलियां सिकुड़ जाती हैं, छोटे छोटे रह जाते हैं, तो इसमें भी ये जो सफेद मक्खी होती हैं,
1: अच्छा,
0: इसी की रोकथाम के लिए इमिडा क्लोरप्रिड का ही छिड़काव किया जाता है।
1: डॉक्टर भैया, कबो कबो लागत है जो पतैया ना सिकुड़ी सिकुड़ी लागत है, पौधवा जो ने पूरा बढ़त नहीं, कुंज यस जात है, का स्थिति बात है,
0: इसे येलो वेन मोज़ेक ही कहते हैं।
1: अच्छा।
0: पत्तियां पीली पीली हो जाती है, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता, जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी समस्याएं होती हैं, जिसमें ये रोग लग जाता है उस पौधे को उखाड़ के कहीं पर गाड़ देना चाहिए, वायरस ये फैलती है सफेद मक्खी की वजह से।
1: अच्छा, अच्छा।
0: हाँ, तो ये समस्याएं खत्म हो जाती है।
1: इनके उपचार का बात है सफेद मक्खी के?
0: इमिडा क्लोरप्रिड इंसेक्ट होता है, इसी की रोकथाम कर देंगे तो ये वायरस नहीं फैलता है।
1: अच्छा अच्छा, अब हमें सब एक तो गर्मी है
0: जी,
1: धूप है
0: जी,
1: और हमें सब जल्दी जल्दी से पानी लगाई थी मुला, इसमें अगर जरूरत है खाद के उर्वरक के
0: जी,
1: तो हमें सब कैसे

0: दिन जाए, कितना मात्रा दिन जाए और कितने टीम में दिन जाए।
1: देखिए जैसे दलहनी फसलों में जो होता है कि 100 केजी डीएपी एक हेक्टेयर के लिए होता है, नहीं तो अगर वैसे देना है तो 20 50 और 20 के रेशियो में एनपीके दिया जाता है। लेकिन अगर जैसे इस समय मूंग में जो पत्तियां हैं पीली पड़ रही हैं, हाँ। तो आप यूरिया का घोल बना के 2% का छिड़काव कर देंगे तो भी यह कंट्रोल हो जाता है।
0: उरुद मूंग में,
1: हाँ दोनों में, हाँ। इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अच्छा। माइक्रो न्यूट्रिएंट है जैसे पाउडरी मिल्ड्यू इस समस्या हो जाती है इसमें, तो आप जो है सल्फेक्स या घुलनशील सल्फर 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल कर छिड़काव कर देंगे तो ये भी समस्या गायब हो जाता है।
0: जैसे सूरजमुखी का पौधा जल बड़ा होते है
1: जी,
0: और जो मक्का है वह पौधा बड़ा था
1: जी,
0: तो यहाँ कितना उर्वरक खाद की जरूरत पड़ा था?
1: देखिए जो मक्का है उसमें कम से कम 120 केजी यूरिया नाइट्रोजन और 100 केजी जो होता है फास्फोरस और 50 केजी जो है पोटास का प्रयोग करना चाहिए। अगर किसान भाई ये तो बुआई के समय करते हैं, लेकिन 1/3% जब पौधा जो
0: 35 दिन 40 दिन
1: हाँ के, तो उस पे मतलब यूरिया का घोल के रूप में छिड़काव करना बहुत ही लाभप्रद होता है इसमें।
0: अच्छा अच्छा
1: जी।
0: अगर हमारे पौध बढ़वार नहीं होते, जो बढ़वार न हो, विकास न हो, तो फल कहाँ से प्राप्त
1: जी जी।
0: तो अगर इसके बाद भी अगर हम सबका यूरिया या रासायनिक खाद देख पड़ा तो कौन खाद कितना मात्रा में, फिर दोबारा हमें सब कब कितने अवस्था पे देंगे?
1: ये तो डिपेंड करता है कि हमारा जो जमीन है मिट्टी है उसमें जो है फर्टिलाइजर की मात्रा कितनी है, पोषक तत्व की मात्रा कितनी। अगर हमारा सॉइल टेस्ट नहीं हुआ, मिट्टी का परीक्षण नहीं हुआ, तो ये कंडीशन उत्पन्न हो जाता है कि हमारा पौधा बढ़ने से रुक गया। अब उसमें ये देखना पड़ता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उस हिसाब से हमको देना पड़ता है। लेकिन ये देखा जाता है कि कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती, बोरान की हो जाती है या जिंक की कमी आगे आती है, जस्ते की कमी, तो इन सबको भरपाई किसान को करना ही करना हो जाता है।
0: अच्छा, कहे मतलब आपका कि अगर मृदा परीक्षण हाँ, करवाए ही तो पता लग जाता है कि ये माटी में कितना
1: हाँ,
0: पोषक तत्व तो है, सूक्ष्म पोषक तत्व, घोर पोषक तत्व, कितना पोषक तत्व की आवश्यकता बांटे
1: हाँ,
0: और अगर ना कराए ही तो मिट्टी के पौध के स्थिति देख के तब हमें सबका जरूरत
1: जरूरत पड़ती है कौन चीज। अगर आप यूरिया भी ज्यादा दे दिए
0: तो नुकसान
1: जो, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या और फर्टिलाइजर जो दिए हैं उसको ये दबा देता है।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, इसलिए परीक्षण करना बहुत जरूरी होता है कि हमारी मिट्टी में कौन चीज की कमी है।
0: हाँ, बहुत बढ़िया बात आप बताएं कि अगर मृदा परीक्षण भय बांटे तो हमें सब संतुलित मात्रा हमें हाँ, सब दे सकी थी, और अगर ना ही परीक्षण भय बांटे तो अगर यूरिया का प्रयोग हमें सब ज्यादा कह दिन गए
1: हाँ,
0: तो अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पर प्रभाव पड़े हाँ, और जब प्रभाव पड़े तो हमारे सबके पौध का विकास रुक जाए तो फल फूल भी नहीं मिले। अब हम डॉक्टर साहब चाही थी कि चलत चलत अपने पंचन ताई जो जायद की फसल में ही इनमें सामान्य सी बात हम सब का ध्यान दी जाए मुख्य रूप से।
1: देखिए इस समय जो है फलियां पक भी रही होंगी कुछ किसानों की, तो आप देखेंगे यदि 80% जो फलियां है तो वो उर्द मूंग में अगर वो पक जाती हैं काली या भूरी पड़ रही हैं, तो उस समय इसकी कटाई भी कर देनी चाहिए, तुड़ाई कर देनी चाहिए।
0: अच्छा।
1: तो ये फायदेमंद रहता, और स्टोरेज में भी अगर 10-12% मॉइस्चर है सुखवाने के बाद तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर सूरजमुखी है, सूरजमुखी में अगर 1-2 बॉक्स अगर 1-2 बॉक्स रख दें मधुमक्खी बॉक्स को, तो 30-35% पैदावार किसान भाइयों का बढ़ जाता है सूरजमुखी का हाँ, इतना ज्यादा होता। और कभी भी मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूँ कि जब भी वो पेस्टिसाइड का या जो कीटनाशक का प्रयोग जो है करें वो सायं के समय ही करें।
0: अच्छा।
1: इससे जो मधुमक्खियां होती हैं वो अपने छत्ते में चली जाती हैं, और सूर्य निकलने के बाद और सूर्य डूबने के पहले अपना कार्य ये परागण का करते हैं। तो इसमें सारी फसलों में आप देखें, चाहे उर्द हो, चाहे मूंग हो, चाहे लोबिया हो, चाहे जिसमें हो, उसकी स्वतः जो होती है 10-15% यील्ड बढ़ जाती है,
0: पैदावार बढ़ जाती है,
1: पैदावार बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी कीटनाशक का प्रयोग जो है दिन में नहीं करना चाहिए,
0: शाम के वक्त
1: हाँ, नहीं तो ये जो 10-20% का यील्ड का फायदा हो रहा है ये नहीं होगा। क्योंकि अच्छा। परागण नहीं हो पाता सही से।
0: और मधुमक्खी का अगर बाक्स रखा जाए खेत में,
1: हाँ,
0: और पैदावार उसे हम सबके 30-35% जो है बढ़ जाए, ये आपका कहा है। बहुत बढ़िया डॉक्टर प्रेमनाथ जी, आप हमारे पंचन के बीच में पंचायती में आयो और इतनी बढ़िया जानकारी दे।

0: समय में हम समझे थे कि पंच भाई जौन जायद की फसल लगाए हैं, खीरा ककड़ी लोबिया मक्का जौन कोहरा लौकी जौन भी लगाए हैं, वो में अगर ध्यान दिए मुख्य रूप से जौन है सिंचाई शाम के और दवाई शाम के, खरपतवार से मुक्ति मिला रहे तो हमें सबका पैदावार बढ़िया मिले। यह जानकारी के लिए आपका अपने किसान पंच के तरफ से, अपने आकाशवाणी परिवार के तरफ से हम आपका देत बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो पंच भैया देखो, आप सभी ये जानकारी सुनी नहीं और तमाम लोग फसल अपने खेत में है जायद वाली, अब हमें ध्यान दे के जरूरत यही है कि कोनो मेर से वहां रोग या किरवा के प्रकोप न हो पावे, नमी के मात्रा समय समय पर देखत रहें और बनी रहे, सिंचाई करत रही हैं, निश्चित है कि जो उन पैदावार है वो अपने सबका बढ़िया भरपूर मिले और अपन जो उन्हें आमदनी है वो बढ़े। अब यही शायद पंचायती में समय है आप सबकी मन मनसाइन के यानी मनोरंजन के, तो अवधराज मौर्या और साथी भैया के स्वर में पहले सुनाई गौनई फिर आगे बातचीत हुई।

ये देखो किसान के जो घरेती है ना, वे कहते हैं विदेशवा राय के जरूरत नहीं है, घर ही में रह के खेती किसानी करा और खेती किसानी से भी बढ़िया आमदनी अपने सबका मिलत है और अपन जो घर परिवार के भैया समय समय पर देखभाल है जो जरूरत है वो पूरी हो जाता है और परिवार भैया जो साथे रहा थे ना और साथे रह के अपने सब काम किन जाते हैं खाना पीना किन जाते हैं तो वो के आनंद अलग होते हैं। तो ये तरह से अपन खेती किसानी अपने सभी मजबूत करी, अच्छी आय हुए, हमें सबके खुशहाली आए और भैया गौनई के बाद देखो अपने सबके जो काम काज हुए थे ना वो बाजार भाव मौसम की ओर जात है। कैसे अपन जौन भी उत्पाद है चाहे वो अनाज है चाहे साग सब्जी है या फल है वो का बेचे के लिए भैया एक बाजार के जरूरत होते है और बाजार के भाव अगर अपने सबका मालूम रहा था तो वह का बेचे में आसानी होते है और दाम भी भैया सही मिल जाते हैं, नहीं तो औने पौने भाव से लोग खरीद लेते हैं। जनपद अयोध्या की मंडी से जोन बाजार भाव आज हमें मिला बा भैया हम वह आप सबका बतावत चली। चावल सामान्य 3,080 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूं दड़ा 2,585 रुपया प्रति क्विंटल, मक्का पीली 2,365 रुपया प्रति क्विंटल, उड़द काली 8,980 रुपया प्रति क्विंटल, चना देसी 6,350 रुपया प्रति क्विंटल, मसूर 6,900 रुपया प्रति क्विंटल, अरहर की दाल 10,900 रुपया प्रति क्विंटल के भाव रही, सफ़ेद आलू 710 रुपया प्रति क्विंटल, प्याज लाल 1,260 रुपया प्रति क्विंटल, टमाटर 1,900 रुपया प्रति क्विंटल, लहसुन 6,850 रुपया प्रति क्विंटल, तरोई 2,300 रुपया प्रति क्विंटल, खीरा 1,700 रुपया प्रति क्विंटल, बैगन 2,260 रुपया प्रति क्विंटल, हरी मिर्च 3,100 रुपया प्रति क्विंटल, कद्दू 1,400 रुपया प्रति क्विंटल, अदरक 5,300 रुपया प्रति क्विंटल, शिमला मिर्च 2,600 रुपया प्रति क्विंटल, भिंडी 1,850 रुपया प्रति क्विंटल, लौकी 1,585 रुपया प्रति क्विंटल, करेला 1,300 रुपया प्रति क्विंटल, केला पक्का 2,560 रुपया प्रति क्विंटल, नींबू 9,800 रुपया प्रति क्विंटल, पपीता 2,600 रुपया प्रति क्विंटल, सेब 11,050 रुपया प्रति क्विंटल, अनार 8,100 रुपया प्रति क्विंटल, गुड़बट्टी 4,900 रुपया प्रति क्विंटल, चीनी 4,150 रुपया प्रति क्विंटल के भाव पर रही है भैया। तो यह तरह से अपने जनपद अयोध्या की मंडी से मिला बाजार भाव रहा। और रही बात खेती किसानी में मौसम, तो मौसम भैया खेती किसानी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते है, काहे से तनिके भरे में मौसम में बदलाव हुआ है और ऐसा दशा में अपन खेती किसानी जोन बाय वही पर असर हो जाता है। तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज के मौसम विज्ञान विभाग से जोन जानकारी मौसम संबंधी मिली है वो यह तरह से बा भैया, तापमान अधिकतम 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 28.0 डिग्री सेंटीग्रेड, सापेक्षिक आर्द्रता अधिकतम 84%, न्यूनतम 52%। रही बात हवा के, तो हवा की गति 4.2 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, दिशा दक्षिणी पूर्वी रही है। पूर्वानुमान है कि आवे वाले 24 घंटा में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंशिक रूप से बादल भैया छावा रह सकत है।

और एक साथे साथे धूल भरी आंधी आवे के भी संभावना है, कहूँ कहूँ भी या गरज चमक के साथ बौछार भी पड़े के संभावना है। और आज के बात कहीं भैया हमें थोड़ी देर पहले अपने आसपास के क्षेत्र में आंधी आइन रही है और बूंदाबांदी भी है, तो आगे भी संभावना बनी है। तो यह तरह से मौसम जोन बाय रहे के उम्मीद है। मूल भैया अब घड़ी के इशारा है कि आपसे ली पंचायती माँ विदा। विदा लिए से पहले हम बताओ चली कल हुए किसान हेल्पलाइन कार्यक्रम विषय रहे इस समय फल वृक्षों में समसामयिक कार्य, विशेषज्ञ रहे हैं डॉक्टर जगबीर सिंह। तो यह तरह से कल के कार्यक्रम रहे। मूल भैया अब घड़ी के इशारा है कि हम आपसे लेते हैं विदा। पंचो जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत FM बैंड पर। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 8:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 से कार्यक्रम होगा महफिले गजल। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। और रात 10:30 से आप सुनेंगे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। हमारी कल की प्रसारण सभा में सुबह 7:15 से आप सुनेंगे कार्यक्रम विवरण। 7:30 से कार्यक्रम अमृत कलश। 8:15 से कार्यक्रम सुर संगम, जबकि दैनिक कार्यक्रम प्रणाम अयोध्या आप सुन सकेंगे 8:30 से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वरिष्ठ नागरिकों का ध्यान जरूर रखें विषय पर चर्चा, विश्व प्रकाश टेक चंदानी की वार्ता, राष्ट्रीय सिंधी भाषा परिषद की स्थापना और उद्देश्य विषय पर होगी। सुबह 9:00 से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके संदेश आपके गीत। 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या। 12:30 से अवधि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। 1:00 से फेसबुक श्रोताओं के साथ फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुमने कहा। 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतांजलि। और 2:30 से महिलाओं का कार्यक्रम होगा नारी जगत, जिसमें आप सुनेंगे वृक्ष लगाएं, धरा को हरा भरा बनाएं, कामकाजी महिलाएं और उनका स्वास्थ्य विषय पर चर्चा। गीतों भरी कहानी होगी। किचन टिप्स में जानेंगे टिफिन के लिए शॉर्टकट आइडियाज। कार्यक्रम जुवाणी का समय होगा शाम 5:00। कल है गुरुवार, कल होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम युवा संवाद। विषय है कैसे बचाएं पर्यावरण को। शाम 5:30 से कार्यक्रम लोक संगीत। शाम 6:10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत शाम सुहानी। लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के आप सुन सकेंगे 6:30 से। और 6:45 से कार्यक्रम होगा किसान वाणी। यहां श्रोताओं, कल है गुरुवार, यानी कल कार्यक्रम किसान वाणी में होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम किसान हेल्पलाइन। विषय होगा इस समय फल वृक्षों में समसामयिक कार्य। विशेषज्ञ होंगे आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर जगवीर सिंह। बाजार भाव और मौसम का हाल तो होगा ही। 8:15 से कार्यक्रम गीत गुंजन। 9:15 से कार्यक्रम महफिले गजल। और 9:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो अयोध्या आप सुनेंगे। श्रोताओं, तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का अयोध्या केंद्र। 7:18 हुए हैं। 7:20 से आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। समाचार के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तन्वीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संवाददाताओं से कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए किसानों को अनुमानित 2,60,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल की अधिकतम बढ़ोतरी सूर्यमुखी बीजों के लिए की गई है। ग्रेड ए धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य के लिए 2441 रुपए प्रति क्विंटल, हाइब्रिड ज्वार के लिए 4023 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरे के लिए 2900 प्रति क्विंटल, मक्का के लिए 2410 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर दाल के लिए 8450 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग के लिए 8780 रुपए प्रति क्विंटल होगा। मंत्रिमंडल के फैसलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आभार जताया है। खरीफ फसलों की एमएसपी वृद्धि पर प्रदेश के किसानों ने खुशी जताई है। वाराणसी के किसान दुर्गेश ने बताया कि इससे किसानों को फायदा होगा।
2: जो केंद्र सरकार ने हम जैसे किसानों के लिए जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मूल्य जो घट रहा था हम किसानों को बड़ा ही घाटा हो रहा था, लेकिन एमएसपी बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की आय में भी दुगुना होगी और इस सरकार के फैसले को हम बहुत ही सराहना पूर्वक उन्हें धन्यवाद देते हैं।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन बचत उपाय तेज किए हैं। वैश्विक ईंधन कीमतों में वृद्धि के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह SPG प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी हैं। एक रिपोर्ट।
3: ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री की 7 अपीलों के अनुरूप है। सूत्रों के अनुसार काफिले का आकार कम करने के बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाएं यथावत बनी रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद किए उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किया जाए। अंकित की रिपोर्ट के साथ अमीषा।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले का आकार घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने एक उच्च स्तरीय

0: बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकों से ईंधन की खपत कम करने और सोने की अनावश्यक खरीद से बचने का आग्रह किया। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री और अन्य लोगों के वाहनों के बेड़े को तत्काल 50% तक कम करने का निर्देश दिया। उन्होंने आधिकारिक काफिलों से अनावश्यक वाहनों को हटाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने राज्य में घर से काम करने की संस्कृति को प्राथमिकता देने की भी अपील की। उन्होंने सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो सेवाओं और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों के उपयोग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों को सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना चाहिए। सप्ताह में एक बार वाहन निषेध दिवस यानी नो व्हीकल डे का भी आयोजन किया जाना चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इसी क्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधानसभा की संसदीय समितियों के पूर्व निर्धारित अध्ययन भ्रमण के समस्त कार्यक्रमों को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव का 38 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा की सदस्य हैं और वर्तमान में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपर्णा यादव के घर जाकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 मई को गोरखपुर में अंचल के पहले और प्रदेश के चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज परियोजना स्थल का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
2: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कार्य में तेजी लाने और सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने पर जोर दिया। गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर स्थित ताल नदौर में यह इंटरनेशनल स्टेडियम 392.94 करोड़ रुपए की लागत से आकार लेगा। निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 63.39 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष CBSE की कक्षा 12वीं की विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी विषयों की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। CBSE ने एक बयान में बताया कि 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% है, जबकि छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। मुख्य सचिव SP गोयल ने आज जनगणना 2027 के तहत प्रदेश में चल रही स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। दुग्ध उत्पादक कंपनी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जो कल से पूरे देश में लागू हो जाएंगी। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में बारिश और तेज आंधी की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। सीतापुर जिले में कई स्थानों पर ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ गिरने से विद्युत आपूर्ति बाधित हुई। वहीं कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। अमरोहा में भी दिन में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने कल से प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में 16 और 17 मई को लू चलने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा। ग्रेड ए धान के लिए 2461 रुपए और

अरहर दाल के लिए 8,450 रुपए प्रति क्विंटल होगी एमएसपी। वैश्विक ऊर्जा संकट के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटाया सुरक्षा काफिले का आकार। प्रदेश में भी ईंधन बचाने के विभिन्न उपायों पर जारी हुए दिशा निर्देश। सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित। 85% से ज्यादा विद्यार्थी पास, छात्राएं रहीं अव्वल। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। सीतापुर और कानपुर देहात में गिरे ओले। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं। अब सुनिए विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे गोलमाल फिल्म से, गुलजार ने इसे लिखा और आरटी बर्मन का संगीत। और अब अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में, प्रेम पुजारी फिल्म का नाम है।

राग भैरवी पर आधारित ये गीत था और इसे आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। सरगम फिल्म से इसे लिया गया था। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं राग झंझोटी पर आधारित।

जिद्दी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन की तर्ज थी। इस गीत के साथ ही आज का राग अनुराग प्रोग्राम यही खत्म होता है। आपको बता दें कि ये गीत राग मिश्र पीलू पर आधारित था।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी।

ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: सुनिए झलकी ना बाबा ना। लेखक है संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीख।
1: कौन है? अरे कौन है भाई?
2: क्या है जी, कौन है? मुझे तो डर लग रहा है।
1: अरे बिल्ली होगी, सो जाओ।
2: नहीं जी, एक बार उठ के देख तो लो, तुम डर तो नहीं रहे?
1: तुम भी क्या बात करती हो, मैं भी कहीं डरता हूँ? देखता हूँ। अरे
2: क्या हुआ?
1: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं कह रहा था ना बिल्ली होगी, वही थी।
2: तो इसमें चीखने की कौन सी बात थी, डर गए क्या?
1: अरे नहीं, वो अचानक कूदी ना तो चीख निकल गई।
2: मैं तो कहती हूँ जी, मुझे तो बहुत डर लगता है।
1: तुम्हें डरने की क्या बात है, मैं तो हूँ ही।
2: वो बात नहीं, यूं भी दिन में तुम ऑफिस चले जाते हो, पीछे मैं अकेली रह जाती हूँ, शाम को भी कभी कभी देर से आते हो, ऐसे में मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ।
1: तो मैं क्या करूँ, काम तो करना ही पड़ेगा ना।
2: वो बात नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि वो पड़ोस वाली मिसेस सिंह है ना, कितने चैन से रहती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, चाहे घर पर कोई हो या ना हो।
1: वो कैसे?
2: उनके पति ने जब से अल्सेशन कुत्ता पाला है, तब से वो सारा घर उसी कुत्ते के भरोसे छोड़कर चली जाती हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
2: हाँ, और वो कुत्ता भी बहुत खतरनाक है, किसी अजनबी आदमी को तो घर के पास फटकने तक नहीं देता।
1: तो फिर मैं क्या करूँ, तुम्हारा मतलब क्या है?
2: सुनो जी, एक कुत्ता पाल लेते हैं, एक अच्छा सा ला दो ना, मुझे भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होगी।
1: अच्छा बाबा, ला दूंगा, लेकिन इस वक्त तो सो जाओ, रात बहुत बीत चुकी है।
2: नहीं, पहले वादा करो कि तुम एक कुत्ता ले आओगे। कितना अच्छा होगा जब मैं भी मिसेस सिंह की तरह कहीं भी आ जा सकूंगी, कुत्ता घर की रखवाली करेगा। बोलो लाओगे ना?
1: हाँ हाँ ले आऊंगा, अब तो सो जाओ वरना मैं उठकर बाहर चला जाऊंगा।
2: ओके डार्लिंग, गुड नाइट। ओहो मिसेस सिंह और मिसेस शर्मा, आइए आइए।
3: हेलो गीता, कैसी हो?
2: बिल्कुल ठीक, आइए आइए अंदर आइए।
3: सुना है आपने बड़ी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाला है, इसीलिए हमने सोचा चलो देखकर आते हैं। और फिर हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है, पहचान जाएगा तो काटेगा भी नहीं।
4: हाय, मेरा तो बस 14 सुई से दिल घबराता है, बड़ा दर्द होता है।
3: अरे मिसेस शर्मा, अब जमाना कहाँ से कहाँ चला गया है, अब तो कुत्ते को पहले ही एंटी रैबिक सुई लगवा दो तो फिर कुछ भी असर नहीं होता।
4: अरे भाई, काटने के बाद भी 14 सुई का क्या भरोसा, जब बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर जाते हैं फिर तो आदमी भौंक भौंक कर दम तोड़ता है, पानी देखते ही काटने को दौड़ता है और फिर हाइड्रोफोबिया।
2: अच्छा, कहाँ लगती है ये एंटी रैबिक सुई?
3: ये तो किसी भी पशु चिकित्सालय में लग सकती है,
4: इसीलिए मैं तो कुत्ता पालती ही नहीं, यूं भी जानवरों से मुझे बड़ी नफरत है। हमारे पति देवी बड़े बहादुर हैं, क्या मजाल कोई दरवाजे पर फटक जाए।
3: उनकी तो मुझे देखकर अच्छे अच्छों की घिघी बन जाती है।
4: हाँ आपने सच्ची कहा है मिसेस सिंह, उन्होंने तो मुझे कह रखा है कि रात को अगर लगे कि कोई चोर आया है तो बस कह देना पहलवान जी वो अपना डंडा कहाँ रखा है, और बस चोर डर कर अपने आप ही भाग जाएगा।
2: मिसेस सिंह, आपके कुत्ते का नाम क्या है?
3: भाई दीवे, मेरा कुत्ता नहीं कुतिया है, कुत्ते से ज्यादा तेज होती है, उसका नाम लूसी है।
2: कितना प्यारा नाम है।

0: जानती हो गीता, मेरी कुतिया पर रोजाना 200 रुपए खर्च होते हैं। सवेरा होने से लेकर रात सोने तक उसकी देखभाल होती ही रहती है। अच्छे साबुन से नहलाना, बाल संवारना, परफ्यूम लगाना, बिस्किट दूध वगैरह वगैरह।
1: हाय मिसेस सिंह, कितनी खुशकिस्मत हैं आप, इतना प्यारा चौकीदार मिला है आपको।
0: और वफादार इतनी कि देखते ही तुम हिलाने लगती है।
1: मैंने तो जब भी अपने पति से कहा कि हमें भी ऐसा ही एक वफादार कुत्ता ला दो तो बस भड़क उठे। वैसे तो वो मेरा कहना बहुत मानते हैं।
0: अरे भाई गीता, तुम्हारा कुत्ता है कहाँ? हम तो उसे देखने आए हैं।
1: अभी बुलाती हूँ। प्रीतम, अरे हमने कुत्ता बुलाने को कहा है।
2: ये मेरे कुत्ते का ही नाम है भाई, और कोई नाम लेने पर वो सुनता ही नहीं। प्रीतम कहते ही दौड़ कर आता है। प्रीतम आजा, आओ आओ आओ।
1: आय हाय, कितना प्यारा कुत्ता है, बरसा सफेद।
2: जानती है, अब के डॉग शो में इसी नस्ल का कुत्ता फर्स्ट आया है।
0: वाह, आओ आजा आजा।
2: ऐसे नहीं, प्रीतम आओ आओ ना, आओ आओ।
1: अरे वाह, कितना समझदार है,
0: बहुत प्यारा कुत्ता है। अरे वाह, शेर तो मेरी गोद में बैठ गया।
1: आपके पास तो यूं बैठा है जैसे पहले की पहचान हो।
0: नहीं जी, जानवरों को प्यार से पुचकारो तो फिर वो दुम हिलाते ही रहते हैं।
1: आपको तो इस बात का बड़ा तजुर्बा है मिसेस सिंह।
0: अरे शे क्या, छी छी, इसने तो मेरी 1000 रुपए की साड़ी ही खराब कर दी।
1: ओह, बहुत ही बदबू है, बड़ा बेशर्म कुत्ता है। ये जानवर होते ही ऐसे हैं, जहाँ पाया वहीं गंदा कर दिया।
0: आज ही तो निकाली थी ये साड़ी। हाय, अब मैं घर कैसे जाऊंगी?
2: ऐसा भी क्या है मिसेस सिंह, थोड़ा सा पानी से साफ कर लीजिए।
0: नहीं जी, पानी वानी क्या, अब तो घर जाकर ही साफ करूंगी। चलो भी मिसेस शर्मा।
3: ओफो, आज तो बहुत थक गया। सुनो, एक कप चाय तो पिला दो।
2: दूध नहीं है।
3: क्या कहा?
2: हाँ, अपना प्रीतम पी गया, उसके लिए भी तो चाहिए। और सुनो, तुम उसको अभी अस्पताल ले जाकर एंटी रेबिक सुई तो लगवा दो। जानते हो, किसी दिन उसका दांत भी लग गया तो आदमी भौंक भौंक कर मरेगा। और हाँ, एक अच्छा सा साबुन, कंघी, तौलिया, बिस्किट वगैरह डॉक्टर से पूछ कर ले आना। आते वक्त दूध भी ले आना, तभी चाय भी बनेगी।
3: गीता, इस वक्त मैं इतना थक गया हूँ कि अब मैं आराम करूंगा।
2: जाओ ना, सोचो किसी दिन उसका दांत हमें या तुम्हें लग गया तो। मिसेस सिंह कह रही थी, हाय भगवान कैसा ना करे।
3: मैं अब कहीं नहीं जा सकता, इतनी सारी फरमाइशें, अपने लिए तो कुछ हो नहीं पाता, ऊपर से कुत्ते का खर्चा।
2: तुम नहीं जाओगे?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: यही फर्क इंसान और जानवर में होता है। देखो, हमारी अभी कितने दिनों की पहचान है, फिर भी कितने प्यार से दुम हिला रहा है।
4: टेलीग्राम
3: आया।
5: किसका है जी?
3: तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
5: हाय पापा, शादी के बाल पहली बार आ रहे हैं। ऐसा करो, दूध ले आओ ना, पापा को तो हर पल चाय चाहिए।
3: मैं तो नहीं जाऊंगा, सारा घर बदबू से भरा पड़ा है, हर जगह इस कुत्ते ने गंदगी कर रखी है।
5: वो तो क्या है जी, मैं सफाई वाली के भरोसे रह गई, वो आज आई ही नहीं। खैर, उसे मैं साफ कर दूंगी, तुम दूध ले आओ ना।
3: अच्छा बाबा, जा रहा हूँ। मरता क्या ना करता, इनको भी आज आना था। हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ रहा तो मेरा तो कबाड़ा हो जाएगा।
5: हाय राम, बहुत थक गई, ये गंदगी साफ करते करते सिर जकरा गया। बदबू के कारण तो उल्टी सी लग रही है, अब तो कुछ करने को जी भी नहीं चाह रहा। लेकिन क्या करूं, पिताजी भी पहली बार आ रहे हैं। हाँ,
3: ये लो दूध, पहले मुझे चाय पिला दो।
5: अच्छा जी।
3: अरे ये कुत्ता,
5: अरे अरे देखो तो,
3: अरे
5: कौन है, क्या हुआ?
3: ये कुत्ता तो सर दर्द बन गया।

0: अब पता नहीं क्या हुआ, कौन है?
1: अरे भाई मैं हूँ, अरे छुड़ाओ तो इस कुत्ते से।
2: पिताजी अजी जल्दी छुड़ाओ वरना वरना काट खाएगा। हाय राम, खून लगता है काट खाया। हाय अब क्या होगा, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि तुरंत जाकर सुई लगवा दो। काट लिया ना। हाय पिताजी, मेरे पिताजी पहली बार तो बेचारे आए थे। अजी मिसेस सिंह कह रही थी कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर पानी देखते ही हाय मुझसे तो कहा भी नहीं जाता। ये कुत्ता नहीं मौत का पैगाम है।
1: बेटी ये क्या कह रही है तू?
0: ये कह रही है ससुर जी कि कुत्ते का काटा आदमी भौंक भौंक कर मरता है।
2: अब क्या होगा, अब तो आपको 14 सुई भी लगेगी। तुम डॉक्टर को बुलाओ जी।
1: डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर क्या?
2: पिताजी आपको कुत्ते ने जो काट लिया है ये खून।
1: अरे ये खून नहीं बेटी, ये तो दवा की शीशी थी जो फूट गई। कुत्ता मेरे ऊपर गिरा इसलिए फूट गई। अब सारे कपड़े भी खराब कर दिए।
2: तो इसने आपको काटा नहीं?
1: नहीं बेटी बिल्कुल नहीं।
2: सुनो जी तुम इस कुत्ते को अभी हटा दो।
0: लेकिन तुम जो अकेली रहती हो उसका क्या होगा?
2: ना बाबा ना, मैं अकेली रह लूंगी लेकिन ये सफाई ये देखभाल मुझसे ना हो सकेगी। इसको अभी मेरी नजरों से दूर कर दो, दूर कर दो इसको।
3: अभी आपने झलकी सुनी ना बाबा ना। इसके लेखक थे संजय श्रीवास्तव, निर्देशक गोविंद पारीख और ये झलकी आकाशवाणी जोधपुर की प्रस्तुति थी। हवा महल कार्यक्रम समाप्त हुआ।

जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे
1: जय घोष वंदे मातरम
0: लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवन

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:15 और 18 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्वविख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: सुनिए,
3: कहिए, कहिए,
2: सुनिए। भारत की आवाज को वैश्विक स्तर पर पहुंचाती और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर चलती हुई आकाशवाणी आज 23 भाषाओं में सामाजिक आर्थिक विविधता और प्रसारण संगठन के पैमाने के संदर्भ में दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क बन चुकी है। 1923 में रेडियो क्लब की शुरुआत के बाद 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के साथ भारत में रेडियो की औपचारिक शुरुआत हुई। सन 1930 में रेडियो का राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम रखा गया इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और 8 जून 1936 को इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में ऑल इंडिया रेडियो के अलावा आधिकारिक तौर पर इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी अपने 90वें वर्ष में पहुंच चुकी है, जिसका जश्न पूरा देश मना रहा है और जन जन में इस आकाशवाणी की आवाज गूंज रही है।
0: कार्यक्रम गीत गुंजन सुनने वाले सभी श्रोताओं को विवेकानंद का नमस्कार।

0: इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार।

संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म थी तेजाब। अब लीजिए सुनिए उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज, गीत समीर का, संगीत आनंद मिलिंद का, फिल्म हीरो नंबर 1।

उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में भी आप सुन रहे थे समीर का लिखा हुआ गीत। संगीत था आनंद मिलिंद का, फिल्म थी हीरो नंबर वन। और आप सुनिए अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज, गीत जावेद अख्तर का, संगीत जतिन ललित का, फिल्म है यस बॉस।

0: अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में भी हम सुन रहे थे जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत। संगीत था जतिन और ललित का, फिल्म थी यस बॉस। कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
1: हेलो
2: सुनो टेलीफोन नंबर,
3: माय नंबर इज
4: 7376804090। लाइव अयोध्या प्रोग्राम आप सुनते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सुबह 9:30 से, शनिवार और रविवार को दोपहर 1 बजे से और रात 9:30 से लेकर 10:30 तक, जिसमें मंगलवार को हेलो अयोध्या प्रोग्राम रात 10 बजे तक। हेलो अयोध्या में अपनी पसंद का गाना सुने और दिलचस्प बातें भी करें। 7376804090। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, आकाशवाणी अयोध्या।
5: घर घर जन जन तक, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने वाला अयोध्या का रेडियो स्टेशन।
6: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
4: ये है आपका अपना FM रेडियो चैनल 101.9 आकाशवाणी अयोध्या, जो आपके प्रोडक्ट की बनाए एक खास पहचान और आपके कारोबार को दे एक नई उड़ान।
5: तो देर क्यों जनाब, किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं
7: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashwani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashwani@gmail.com।
8: शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी अयोध्या।
9: मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद है नए भारत की।
10: नहीं अछूता हो जिस
9: महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात, प्रधानमंत्री के साथ। मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। मन की बात,
0: कार्यक्रम गीत गुंजन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से। संगीत है अनु मलिक का, गीत सईद कादरी का, आवाज श्रेया घोषाल की, फिल्म है जहर।

0: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। और गुजरात के गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारत्तोलन चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने 2 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी।

0: दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
1: भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स हैं। तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इसे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीज का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसीफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6,300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धोलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि ये नागपुर हवाई अड्डे के लिए क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को देश के करोड़ों किसानों को अपने उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि इस निर्णय से देश के किसानों के जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जांच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन की खपत कम करने की अपील का बड़ा प्रभाव पड़ा है और पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले का आकार काफी कम करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी ऐसा ही कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वाहनों के भीड़े में तत्काल कमी करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की हवाई यात्राओं में 50% की कटौती का आदेश दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों के सरकारी वाहनों की संख्या सीमित करने की घोषणा की है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों, ऊर्जा सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा।
1: During the visit, यात्रा के दौरान दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
2: People to people connect.
0: श्री जॉर्ज ने बताया कि 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
2: The visit to the 4 European countries.
1: 4 यूरोपीय देशों की ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को इसी वर्ष अंतिम रूप दिया गया है। इस दौरान 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। भारत इन देशों को मेक इन इंडिया अभियान के अहम साझेदार के रूप में देखता है। यात्रा का मुख्य उद्देश्य व्यापार और निवेश, हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्टार्टअप और आपसी जनसंपर्क को मजबूत करने का रहेगा।
2: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
0: संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की वापसी का उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था अब वापस लाई जा रही है।
3: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है उस दिशा में हम आज ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। US एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल होने वाले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों के शिखर सम्मेलन से पहले आज नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने आश्वासन दिया है कि बाहरी प्रतिस्पर्धा के बावजूद भारत के लिए ऊर्जा आपूर्ति संबंधी समझौतों का पालन किया जाएगा। श्री लावरोफ ने कहा कि रूस ये सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा कि अनुचित प्रतिस्पर्धा द्विपक्षीय समझौतों को नुकसान न पहुंचाए। एयर इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में कमी लाने का फैसला किया है। इसके लिए विदेशी मार्गों पर कुछ सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी गई हैं। ये फैसला वायु क्षेत्र नियंत्रण और विमान ईंधन के ऊंचे मूल्य को देखते हुए किया गया है। ये कटौती इस वर्ष जून से अगस्त तक के लिए होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार ने इन मामलों में भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। असम सरकार 26 मई को समान नागरिक संहिता विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद ये घोषणा की। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक विवाह की कानूनी उम्र, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों सहित कई मुद्दों पर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक प्रचलन इस विधेयक के दायरे से बाहर रहेंगे।
4: इसे असम की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया गया है। जनजातीय समुदायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही राज्य के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली सभी रस्मों, परंपराओं और रीति रिवाजों को भी इससे बाहर रखा गया है।
5: आउटसाइड द स्कोप ऑफ यूनिफॉर्म सिविल को।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने 5वीं बार पद ग्रहण करने के बाद स्वास्थ्य सेवा, रोजगार, शिक्षा, खेल और

0: औद्योगिक विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इसमें गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को 3 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना, इंदिरा गांधी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और मॉडल विद्यालय स्थापित करना शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज लाडली बहना योजना की 36वीं किस्त नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी से जारी की। उन्होंने 1,25,00,000 से अधिक लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा नगर निगम चुनावों में भाजपा की जीत पर लोगों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत ने फिर स्पष्ट कर दिया है कि जनता ने भाजपा एनडीए सरकार की विकास और सुशासन नीतियों पर अटूट विश्वास व्यक्त किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 50 अंक बढ़कर 74,609 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 33 अंक की बढ़त के साथ 23,413 पर स्थिर हुआ। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 7 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी 95 रुपए और 70 पैसे पर बंद हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक ब्रेंट क्रूड $107.62 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
0: गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारत्तोलन प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलो भार वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीता है। उन्होंने स्नैच में रजत पदक और कुल 194 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। उधर थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु, मालविका बंसोड़, देविका सिहाग, लक्ष्य सेन और किदांबी श्रीकांत सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र में आज नाशिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभ मेले के लोगों का अनावरण किया गया। इसमें त्रिशूल दर्शाया गया है और गोदावरी नदी को शिवलिंग के रूप में चित्रित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोगो भारत की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और राष्ट्रीय एकता का सशक्त संदेश देता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 37,500 करोड़ रुपए की कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के संवर्धन को भी स्वीकृति दी। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। देश भर में कई स्थानों पर छापेमारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काफिले का आकार कम किया। भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं ने भी मितव्ययिता के उपाय शुरू किए। पश्चिम बंगाल सरकार का भर्ती घोटालों की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही पर सभी अंतर्राज्यीय प्रतिबंध हटाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Union Cabinet increases minimum support prices MSP of 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Cabinet also gives nod for promotion of surface coal and lignite gasification projects worth 37,500 crore rupees. CBI arrests 5 persons in connection with NEET UG 2026 paper leak case. Raids continue in several states. Prime Minister Narendra Modi reduces his convoy size, prompting BJP chief ministers and other leaders to adopt austerity measures. West Bengal government decides to hand over recruitment scam probes to CBI, lifts all interstate restrictions on the movement of essential products. And in weightlifting, India's Ganeshwari Yadav bags a silver and bronze at Asian Senior Championships in Gandhinagar. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CC

0: क्या आप चाहते हैं कि आपके उत्पाद, सेवाएं या संदेश पहुंचे अयोध्या के हर घर तक? तो जुड़िए आकाशवाणी अयोध्या से, जहां हर शब्द पहुंचता है जन जन तक। आकाशवाणी अयोध्या आपके व्यवसाय, संस्थान और सेवाओं के प्रचार प्रसार का सबसे विश्वसनीय माध्यम। इतना ही नहीं, अपनी शादी की सालगिरह, जन्मदिन की बधाई आप प्रसारित कर सकते हैं आकाशवाणी अयोध्या से। अपना विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें आकाशवाणी अयोध्या, धारा रोड, बेगमगंज, गढ़ेया, अयोध्या। सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 से शाम 6 के बीच। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी का पता है ayodhyaakashvani@gmail.com ayodhyaakashvani@gmail.com।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महफिले गजल। हम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सजीव फोनिन। हेलो अयोध्या।
2: रखो पर्यावरण का मान, पशु पक्षी और पेड़ है धरती की जान। वन्य जीव जंतु और अनमोल प्राकृतिक संसाधन जो इस पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखने में मदद कर रहे हैं, आइए हम इनको बचाने का संकल्प लें। धरती को हरा भरा, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाएं, पानी, बिजली और प्राकृतिक गैसों का कम से कम उपयोग करें। पर्यावरण को जहरीले धुएं, रसायनों, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक पॉलिथीन और हर तरह के प्रदूषण से मुक्त रखें, ताकि ये धरती इसी तरह से मानव सभ्यता की रक्षक बनी रहे।
3: अवध क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं विश्वसनीय आंखों का अस्पताल आपका अपना श्री राम नेत्रालय। 60,000 से ज्यादा आंखों का सफल

0: ऑपरेशन कर चुके वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर संजीव थापर एवं डॉक्टर पूजा थापर द्वारा संचालित विश्व स्तरीय सुविधाओं एवं उपकरणों से सुसज्जित आपका अपना अस्पताल रामघाट चौराहा परिक्रमा मार्ग अयोध्या आप सबकी सेवा में समर्पित कैशलेस इंश्योरेंस एवं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। कॉल करें 9559242404 और 7800037222।
1: अब आपके शहर में भरोसेमंद इलाज
2: कैंसर हृदय डायलिसिस हड्डी और ENT का इलाज आयुष्मान कार्ड द्वारा मुफ्त
1: फ्री एम्बुलेंस की सुविधा
2: झुनझुनवाला सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायबरेली रोड अयोध्या कॉल करें 9044207070।
3: मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाने।
4: अरे अभी पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग में जो दिलवाया था उसका क्या होगा।
3: नहीं मुझे मेरी सहेली वाला ही चाहिए, मुझे वो दुकान भी मालूम है उसने जहाँ से खरीदा था।
4: अच्छा वेरी स्मार्ट।
5: क्या आप चाहते हैं आपकी दुकान को सभी लोग जाने और ले जाएं वहाँ से सामान?
4: हाँ हाँ क्यों नहीं।
5: तो फिर किसी भी कार्य दिवस में प्रोडक्ट का विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी अयोध्या से
6: या हमें ईमेल करें ayodhyaakashvani@gmail.com पर।
4: ayodhyaakashvani@gmail.com शुभवाणी लाभवाणी आकाशवाणी अयोध्या।
7: जी हाँ श्रोताओं, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा लाइव फन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या। बस आपको मिलाना है हमारा नंबर। जी नंबर तो वही है 7376 80 40 90 और फिर होगी हमारी और आपकी बातें लाइव फन इन प्रोग्राम। करेंगे बातें, सुनेंगे गाने, मिलाइए फोन। हेलो हेलो
8: हेलो जी
7: जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाए हैं?
8: जी मैं ग्राम दुड़े खेड़ा तहसील बल्लू और जिला टीकौन से अनिल यादव बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से।
7: अच्छा मध्य प्रदेश से, बहुत दूर से फोन लगाया आप।
8: जी जी
7: तो वहाँ प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी के?
8: जी जी आकाशवाणी अयोध्या में रात में जो हेलो अयोध्या पे सुनता ही हूँ सर।
7: अच्छा अच्छा, और क्या करते हैं अनिल जी?
8: अभी मैं किराने की दुकान रखे, खेती किसानी भी है।
7: अच्छा अच्छा, तब तो बढ़िया है फिर तो, मतलब आप अच्छी अच्छा काम कर रहे हैं, दुकान है तो सबकी आवश्यकताएं पूरी कर रहे हैं।
8: जी सर।
7: हाँ कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
8: इज्जत फिल्म का गीत सुनेंगे सर।
7: अच्छा इज्जत का कौन सा गाना सुना?
8: ये दिल नहीं लगता तुम बिन, गाना जो बोल है ये दिल नहीं लगता तुम बिन।
7: हाँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल है। तो आप अकेले प्रोग्राम सुनते हैं और भी लोग आपके साथ प्रोग्राम सुनते हैं?
8: और भी सुनते हैं सर, ऑनलाइन सुनते हैं मोबाइल से। तो साउंड वगैरह लगाते हैं तो रात में सब लोग सुनते हैं।
7: अच्छा अच्छा, और सबसे अच्छा फायदा यह है कि आप किराना दुकान पे हैं तो अपने साउंड वगैरह जो भी आते होंगे सामान खरीदने वो भी सुनते होंगे सब।
8: जी जी
7: क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतनी दूर से भी आपकी जो आकाशवाणी अध्यक्ष के प्रति मोहब्बत है वो अच्छी लगी।
8: जी सर, मैं चौथी
7: वेव फोन लगा। अच्छा पहली बार लगा है?
8: नहीं नहीं पहली बार नहीं, मेरी चौथी वेव बात हो रही है।
7: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कार्यक्रम के पहले कॉलर। तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, सुनिए। ठीक है श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन, लाइव फोन इन प्रोग्राम है हेलो अयोध्या। जी हाँ नंबर वही है 7376 80 40 90। करना कुछ नहीं है, फोन पर डायल करना है, नंबर मिल जाएगा। हालांकि कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन करते रहिए मिलेगी कॉल।

0: कह दो।
1: श्रोताओं तुम ही कह दो यानी फोन मिलाओ, लगातार आप फोन मिलाते रहें। लाइव फोन इन प्रोग्राम है हेलो अयोध्या। मैं हूं विवेकानंद और हमारे साथ कंट्रोल रूम से हैं इंजीनियर अश्विनी शुक्ला। तो बस मिलाते रहिए फोन, फिर हम आपसे कहेंगे हेलो हेलो।
2: हाँ हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाए हैं
2: सर? गांव विचिया पोस्ट के पास मिला, फैजाबाद अयोध्या।
1: अच्छा, तो तब तो पास से ही लग गया फोन आपका।
2: सर नाम है राहुल कुमार।
1: नाम है क्या?
2: राहुल कुमार।
1: अच्छा राहुल जी, तो क्या करते हैं आप राहुल जी?
2: सर खेती बाड़ी करते हैं सर।
1: तो इस समय कहाँ हैं, घर पर कि खेत की रखवाली में?
2: घर पर हैं, घर पर हैं।
1: अच्छा, अच्छा, तो कौन सी फसल है इस समय खेत में? हेलो
2: सर,
1: जी बताए। अरे गाना तो हम सुनवाएंगे ही हुजूर राहुल जी। अरे हम पूछ रहे हैं कि इस समय कौन सी फसल खेत में है?
2: हेलो सर,
1: हम कह रहे हैं कौन सी फसल इस समय खेत में है?
2: सर इस समय जैसे छुट्टी पाए हैं घर पर हैं।
1: नहीं नहीं, जैसे खेती बाड़ी करते हैं हम ये पूछ रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस समय कौन सी खेती हो रही है, इस समय किस कौन सी फसल है खेत?
2: सर गन्ना लगा दिए हैं, गन्ने की खेती कर रहे हैं।
1: अच्छा, तो लगभग कितने दिन में ये हो जाएगा तैयार?
2: सर एक साल लग जाएगा।
1: एक साल लग जाएगा? सही है। लेकिन अरे हम बहुत अच्छे हैं। गन्ने में एक बीमारी भी हो जाती है, बहुत मशहूर बीमारी है, जानते हैं
2: क्या सर?
1: गन्ने में एक बीमारी होती है, बहुत मशहूर बीमारी होती है, गन्ना खराब हो जाता है।
2: नहीं नहीं, उसका उसका सब इलाज है सर।
1: अच्छा, सब कर रखे हो जो लाल लाल हो जाता है? अच्छा, मतलब सारी आपने पूरी तैयारी कर रखी है उसके लिए ना? चलिए बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दिल वाले फिल्म का कौन सा गाना बजा दें, कोई भी?
2: जीता था जिसके लिए।
1: जीता

0: होती गन्ना खराब हो जाता है?
1: हाँ, नहीं, उसका उसका सब इलाज है सर।
0: अच्छा, सब कर रखे हो जो लाल लाल हो जाता है? अच्छा, मतलब सारी आपने पूरी तैयारी कर रखी है उसके लिए ना?
1: हाँ सर।
0: चलिए बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो दिल वाले फिल्म का कौन सा गाना बजा दें, कोई भी?
1: जीता था जिसके लिए।
0: जीता था जिसके लिए, ठीक है, हम ये गाना आपके लिए प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: हाँ हाँ, धन्यवाद सर।
0: स्वागत है श्रोताओं, मिलाते रहिए फोन। जी हाँ, लाइव फोनिंग प्रोग्राम हेलो अध्या, नंबर 73-76-80-40।

0: लाइव फन इन प्रोग्राम हेलो अध्याप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्याय केंद्र से, एक कॉलर लाइन पर हिंद से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका। कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: नमस्ते भैया।
0: नमस्ते भैया, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मसौदा से, मसौदा से भैया।
0: अरे वाह, क्या बात है, तब तो बहुत पास से बोल रहे हैं आप।
1: 30 साल में आज पहली बार पकड़ा है।
0: 30 साल में पहली बार?
1: हाँ, 30 साल से रेडियो सुन रहा हूँ।
0: अपना नाम भी बताइए।
1: हमारा नाम सुल्तान है, मैं अंडे की दुकान लगाता हूँ मसौदे पे।
0: क्या बात है सुल्तान जी, आज आपका कॉल लग गया 30 साल बाद।
1: ये मेरे बेटे से बात कर लूँ, ये भी रोज मिलाता है, बात नहीं हो पा रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बात कराइए। नमस्ते, कैसे हो आप?
2: ठीक है।
0: अरे हम बहुत अच्छे हैं, आप बताओ कैसे हो?
2: आप लोग बहुत अच्छे हैं।
0: अरे क्या बात है,
1: मैं सब देखता हूँ।
2: आप जितना चैनल है सब देखता हूँ।
1: सुबह रेडियो 7 बजे शुरू हो जाते, 12 बजे पर देखिए 11:30।
2: सुबह 7 बजे रेडियो चालू करता है, 12 बजे रात के बंद करते हैं।
0: अच्छा, तो आपको अब्बू बता रहे हैं सब? क्या क्या करते हैं आप?
1: मोती नगर में।
2: मोती नगर।
0: हेलो
2: हेलो मोती नगर।
0: अच्छा नहीं, हम कह रहे हैं आप पढ़ते हैं? हेलो
1: हाँ सर।
0: हाँ, अरे हम कहे कहाँ चला गए, उनसे बतवाना रहा हमका, पता नहीं कहाँ चला गए। हरी हरी,
1: पढ़ते हैं।
0: अच्छा,
1: पढ़ते हैं मोती नगर में, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं।
0: अच्छा, मोती नगर में पढ़ते हैं, चलिए ठीक है। कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? हेलो
1: हेलो।
0: हाँ, हमके कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे?
1: देश प्रेमी का।
0: देश प्रेमी का कौन सा गाना?
1: मेरे देश प्रेमी हो, आप प्रेम करो।
0: अच्छा, तो इस समय भी वही है क्या, आप दुकान पर ही अपने? हेलो,
1: शुक्रिया, धन्यवाद भैया।
0: अरे आपके पास रेडियो बहुत तेज बज रहा है, इसीलिए आप सुन नहीं पाए।
1: अब हम डेली मिलाएंगे, आज पहली बार पकड़ा है, हमको बहुत खुशी हो रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मिलाइएगा फोन, बिल्कुल मिलाइएगा।
1: ठीक भाई, नमस्ते।
0: नमस्कार श्रोताओं। बस देखिए, खुशी आपने, ये आपको भी हो सकती है जी। बस फोन मिलाइए, बात करिए। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अध्याय।
3: नफरत की

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अयोध्या में कॉलर आ रहे हैं, कॉल आ रही है इनकी। हेलो
1: हेलो
0: हेलो जी, स्वागत है आपकी, कॉल लग गई। कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: ब्रज किशोर कुशवाहा बोल रहे
0: हैं सर। ब्रज किशोर कुशवाहा जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम गोंदन जिला दतिया एमपी।
0: दतिया मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ।
0: क्या बात है, तो प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी कितनी दूर से?
1: बराबर सुनते हैं।
0: कौन सा प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है?
1: एक तो सुबह अमृत कलश लगता है। अमृत कलश
0: जी बिल्कुल। और कौन सा?
1: अपना शाम के ये वाणी चलता है, ये आलू फरमाइश अपना चलता है ये।
0: वाह, इसका मतलब आप प्रोग्राम सारे सुनते हैं फिर?
1: हाँ।
0: तो आज
1: फोन ही लगा, मैंने गैप होगा।
0: मतलब उम्मीद नहीं थी, लग गया फोन ना?
1: कौन सा लगा? मैंने गैप हुआ है, 24 तारीख को लगाओ तो फोन।
0: अच्छा, 24 को लगाए थे फिर दोबारा लग गया?
1: हाँ, 24 को लगाओ तो अगले लगाओ जब से 24 पे।
0: नहीं ठीक है, वो तो कोशिश करो तो फोन लग जाता है ना। तो आपको कौन सा गाना सुनवा दे, कौन सी फिल्म का?
1: चले मैं बाहर आने तक।
0: हेलो।
1: हाँ हेलो।
0: हाँ बोलिए।
1: हाँ, फिल्म बाहर आने तक।
0: बाहर आने तक तो
1: मोहब्बत इनायत सितम देखते।
0: अच्छा, ऐसा क्या है? हेलो। हम कहे अच्छा ये बताइए, क्या करते हैं
1: आप? मोटर पंखा भरवे को काम करे थे।
0: किस चीज का?
1: मोटर पंखा भरवे।
0: अच्छा अच्छा, तो हाँ, तो इस समय तो काम होगा ही क्योंकि गर्मी आ गई है।
1: हाँ, जो जा समय चलता है खूब।
0: तो अच्छा, मोटर ज्यादा, वो मोटर पंखा वाला सही होता है या कूलर सही होता है?
1: कूलर का काम अलग होता है, मोटर का अलग होता है। मोटर मोटर बोर के काम है यहाँ से पानी देने के लिए। और पंखा अपने घर में कूलर है तो हवा के काम यहाँ से।
0: मतलब दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं ना?
1: हाँ, वो तो अपना अपना काम कर रहे हैं। आप है तो आप अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं।
0: हाँ, सही कह रहा है। तो कौन ये जो बताए थे अभी बाहर आने तक, इसका कौन सा गाना कहे थे?
1: मोहब्बत इनायत सितम देखते हैं।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हमने निकाल लिया है, प्ले कर रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम आकाशवाणी के सुनते रहिए और बस ऐसे ही मस्त रहिए। ठीक है, कुछ सोच रहे हैं आप कुछ वहाँ जी, हमें लग रहा है।
1: नहीं, सो नहीं रहे अब, कैसे सो रहे अपन?
0: सो नहीं, सोच रहे हैं आप कुछ कुछ?
1: नहीं, सोच नहीं रहे।
0: हाँ, जैसे आप बात कर रहे हैं फिर कुछ रुक जा रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं रुक जा रहे हैं, तो हमें लगता है जैसे
1: तो
0: कुछ
1: तो अब जितनी बात होती है उतनी करो, एक्स्ट्रा कैसे कर लेंगे?
0: हाँ ये तो है, एक्स्ट्रा तो नहीं हो पाएगी, एक्स्ट्रा तो उतनी बात होगी जितनी हो सकती है ना। चलिए ठीक है, बढ़िया लगा आपसे बात करके। हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर रहे हैं, सुनिए।
1: धन्यवाद
0: जी।

0: लाइव फन इन प्रोग्राम हेलो अध्याप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अध्याप केंद्र से। जी हाँ, आधी घंटे का सफर पूरा हो रहा है, यानी ये टिक टिक टिक टिक करती घड़ी इस समय 10 बजाने वाली है। तो बस मिलाते रहिए फोन एक छोटे से अंतराल के बाद, फिर मिलते हैं। नंबर याद है ना, 73-76-40-90।
1: अयोध्या वासियों को अब रेटिना एवं काला मोतिया जैसी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आपके अपने अयोध्या आई हॉस्पिटल में विश्व विख्यात डॉक्टरों और आधुनिक मशीनों द्वारा तुरंत इलाज संभव। आयुष्मान भारत एवं कैशलेस इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध। संपर्क करें अयोध्या आई हॉस्पिटल, तुलसीबाड़ी परिक्रमा मार्ग, अयोध्या। फोन 9267988901।
2: आकाशवाणी अयोध्या से दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए अवधी लोक गीतों से सजा लोक रंग कार्यक्रम, जिसमें प्रत्येक सोमवार अपनी फरमाइश का लोक गीत सुनिए। व्हाट्सएप नंबर 8303219911 पर सबसे पहले कैपिटल में लोक रंग टाइप करें, LOKRANG स्पेस देकर अपने नाम लिखें, पता लिखें और अपनी फरमाइश का लोकगीत भेज दें। लोक रंग के फेसबुक पोस्ट पर भी आप फरमाइश लोकगीत की कर सकते हैं। तो फिर दिन 12:30 से प्रतिदिन सुनिए आकाशवाणी अयोध्या से लोक रंग कार्यक्रम। अपना वाहन चलाने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके पास अपने वाहन से संबंधित सभी कागजात या प्रमाण पत्र कम्प्लीट हैं।
3: रेलवे क्रॉसिंग या फिर ट्रैफिक जाम के दौरान अपनी लेन में ही रहें। गलत लेन में जाकर दूसरी ओर से आने वाले वाहन के लिए रास्ते को अवरुद्ध ना करें।
2: चार पहिया वाहन

0: चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही लगाई गई है। दो पहिया या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय मोबाइल और ईयरपीस का इस्तेमाल ना करें, और चार पहिया वाहन चलाते समय उसमें लगे म्यूजिक सिस्टम को धीमी आवाज में सुने।
1: चालान या जुर्माने से बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपनी गाड़ी के कागजात हमेशा अपनी गाड़ी में रखें या अपने पास रखें।
0: जीवन की तेज रफ्तारी को अपने वाहन की तेज रफ्तारी से मत आंकें, अपना वाहन नियंत्रित गति में ही चलाएं।
1: स्टॉप लाइन से पहले अपने वाहन को रोक लें। जेब्रा क्रॉसिंग पर कभी भी अपने वाहन को खड़ा ना करें।
0: हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, ये आपके ही सुविधा और सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। किसान भाई बहनों, आकाशवाणी अयोध्या से प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम के लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन में 7376804090 नंबर मिलाकर आमंत्रित विशेषज्ञ से सीधे बात कर कृषि संबंधी समस्या का समाधान प्राप्त कर उन्नत खेती करें। कृषि विशेषज्ञ से आप किस विषय पर बातचीत कर सकते हैं शाम 7:15 और गुरुवार प्रातः 7:15 पर कार्यक्रम रूपरेखा से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रत्येक गुरुवार शाम 6:45 से किसानवाणी कार्यक्रम में होगा आपका लाइव फोन इन प्रोग्राम किसान हेल्पलाइन।
2: जी हाँ, लाइव फोन इन प्रोग्राम है। हेलो इंडिया। हेलो
3: हेलो
2: जी, स्वागत है आपका।
3: जी सर, मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से। कैसे हैं सर जी?
2: हम बहुत अच्छे हैं। आपकी कॉल लगी नहीं और आप बातचीत करने लगे, कैसे?
3: बस मेरे मन ने कहा कि बस आप आकाशवाणी फैजाबाद में कॉल करते हैं और ऑन एयर कॉल उठा है। सभी श्रोताओं को हम बता रहे हैं कि सर जी बिल्कुल ऑन एयर कॉल ले रहे हैं। लाइव कॉल जब लेते हैं ना तो बस मन सोचने लगता है कि हम क्या बात करें, क्या कहें, क्या बोलें। जो बातें होती है ना
2: बिल्कुल सही बात है,
3: मन के अंदर रह जाती है और बस धीरे-धीरे से बाहर आती है।
2: सही है, लाइव कॉल की वजह से जो है कुछ श्रोता ऐसे भी होते हैं ना, वो समझ ही नहीं पाते कि क्या बात हो रही है। वो
3: तो बिल्कुल बिल्कुल तो अपना मैंने कह दिया ना कि आकाशवाणी अयोध्या में ना
2: जी
3: लाइव कॉल उठा है श्रोताओं, तो जरा भी नहीं घबराएं, आराम से कॉल करें, सभी का कॉल लग जाएगा।
2: जी जी जी बिल्कुल। तो अपना नाम नहीं बताया शायद आपने अभी।
3: सर मैं पूनम बोल रही हूँ कानपुर से। सर
2: अच्छा, पूनम, पूनम जी क्या करते हो आप?
3: जी सर मैं रेडियो आरएन पे कार्यक्रम करती हूँ, फोनिंग प्रोग्राम, तभी तो मुझे फोनिंग प्रोग्राम से बहुत लगाव है।
2: यस,
3: और
2: यस, हाँ,
3: मैं तो कोशिश करती हूँ कि कार्यक्रम में जरूर शामिल हो जाऊँ।
2: तो आपकी कॉल तो लगती रहती है आकाशवाणी पे अयोध्या।
3: जी हाँ बिल्कुल सर, अयोध्या में मेरा कॉल शामिल होता रहता है और आप सभी की जो प्रस्तुति होती है ना बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अंदाज में आप सब कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
2: बहुत बहुत
3: अच्छा,
2: शुक्रिया आपका जी। तो
3: और जी
2: हाँ पूनम जी, कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी आप, पहले ये बताओ।
3: बातों बातों में गीत तो और बता रहे हैं सर, मुझे गीत आप सुनवा दीजिएगा अभी। मुझे गीत सुनना है, फिल्म का नाम है हमें चाहिए प्यार के, और उसी का एक गीत है मुंबई से गई दिल्ली, दिल्ली से गई पटना, ये गीत सुना दीजिएगा सर।
2: देखते हैं हमारे पास है कि नहीं है। तो पूनम जी, आप जब प्रोग्राम करते हो तो क्या कैसा लगता है आपको? और अब हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम भी वही कर रहे हैं।
3: जी सर, अनुभव जो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे, मुझे अच्छा लगता है सभी श्रोताओं से बातें करना, सभी श्रोताओं के विचार जानने को मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और जैसा कि मेरा अनुभव है फोनिंग प्रोग्राम करने का, तो बहुत अच्छा लगता है और सभी से बातें होती है, दूर दूर से हमारे श्रोता जुड़ते हैं, रेडियो के माध्यम से बातें होती है और जो भी अपने मन की बातें होती हैं सभी श्रोताओं तक बात पहुंच जाती है।
2: अच्छा,
3: एक रेडियो ऐसा माध्यम है सर।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक चीज और है, तो मैं तो फोन नहीं लगाता इस तरह प्रोग्राम में, क्योंकि मैं खुद ही जब जुड़ा हूँ तो मैं फोन क्यों लगाऊं, लेकिन मुझे एक आश्चर्य इस बात का होता
3: है ना कि फोन लगाना क्या, अब अगर हम आज बन भी गए हैं तो फिर बहुत सारी बातें हैं ना जो मन में रह जाती हैं और फिर कहीं हम शामिल नहीं हो पाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, और लगेगा नहीं अरे काश हम उस आकाशवाणी में शामिल हो जाते तो हम भी कुछ कह पाते, है ना।
2: क्या बात
3: तो
2: है।
3: आकाशवाणी से सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखने सिखाने का ही नाम आकाशवाणी है, तो हम तो बस सीखते रहते हैं और कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा सीख सके।
2: हाँ, और बीच में सीखते सीखते जो है श्रोता बन करके सब कुछ सीख जाते हैं।
3: जी हाँ बिल्कुल, श्रोता बन के ही सब कुछ सीख जाते हैं।
2: चलिए बढ़िया, आपसे बात करके अच्छा लगा और मुझे लगता है शायद हमारी आपकी बात पहली बार हो रही है।
3: बिल्कुल सर, मेरी आपसे पहली बार बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
2: ठीक है।

0: बढ़िया अच्छा लगा मुझे. फिलहाल आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं
1: जी. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: बाय बाय. श्रोताओं जी हाँ वही नंबर है 7376409. मिलाइए मिलाइए, कोशिश करते रहिए.

0: लाइव फोरिंग प्रोग्राम। हेलो अयोध्या। हेलो
1: हेलो
0: जी, स्वागत है आपका।
1: हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है और कहां से बोल रहा है?
1: सर, बस आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है बातें करके आपसे, तो बस समझ लीजिए कि प्रोग्राम सुनने का मजा दोगुना हो जाता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, लेकिन आप बताए रही हैं, आपको
1: बहुत अच्छी बातें सर, बहुत अच्छी बातें आप करते हैं। मन करता है कि आपका फोन लगता रहे, आपसे बातें करते रहे।
0: अरे तो फिर और श्रोताओं का क्या होगा जो फोन मिला रहे हैं, सबका फोन लगना भी तो जरूरी है।
1: बस गाने का मजा दोगुना हो जाता, बल्कि चार गुना हो जाता है।
0: क्या बात है, आप कहाँ से बोल रहे हो?
1: इतनी प्यारी बात करते हैं, सोच भी नहीं सकते थे कि मतलब इतनी अच्छी बातें करते हैं।
0: ज्यादा हो रहा है, आप कहाँ से बोल रहे हो?
1: सर हम अयोध्या से ही बोल रहे हैं।
0: अयोध्या से, अपना नाम भी बता दीजिए और भी श्रोताओं को तो पता चल जाए।
1: अरे सर बस नाम मत पूछिए, आप हमको गाना सुनवाइए।
0: कौन सी फिल्म का गाना बताइए?
1: आरजू फिल्म का गाना सुनवाइए सर।
0: आरजू का कौन सा गाना सुनवाए?
1: हाँ कोई भी गाना सुनवा दीजिए, आरजू में सब गाने अच्छे हैं।
0: हाँ ये बात तो है, तो आप अपना नाम नहीं बता रहे हो, यही थोड़ा सा चिंता की बात है, बाकी ठीक है। हेलो, अच्छा
1: सर,
0: अच्छा क्या करते हो? कोई बात नहीं, नाम मत बताइए, मत बताइए और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन क्या करते हो आप, कुछ तो बातचीत हो ना?
1: नहीं करती तो कुछ नहीं हूँ, बस घर में घर का काम वगैरह बस करती कुछ नहीं हूँ, और अपनी माता जी की सेवा वगैरह में रहती हूँ।
0: ये तो बढ़िया काम है, तो घर परिवार की सेवा में।
1: हाँ। मेरी जो काली माता उनकी सेवा में रहती हूँ।
0: अरे वाह,
1: फिर घर आ जाती हूँ।
0: बढ़िया है,
1: माता जी से बढ़कर तो कोई नहीं है।
0: बड़ी देवकाली माता जी की बात कर रहे हो क्या आप?
1: हाँ बस।
0: बढ़िया, तो आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा हमको। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जो है इसको क्या कहेंगे कि मतलब नाम भी ना बताए और सुनना भी चाहे, ये तो और अच्छी बात है।
1: हाँ सर, बस आप गाना सुनाते रहिए, आपका फोन लगता रहे। मेरा फोन आपके पास 2 बार लग चुका है।
0: अच्छा,
1: आपने ध्यान नहीं दिया।
0: अरे ये तो गलती हो गई फिर हमसे, क्या मतलब गलती से मिस्टेक हो रहा है।

0: बिल बचती रही, ध्यान नहीं दिया आपने। और एक बार आपने गाना भी सुनवाया था।
1: अरे वाह क्या बात है, चलिए बढ़िया लगा आपसे बात करके। फिर तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले करते रहे, मतलब हम ही से हमारी मतलब आपसे ही बातचीत हमारी।
0: आपकी बातें मुझे बहुत पसंद सर, बहुत बहुत पसंद है।
1: अरे वाह क्या
0: बात, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप कि क्या बताएं। गाना सुनने का मजा दो गुना हो जाता है।
1: ज्यादा हो रहा है, चलिए ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत प्ले कर दिए हैं, सुनिए आप। ठीक है,
0: कोई बात नहीं सर, गाना सुनवाइए।
1: ओके।

0: शुदान लाइव फन इन प्रोग्राम है। हेलो अयोध्या। जी हाँ, कुछ कॉलर ऐसे भी हैं जो अपना नाम नहीं बताते, लेकिन 2 मई को कॉल लगी थी उनकी।
1: रणजीत नाम है, हम तो मजाक कर रहे थे, घंटी लग गई आपके पास।
0: देखिए मजाक मजाक में जो है काम मतलब बातचीत होने लगी।
1: हाँ जी, पहली बार लगाए, पहली बार लग गई, भगवान भोलेनाथ की कृपा से।
0: हाँ ये तो है, कृपा तो उन्हीं की है। तो कहाँ से बोल रहे हैं, अपना कुछ नाम पता बताएंगे?
1: सर हमारा जिला जद्दा खंडासा अमानीगंज छोई गांव राजकपुरा से बोल रहे हैं।
0: अरे बहुत दूर से बोल रहे हैं फिर तो आप।
1: नहीं नहीं सर, जिला जद्दा से बोल रहे हैं।
0: हाँ हाँ, जिला जद्दा तो है लेकिन खंडासा तो बहुत दूर है। तो
1: अरे हाँ, 50-60 किलोमीटर है सर।
0: हाँ खंडासा और राजा का जहाँ बता रहे हैं वो तो करीब 60 किलोमीटर होगा यहाँ से।
1: हाँ जी सर, जी सर, जी सर।
0: अच्छा,
1: आप बहुत अच्छी बात करते हो सर, बहुत अच्छा लगता है।
0: थैंक यू। इसके पहले भी जो कॉलर थी वो भी ऐसे ही बता रही थी, लेकिन उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कि 2 मई को उनकी कॉल लगी थी।
1: जी।
0: अच्छा चलिए, तो अपना नाम नहीं बताया लेकिन आपने।
1: सर हमारा नाम राम जी, तो वैसे राम जी कहते या भोलेनाथ कहके लोग पुकारते हैं।
0: अरे राम जी और भोलेनाथ अलग थोड़ो ना है। एक ही तो है,
1: कृपा है।
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे राम जी?
1: सर क्या करते थे साजना हमसे दूर रहते।
0: ऐसा मतलब किस पिक्चर का है ये नहीं पता है आपको क्या?
1: पिक्चर का नाम तो नहीं जान रहे साहब, गाना यही पसंद है।
0: तो ठीक है, हम आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे भाई, ऐसी क्या बात है आप।
1: यहाँ पे बहुत आदमी हंस रहे हैं साहब आपकी बात पे।
0: वहाँ पर जहाँ जहाँ पे हैं आप इस समय?
1: हाँ घर घर पे है सर।
0: तो क्यों ऐसा है?
1: हाँ
0: क्यों ऐसा?

0: है
1: साहब, एक हमारी बहन है, बात करना चाहते, कर लीजिए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात करा दीजिए।
1: ले ले ले ले बेटी, ले ले ले। आती हूँ ना, नहीं तो बात फोन काट नहीं था।
2: हेलो।
0: हाँ हेलो, के बोला था?
2: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, अपन नाम बताओ। नौना ना बताए हुआ अपन।
2: सर मेरा नाम अंशिका है।
0: अंशिका
2: जी।
0: अच्छा तो अंशिका काव कर रही हो?
2: सर पढ़ाई करते हैं।
0: कौन से क्लास में है? एर्थ में हो। बहुत बढ़िया, मेहनत से पढ़ो खूब ना।
2: जी सर।
0: मेहनत से पढ़ो। और अच्छा, बड़ा होके क्या बने है कुछ सोची नहीं?
2: क्या सर?
0: बड़े होके क्या बने है कुछ सोचे हो नहीं सोचे हो?
2: अरे सर अब आगे सोचेंगे अभी।
0: अच्छा बहन, चलो ठीक है, कक्षा 8 है अभी, इसको पास करने के बाद फिर ना।
2: जी।
0: तो हम ये लाल दुपट्टा मिल गया, वही लाल दुपट्टा मलमल का, इस फिल्म का गाना है जो बता रहे थे। हाँ तो हम बजा रहे हैं गाना इसका, सुनिए।
2: जी सर।
0: ठीक।
2: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, मेहनत से पढ़िए।
2: जी सर।
0: श्रोताओं, खुशी तो होती ही है। जी हाँ, आपको भी हो सकती है, बस मिलाइए फोन 73-76-40-90।

लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो अध्या कॉल आ गई। हेलो हेलो हेलो जी, स्वागत है। कौन बोल रहा है और कहां से? हेलो हेलो, आपकी कॉल लग

0: गई है, बात करिए, कहाँ से बोल रहे हो आप? हेलो। इस तरह तो और भी श्रोता परेशान हो जाएंगे। हेलो, चलिए कोई बात नहीं, आपका बात करने का मन नहीं है तो कट। कॉल लग गई थी श्रोताओं, लेकिन इन्होंने बात नहीं किया, लेकिन एक कॉल दूसरी भी आ गई। हेलो।
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है, कहाँ से फोन लगाए हैं?
1: यस सर, मैं अर्जुन कुमार सोनकर छोटा रंबा से बोल रहा हूँ सर।
0: अरे वाह, तब तो आप शहर से ही बोल रहे हैं।
1: जी सर।
0: क्या बात है। तो अर्जुन जी, क्या करते हैं आप?
1: अरे सर, आपकी आवाज मैं सुन के बहुत चिंतित हूँ कि आपकी आवाज सुन लूँ।
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करते हैं अर्जुन जी, आप ये तो बताइए।
1: सर, दुकान है मेरी।
0: अच्छा, कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो
1: जी
0: प्रोग्राम
1: सर। अरे
0: प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी के?
1: प्रोग्राम तो आप सब सुनबे करते हैं सर, सुबह रेडियो दुकान पे, शाम को रेडियो घर पे। सबका
0: क्या बात है, वाह। अच्छा, सबसे अच्छा प्रोग्राम कौन सा लगता है अर्जुन जी?
1: सबसे अच्छा प्रोग्राम आपका हमारा लगता है अवधि, 12:30 बजे दिन में जो आता है,
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: वो
0: बिल्कुल,
1: मुझे बहुत ज्यादा पसंद है,
0: क्या बात है। नहीं, बिल्कुल सही
1: क्योंकि
0: बात है।
1: उसमें अवधि लोकगीत आते हैं सब, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने आते हैं।
0: हाँ, और लोकगीत का
1: हाँ,
0: फरमाइश का
1: और
0: भी
1: सुरेश
0: प्रोग्राम है,
1: कलश
0: जानते
1: जो
0: हैं?
1: आता है, अमृत कलश है। हाँ,
0: हाँ, अमृत कलश भी है। जी,
1: इसके बाद सब प्रोग्राम सब आपके बहुत अच्छे हैं सर।
0: सारे प्रोग्राम अच्छे हैं ना?
1: हाँ
0: तो ट्रांजिस्टर पर ही सुनते हैं ना, ऐप पर तो सुनते नहीं
1: जी,
0: होंगे
1: हाँ
0: शहर में।
1: हमारे पास सब ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर घर पे है, एक ट्रांजिस्टर घर दुकान में है, दो
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज कौन
1: तो रखा हुआ हमने। हे
0: कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे? हाँ,
1: भाई, दो रास्ते सर,
0: दो
1: उसमें
0: रास्ते।
1: एक गीत की आवाज में है,
0: कौन सा है?
1: दो रंग दुनिया के,
0: दो रंग
1: मुकेश की
0: दुनिया।
1: आवाज है सर, दो रास्ते गाने।
0: हाँ, मैं ये तो देख रहा हूँ, मुकेश की आवाज में दो रास्ते का गाना है,
1: हाँ
0: मुकेश की ही आवाज में है भी ये, यही एक
1: हाँ
0: अकेला
1: दो
0: भी।
1: रंग दुनिया के। हाँ
0: हाँ, ठीक है, तो ठीक है, दो रास्ते आपके लिए मैं प्ले कर रहा हूँ, गाना सुनिए। अच्छा
1: जी
0: अच्छा लगा अर्जुन जी, कॉल करिएगा
1: जी
0: फिर।
1: सर, नमस्कार, नमस्ते सर,
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
0: स्वागत।

0: हाँ, कुछ गाने में गड़बड़ी की वजह से ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन एक कॉल आ गई है। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी, आपकी कॉल लग गई है, बताइए कहाँ से फोन लगाए।
1: सर नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार
1: सर, रमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ, तुलसीपुर मगध जिला गोंडा से।
0: वाह क्या बात है, तो आज हमें लगता है

0: आप पहले कॉलर हैं गोंडा की तरफ से?
1: जी जी
0: तो
1: 2024 में लगी थी, तब से आज तक कॉल ही नहीं लगी सर।
0: अरे ऐसा क्यों हो गया भाई, कोशिश करते रहते आप, मतलब कोशिश किए थे कि नहीं किए थे?
1: सर बहुत दिनों पर लगी है कॉल ही आज।
0: अच्छा बहुत, नहीं ये तो है 24 के बाद, तो 26 का मतलब कि आपने पूरा पूरा 2 साल
1: तैली 2 साल गुजार दिए।
0: और क्या भाई, छोटा समय थोड़ो ना होता है। तो कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगे बताइए
1: सर? नए दौर का गाना कोई भी सुना दीजिए।
0: देखते हैं आपकी पसंद अपने पास। तो क्या करते हैं
1: सर? खेती किसानी करता हूँ सर।
0: और समय निकाल लेते हैं प्रोग्राम सुनने का?
1: जी जी, प्रोग्राम तो सुनते ही रहते हैं सर।
0: ठीक है, तो आपकी पसंद का गीत हम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि समय थोड़ा कम है तो कम बात करते हैं और फिर फोन मिलाइएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी कॉल लग गई है। तो अब लगेगी, लोग कहते हैं ना जिसकी कॉल लग जाती है फिर कॉल लगती रहती है। है ना? तो ठीक है, सुनिए गाना अपनी पसंद का।

श्रोताओं, फिलहाल हेलो अयोध्या का आज का सफर हुआ पूरा। दीजिए विवेकानंद को इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी अयोध्या। कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे अश्विनी शुक्ला। फिलहाल आज का नमस्कार।

0: गर्मी का कहर बढ़ रहा है और इसके साथ ही खतरा बढ़ रहा है लू का। लेकिन घबराएं नहीं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतें।
1: जब भी बाहर निकलें, कुछ खा पी कर निकलें, साथ में पानी की बोतल जरूर रखें।
0: और हाँ, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को गमछे, टोपी या दुपट्टे से ढककर ही बाहर कदम रखें।
1: चक्कर आए, सिर में तेज दर्द हो या बहुत कमजोरी लगे तो इसे मामूली थकान न समझें, ये लू के लक्षण हो सकते हैं।
0: तुरंत छायादार जगह पर जाएं, ORS या नींबू पानी का घोल पिएं।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अध्यक्ष इनसे बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को है, कुछ ही देर में आप हम हिंदी में समाचार सुनेंगे जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उनके उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है।
2: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 260,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा इस पूरे फैसले से। और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन LMT।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि सूर्यमुखी बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए प्रति क्विंटल और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
2: कोल भारत में करीब करीब 400 बिलियन टन के नोन रिजर्व्स है, तो इस कोयले का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके हम इससे गैस बना सके और गैस का उपयोग फिर फर्टिलाइजर वगैरह में, ताकि फर्टिलाइजर के लिए जो LNG इंपोर्ट करनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। 37,500 करोड़ रुपीस का आउटले इस स्कीम के लिए रखा गया है और करीब

0: करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें टोटल, और 75 मिलियन टन कोल को इसमें गैसिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट्स लगेंगे।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि योजना से केवल खनन से प्रतिवर्ष 6300 करोड़ रुपए का राजस्व और 50,000 रोजगार सृजित होगा। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने लगभग 20,667 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद सरखेज धौलेरा सेमी हाई स्पीड दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेलवे की ये पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना होगी। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उन्नयन और आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धौलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने आज इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। पश्चिम बंगाल में नवगठित सरकार ने शिक्षक भर्ती, नगर निगम भर्ती और सहकारी सेवा भर्ती घोटालों से संबंधित मामलों को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज, पशु उत्पादों और अन्य आवश्यक उत्पादों के अंतर्राज्यीय आवागमन पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि शुक्रवार को श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने आज ये मंजूरी दी। प्रवीण सूद का वर्तमान कार्यकाल इस महीने की 24 तारीख को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 193 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 6 ओवर में 1 विकेट पर 66 रन बना लिए हैं। कोलकाता की ओर से अंग कृष्ण रघुवंशी ने 71 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved increase in minimum support prices, MSP, for 14 Kharif crops for marketing season 2026-27. Addressing media after the Union Cabinet meeting in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said, the government has increased the MSP of Kharif crops to ensure remunerative prices to the growers for their produce. Mr. Vaishnaw said, the highest increase of 622 rupees per quintal in MSP has been recommended for sunflower seed, followed by 557 per quintal for cotton and 500 rupees per quintal for sesamum. He said, for grade A paddy, the MSP will be 2,461 rupees per quintal. For Jowar hybrid, it will be 4,023 rupees per quintal. For Bajra, the MSP will be 2,900 rupees. And for Tur, it will be 8,450 rupees per quintal. The Union Cabinet has also approved a scheme for promotion of surface coal and lignite gasification projects with a financial outlay of 37,500 crore rupees. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, has approved Ahmedabad Sarkhej Dholera Semi-High Speed Double Line Project with a total cost of nearly 20,667 crore rupees. The Union Cabinet has also approved upgradation and modernization of Nagpur International Airport through long-term license involving private partner under public-private partnership. Prime Minister Narendra Modi has said that the Union Cabinet's decision of approving an increase in the minimum support price